मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 26वीं तिथि, तदनुसार 17 जुलाई 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के लिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ से भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियाँ परिचालन में हैं। इनमें जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमरीका शामिल हैं।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं

0: का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केरलम में 6 पुनर्निर्मित अमृत रेलवे स्टेशनों के साथ देश भर के 75 अन्य अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। केरलम के इन स्टेशनों से राज्य में रेलवे के बुनियादी ढांचे और यात्रियों की सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। इन उन्नत स्टेशनों में आधुनिक प्लेटफॉर्म, बेहतर भवन, आधुनिक प्रतीक्षा कक्ष और यात्रियों के लिए उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनका उद्देश्य यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जूमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में एनडीए के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में आज माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 से बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

ईश्वर से हमारा प्रेम ऐसे ही होना चाहिए जैसे हम अपने लोगों से करते हैं। इस सांसारिक संबंधों में जो हमारी आसक्ति होती है, वही आसक्ति हमारी जब ईश्वर में हो जाती है तो वो हमारे कल्याण का मार्ग सुगम बना देती है। और जब वो मार्ग सुगम होता है तो फिर हमें और किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। हमारा प्रेम उनमें इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि हम सारे अपने संबंधों का जो व्यवहार जो हम लौकिक जगत में रखते हैं, वैसे ही हमारा व्यवहार अपने उस इष्ट के प्रति भी हो जाता है।

0: इसी के साथ आज की आराधना अब संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: लीजिए अब सुनिए हमारा साप्ताहिक विशेष कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: किया। सरकार द्वारा जब जब जनहित से हटकर कोई आदेश पारित होता, गांधी जी सदैव कुशल नेता के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन पर जोर देते और उन्हें सफल बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से अमल करने की सलाह देते थे। आज गांधी चर्चा में बारदोली सत्याग्रह की चर्चा होगी और चर्चा कर रही हैं डॉक्टर सुचेत गोविंदी।
1: 1928 में गुजरात में बारदोली तहसील के किसानों को पता चला कि अंग्रेज सरकार ने एक बार की ही 66% लगान में वृद्धि कर दी है। वे बहुत परेशान हुए, हैरान हुए, लेकिन हैरान और परेशान होकर वो चुप नहीं बैठ गए। उन्होंने तय किया, सोचा कि हम ये लगान नहीं देंगे और सत्याग्रह करेंगे। उस समय गुजरात के आसपास इलाकों में सत्याग्रह की मोटी मोटी बातें लोग समझते थे, लेकिन जब सत्याग्रह करना है, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, तो दो बातें ज़रूरी हैं, ऐसा उन्होंने सोचा। एक तो पूरा कार्यक्रम बनाना और दूसरा लड़ाई का अच्छा नेता होना। अच्छा नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल से कौन ज़्यादा हो सकता है? अतः किसान मंडल स्वयं अपनी बात, अपना दुख ले करके सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनकी बात सुनी और उन्होंने सोचा कि शायद ये किसान सत्याग्रह की गंभीरता को नहीं समझते हैं। उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हें मालूम है, लगान ना देने पर, सत्याग्रह करने पर तुम्हें जेल जाना होगा, डंडे खाने होंगे, मार खानी होगी, यहाँ तक कि जमीन सब जब्त हो जाएंगे, बैल भी तुम्हारे उठा ले जाएगी सरकार, और यहाँ तक कि तुम्हें जान भी देनी पड़ सकती है। तुम में से कितने लोग इसके लिए जान देने को तैयार हैं? उन्होंने उत्तर दिया, सब। लेकिन सरदार पटेल इस बात से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, आप मुझे उन नामों की सूची दें जो लोग इस सत्याग्रह में मरने मिटने को तैयार हों। कृषक मंडल वापस बारदोली गया। उन्होंने बारदोली के 130 गांव के लोगों की सभा की और उस सभा में ये पूछा कि कितने लोग हैं जो अपना नाम देते हैं। हर एक घर में से लोगों ने अपने मरने तक के साथी का नाम दिया और तब वो लंबी सूची लेकर के किसान स्वयं फिर गए पटेल जी के पास। पटेल जी को लगा कि इनका दृढ़ निश्चय है, अतः उन्होंने हामी भर दी और कहा कि गांधी जी के पास साबरमती जाकर आशीर्वाद भी ले लें। आशीर्वाद वे लेने गए और उन्हें मिला। अब सरदार स्वयं बारदोली में आश्रम में आ गए और 6 महीने तक वहीं रह करके बारदोली के किसानों के इस सत्याग्रह का उन्होंने नेतृत्व किया। 300 का सक्रिय कार्यकर्ता पूरे देश से आ गए थे, जिनमें से दो तीन सभी स्वयं सेविक जाकर के सभी गांवों में बैठ गए, बारदोली के गांवों में बैठ गए और बारदोली की 86,000 की कुल जनता में से 80,000 की जनता ने इस लगान विरोधी सत्याग्रह में भाग लिया, सक्रिय रूप से भाग लिया। अब देखिए, नज़ारा ये था कि जब जनता इस तरह से कार्य करने लगी तो अंग्रेज सरकार ने धड़ाधड़ फिर गिरफ्तारियां, डंडे मारना, लाठियां मारना, जर जमीन, बैल, खेती, घर तक जब्त कर लेना, लड़कियों को पीटना, ये सारे अत्याचार की भरमार कर दी। लोग निहत थे लेकिन दृढ़ थे। सारे किसान इस बात में स्पष्ट थे कि हमको लगान नहीं देना है, अंग्रेज सरकार चाहे जो कर ले, और ना ही हम अपना धैर्य छोड़ेंगे, सहने की शक्ति हमारी असीम है। ऐसा दृश्य देखकर देखने वाले बताते हैं कि कोई भी स्तब्ध रह जाता, यहाँ तक कि पश्चिमी देश चकाचौंध हो गए कि ये अनपढ़ कहे जाने वाले किसान किस तरह से बारदोली दुनिया में एक प्रसिद्ध स्थान हो गया उसी एक आंदोलन से। और ये भी देखा गया कि गांव-गांव में जो सशक्त वाणी सरदार पटेल की थी, सुन करके दीनहीन किसान इस कदर सशक्त सैनिक हो गए सत्याग्रह के कि स्वयं बड़े बड़े लोग चकित हुए हो गए और चौंधिया जैसे गए। इस बीच खबर आई कि सरकार सरदार पटेल को कैद करने वाली है। खबर सुनकर गांधी जी खुद बारदोली पहुंच गए। गांधी जी का बारदोली जाना था कि लोग चौगुने उत्साह में मरने मिटने लगे और यह देखकर सरकार बौखला गई और गिरफ्तारियां और मार और

गांधी जी सत्य और अहिंसा में विश्वास रखते थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन के द्वारा अपने देशवासियों का मार्गदर्शन

0: ज़्यादतियाँ और अत्याचार शुरू हो गए, लेकिन लोग थे कि ना झुके ना डरे ना थके ही। सरदार पटेल के नेतृत्व में वे आगे बढ़ रहे थे, गांधी जी के आते ही और बढ़ गए, और ना झुके ना टूटे, जिससे कि सरकार को ही झुकना पड़ा और टूटना पड़ा। सरदार पटेल बारदोली के इस सत्याग्रह के बाद बारदोली के ही नहीं पूरे देश के सरदार हो गए।
1: और अब गांधी जी का प्रिय भजन, स्वर MS सुबलक्ष्मी का।

0: बापू सत्य के उपासक थे और जीवन भर उसकी खोज में लगे रहे। सत्य को पाने के लिए उन्होंने साधन कौन सा ग्रहण किया? राम नाम। दुख में, सुख में, रोग में, शोक में, हर समय हर कहीं दो अक्षरों का छोटा सा ये नाम ही उनका सहारा था। अक्टूबर 1947 में कुछ सर्दी लग जाने के कारण गांधी जी बीमार हो गए। उनको हल्का सा बुखार और कुछ खांसी हो गई। डॉक्टर ने कहा कि वो पेनिसिलिन लें। गांधी जी ने इससे इनकार कर दिया और 17 अक्टूबर को अपनी प्रार्थना सभा में कहा,
1: मैं कोई डॉक्टर की या तो वैद्य की भी दवाई नहीं करता हूं। डॉक्टर तो कहते हैं यही मेरे सामने पड़ी है कि पेनिसिलिन ले लेते तो 3 दिन में खत्म होने वाली चीज है, उसको 3 हफ्ते लग गए। उस चीज को मैं मानता नहीं, ऐसा भी नहीं है, मैं उसको मानता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं ये समझ गया हूँ कि राम नाम वो सबसे बड़ी ऊंची दवा है। वो उसको कहते भी हैं राम नाम वो रामबाण दवा है, क्योंकि तो राम का बाण काम कर देता था कि जैसा गया ऐसा ही वो कोई बाण निष्फल नहीं जाता था। इसी तरह से राम नाम रूपी जो दवा है

कभी कभी निष्फल नहीं जाती है, लेकिन हाँ इसके लिए थोड़ी धीरज तो चाहिए। मेरे लिए इस अवस्था में और आज जो स्थिति दिल्ली में क्या के सारे मुल्क में चल रही है, उसने दूसरा चारा नहीं मैं बताऊँ और अच्छा है। इस सिवाय ईश्वर की मदद, सिवाय ईश्वर के नाम के और कुछ है ही भी नहीं। कितनी भी कोशिश मैं करूँ, मनुष्य की हैसियत से वो सबकी सब बर्बाद जाती है। वो मेरे शब्द हैं, वो एक समान में असर रखते हैं, आज नहीं रखते, नहीं रखते हैं उसमें कोई, मैं बड़ा गुनहगार हो गया हूँ। आज मैं जो दिल से बात नहीं करता था, जो मैं पहले करता था, ऐसा तो ही मैं जानता हूँ कि मैं तो दिल से ही बात करता हूँ, आप भी वही है, लेकिन युग बदल गया, तो युग की तासीर वो तो होने वाली है, मुझ पर भी होनी चाहिए। मेरी उम्मीद है कि वो नहीं होने देता हूँ मैं, क्यों नहीं, कि मेरा जैसा था वैसा ही हूँ। जैसी बात मैंने 15 साल में यहाँ आया तब निकाली, वही बात आज भी कह रहा हूँ।

अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक विशेष कार्यक्रम गांधी चर्चा, आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब किसान भाई अपना कार्यक्रम सुने, कृषि जगत।

0: किसान भाइयों को आज हम सुनवाने जा रहे हैं कृषि यंत्रों की आवश्यकता एवं लाभ विषय पर डॉक्टर अमिताभ कर से की गई रितेश शुक्ल की बातचीत।
1: किसान भाई, बहुत बहुत स्वागत बा आपका कृषि जगत कार्यक्रम में। अपने कार्यक्रम में हम सभी वैज्ञानिक भैया और विशेषज्ञ भैया के बुलाई था और जिनसे की जानकारी ली जाता था खेती किसानी के जो तमाम तरह के तरीका होते हैं, कैसे खेती किसानी अच्छे तरीके से की जाए, कैसे खेती किसानी अपन बेहतर होए। आज अपने बीच हैं डॉक्टर अमिताभ कर भैया, जो कि आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से आवा हैं और जो आज का विषय बाटे वो बाटे कृषि यंत्रों की आवश्यकता और लाभ। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत बा आपका कृषि जगत कार्यक्रम में।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, जैसे जैसे खेती किसानी बदली बा, खेती किसानी का स्वरूप बदला बाटे, वैसे वैसे किसान भैयान की जरूरत बदली बाटे, तमाम तरह के कृषि यंत्र आई गवा हैं, तमाम तरह के तरीका आई गवा हैं।
2: बिल्कुल।
1: तो आपसे हम ही जाना चाहब कि जोन अबई धान का फसल बाटे भाई, शुरुआत से आप बतावें कौन कौन से ऐसा यंत्र का जरूरत पड़ता किसान भाइयन के, जैसे कि आपन की जोन धान का फसल बा, आप बतावें कौन कौन से यंत्र, शुरुआत से बतावें।
2: देखिए, ऐसा है कि खेत की तैयारी सबसे पहले जरूरी होती है।

0: खरीफ की फसल में धान एक विशेष महत्व रखता है, और धान के लिए पहले तो हम ढैंचा का प्रयोग करते हैं किसी भी खेत में, और ढैंचे के लिए नाइट्रोजन उससे मिलती है और राइजोबियम उसमें जो गांठें होती हैं, इसके लिए पहले खेत को बढ़िया जो है लेव लगा के उसमें हम ढैंचे की बुआई कर देते हैं,
1: अच्छा,
0: और ढैंचे की बुआई करने के बाद करीब 45 दिन के बाद उसको पलटा देते हैं ताकि उसमें नाइट्रोजन मिल जाए। लेकिन ये तो होता है, लेकिन पहले खेत का समतलीकरण बहुत ज़रूरी होता
1: जी
0: है,
1: जी
0: और समतलीकरण से पहले खेत की जुताई ज़रूरी होती
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल
0: तो जुताई में कई तरह के यंत्र हैं। एक तो यह है कि प्राइमरी जो मुख्य जो जुताई होती है, तो प्राथमिक जुताई में हम लोग मोल्ड बोल्ड हल का इस्तेमाल करते हैं
1: जी
0: या डिस्क हल का इस्तेमाल करते हैं, हल का इस्तेमाल करते
1: जी
0: हैं।
1: जी जी
0: देखिए, हैरो और हल में फ़र्क है।
1: बिल्कुल
0: तो पलटा हल जो होता है वो कई तरह का हो सकता है, ट्रैक्टर चालित भी हो सकता है, बैल चालित भी हो सकता है। ट्रैक्टर से ही कई उसके फल आते हैं। एक सिंगल मोल्ड बोर्ड आता है, डबल मोल्ड बोर्ड आता है, और आजकल रिवर्सेबल प्लाव आने लगे हैं, यानी कि एक तरफ जो है आपको चलाइए, एक तरफ मिल्टी पलट लेगा, उसके बाद उसको पलट दीजिए तो दूसरी तरफ मिल्टी पलट लेगा। ये एक नया यंत्र है और आजकल इस क्षेत्र में अब काफ़ी सामान्यतः प्रयोग किया जाने लगा है।
1: जी
0: तो एक तो ये हो गया है।
1: जी जी
0: उसके अलावा हमको डिस्क हल की आवश्यकता पड़ती है। अगर मिट्टी भारी है और घासें ज़्यादा हैं तो डिस्क हल से भी हम लोग मिट्टी को पलट सकते हैं, और उसमें काफ़ी गहराई तक 8 से 10 इंच 12 इंच तक जो है हम उसको
1: जुताई
0: पलट
1: कर
0: सक हाँ
1: सकते हैं
0: जुताई कर सकते हैं। इसके अलावा जब ये चीज़ हो जाती है तो जो बड़े बड़े ढेले बनते हैं उनको काटने की ज़रूरत पड़ती है और छोटा करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हैरो का इस्तेमाल किया जाता है,
1: बिल्कुल
0: और हैरो जो है कई तरह के हैं। ख़ास तौर से आजकल हम लोग तवे वाला हल इस्तेमाल करते हैं, तो ये तवे हल के हल जो हैं वो मिट्टी के ढेले को तोड़ते हैं और थोड़ा सा समतल करने की कोशिश करते हैं ताकि मिट्टी जो है भुरभुरी हो जाए, इस तरह की
1: बिल्कुल।
0: प्रयास करते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जो नहीं बात आप बताएं, एक सवाल जब आप बात बतावत रहे हैं तो एक सवाल हमारे मन में आवा कि भाई मिट्टी पर भी तो निर्भर करता है कि कौन सा यंत्र हम प्रयोग में लाई सके था। मान लीजिए
0: बिल्कुल
1: मिट्टी आपको भुरभुरी बाटे
0: हाँ
1: तो वो मन जो शक्ति लगे ट्रैक्टर का या जो आपका यंत्र लगे वो मन, और जोन मिट्टी कड़ी बाटे ओमन भी अंतर रहा होता,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो ओकरे बारे में बतावें कि एक चीज़ और बाटे, जैसे जोत जोन होती
0: जी
1: भाई, अगर
0: जी
1: छोटी जोत बाटे
0: जी
1: ऊपर का निर्भरता रहता है यंत्रन
0: जी
1: के, एकरे बारे में कुछ किसान भाइयों के बताऊंगी आप।
0: ऐसा है, देखिए किसान भाई बड़ा असमंजस में रह जाए कि कौन सी चीज़ खरीदें कौन सी चीज़ ना खरीदें।
1: एकदम
0: और आजकल ट्रैक्टर तो एक कोई ड्राइवर है ट्रैक्टर जिसके पास कुछ हल है तो उससे भैया हमार खेत जोत दा ये सब कर दा तो वो अपना कर देता है। और अगर अकेले करना है तो पावर टिलर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पावर टिलर तो हाथ से चलाने के लिए होता है और आप दोनों तरफ हैंडल पकड़ के चला लीजिए, उसमें कई यंत्र लग जाते हैं, रोटावेटर भी लग जाता है, रोटी टिलर भी लग जाता है। तो ये पावर टिलर भी छोटे जोत के लिए बड़ा अच्छा होता है। और अगर आपको ट्रैक्टर इस्तेमाल करना है तो उसमें जो कम चौड़े यंत्र आते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ
1: डॉक्टर साहब, जोन अभी समय चलत बाटे भाई, बारिश होत बाटे और जोन ही मुख्य समय बाटे धान का रोपाई का समय बाटे,
0: जी
1: तो अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही बाटे कि धान कर रोपाई में कौन कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाए। काहे कि सबसे बड़ी समस्या यही आवत है कि मनई नहीं मिल पावत हैं, मजदूर नहीं मिल पावत हैं
0: जी
1: जैसे
0: जी
1: रोपाई
0: जी
1: सही से की जा सके।
0: जी
1: भाई
0: जी
1: छोटवार खेत बाटे तो भाई दो चार परिवार के जना लग के
0: जी
1: रोपाई कर दिए। अब
0: जी
1: मान लें कुछ किसान भाई खेती कर रहा है, बड़े स्तर पर खेती कर
0: जी
1: रहा है,
0: जी जी
1: तो उनके लिए कौन यंत्र वो खरीदें कि उनके भाई खेती किसानी आसान हो जाए या
0: जी
1: रोपाई आसान हो जाए उनके लिए,
0: जी
1: उसके बारे में बताऊंगी आप कुछ।
0: देखिए, इस पे तो विश्वविद्यालयों में, कृषि विश्वविद्यालय में काफ़ी शोध हुए हैं, और किसानों की जो कठिनाइयां हैं उसके आधार पे ही हम लोग यंत्र डेवलप करते हैं। और एक तो छोटे किसानों के लिए यंत्र है वो है ड्रम सीडर,
1: अच्छा ड्रम सीडर।
0: धान का ड्रम सीडर, पैडी ड्रम सीडर। इसमें 8 कतार में जो है सीधी बुआई हो जाती है। पहले आपने खेत की नमी वो आपने जुताई कर दी, उसमें लेब लगा दिया, और अगर आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर पानी है, समतल है खेत, तो उसमें ड्रम सीडर से उसमें बीज जो है 1 दिन 24 घंटा भिगा के जब अंकुरित हो जाता है तो उसमें 4 डब्बे होते हैं, उसमें डाल देते हैं अलग अलग, और डब्बे को बंद कर देते हैं, और एक डब्बे में 2 कतारें होती हैं इसलिए 8 कतारें हो जाती हैं। और धीरे धीरे जो है एक ही आदमी उसको कीचड़ में चला के और 8 लाइन की सीधी बुआई कर देता है, और सीधी बुआई करने

0: के बाद, और ये खास तौर से जहाँ पर चिड़ियाँ वड़ियाँ न लगें, जहाँ पर गन्ने के खेत न हो, ऐसे स्थान पे किया जाता ताकि चिड़ियाँ उसको चुगे नहीं, ताकि उसकी जो है अच्छा जमाव हो जाए। और ये ड्रम सीडर बहुत आसानी से उपलब्ध भी है, सस्ता भी है, करीब 5,000 का मिलता है। और इसके बीच में ख़ास तौर से करना पड़ता है कि दो कतार के बीच में रोटरी वीडर लगाना पड़ता है। रोटरी वीडर भी 1,200 रुपये का आता है, और इसको जब घास हो तो उसमें बीच में चला दिया जाता है ताकि घास जो है वो उखड़ जाती है और धान अच्छी तरह से आगे बढ़ जाता है। तो ये सीधी बिजाई जो है हमारी होती है। आजकल हम लोग यही रुपाई बचाने के लिए सीधी बिजाई करते हैं। सीधी बिजाई में ये तो हो गया ड्रम सीडर का एक, और दूसरा है कि ट्रैक्टर द्वारा चलाने वाली जीरो टिल मशीन से भी हम लोग बुआई करते हैं, जो कि अभी से 4-5 साल 6 साल पहले होती थी, अभी भी लोग करते हैं। लेकिन जीरो टिल मशीन से भी आप धान को एक दिन भिगा के उसके बाद उसमें आप सीधे खेत में चला दीजिए, और खेत में उसके पहले जो है पेंडेमिथिलिन का छिड़काव कर दीजिए मशीन से, ताकि घास जो है वो न जमे, और सीधे मशीन से बुआई कर दीजिए।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल बाटे। इत धान से जुड़ी हुई जितने भी कृषि यंत्र हैं उकरे बारे में आप बताएं। इकरे अलावा अपनी तरफ से आप किसान भाइयों के कुछ यंत्र के बारे में बतावें जो खरीफ के सीजन में किसान भाई प्रयोग में लाई सकते हैं।
0: देखिए, एक बहुत जरूरी यंत्र है समतलीकरण के लिए, क्योंकि आजकल पानी की बड़ी समस्या है, पानी
1: जी
0: सही सही फैलता नहीं है खेत में। तो एक लेज़र लेवलर आया है।
1: बिल्कुल
0: लेज़र लेवलर क्या है कि वो ट्रैक्टर के साथ लगता है, उसमें तिपाई होती है, तो तिपाई को कोने में, खेत कोने में सेट कर दिया जाता है, और उसमें बीम निकलती है। उसको सेट
1: अच्छा
0: करने से तो बीम निकलती है, जो किरण निकलती है उसके आधार पे ट्रैक्टर में भी एक ट्रांसमीटर लगा होता है। तो जो ड्राइवर है वो उसको देखता रहता है, जो जहाँ पर खेत नीचे है वहाँ पर मिट्टी पड़ जाती है, और जहाँ मिट्टी ऊपर है उसको कट के किनारे कर देता है। मतलब उसको, और ये खेत जो है, ये वाला जो यंत्र है वो समतल खेत पर चलता है बढ़िया
1: अच्छा
0: से,
1: अच्छा अच्छा
0: और बहुत ही अच्छे से आपका पानी क्या फैलाव भी हो जाएगा, और पानी का नुकसान भी नहीं होगा, और सालों साल जो है वो खेत आपका, एक सीज़न नहीं,
1: अच्छा
0: तीन चार
1: अच्छा
0: पांच सीज़न
1: अच्छा
0: वो आपका खेत जो है वो समतल
1: बिल्कुल
0: रहेगा
1: बिल्कुल डॉक्टर
0: उससे।
1: साहब, आप जितना भी जानकारी दी हैं निश्चित
0: जी
1: तौर पर, चूंकि हम हमारे हमारे कार्यक्रम में समय का थोड़ा अभाव बाटा ही,
0: जी जी
1: बल्कि आप जितनी भी जानकारी दी हैं निश्चित तौर पर किसान भाई एक सुने हुई
0: जी
1: और अपने खेती किसानी में प्रयोग में लेके आए, जो भी कृषि यंत्र के बारे में आप बताएं निश्चित तौर पर वो किसान भाइयों के मदद करे खेती किसानी के उनके अच्छी बनावे। आप आए निकले लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कृषि यंत्रों की आवश्यकता एवं लाभ विषय पर किसान भाई अभी सुन रहे थे डॉक्टर अमिताभ कर से की गई रितेश शुक्ल की बातचीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर सुधा यादव की वार्ता, ल्यूकोडर्मा कारण और उपचार।
1: आइए मैं आज आपको विटिलाइगो अर्थात सफेद दाग के बारे में कुछ जानकारी देती हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं इस बीमारी के बारे में भ्रांतियाँ भी काफ़ी फैली होती हैं और आप सब ने कभी ना कभी इस बीमारी से ग्रस्त किसी व्यक्ति को नज़दीक या दूरी से ज़रूर देखा होगा और आपको इसके बारे में और जानने की उत्सुकता भी हुई होगी। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि सफ़ेद दाग या विटिलाइगो क्या है। आप सब जानते हैं हमारी त्वचा का रंग इसमें मौजूद रंग कण मिलानिन की वजह से होता है, जिसका निर्माण त्वचा में मौजूद कोशिकाएं जिन्हें मिलानोसाइट्स कहते हैं के द्वारा किया जाता है। इन्हीं मिलानोसाइट्स के नुकसान या छड़ की वजह से जब मिलानिन का बनना कम हो जाता है या स्वतः रुक जाता है तब त्वचा सफ़ेद दिखने लगती है और ये बीमारी उत्पन्न होती है। मिलानिन की मात्रा पर ही हमारी त्वचा का रंग निर्भर करता है, जैसे कि कुछ लोगों की त्वचा गोरी दिखती है तो किसी की त्वचा सांवली या काली होती है। अब आइए सफ़ेद दाग से जुड़ी

पेंटियों के बारे में आपको बताती हूँ। पहली बात तो यह कि विटिलाइगो या सफ़ेद दाग कोई भयंकर बीमारी नहीं है, अपितु कॉस्मेटिक प्रॉब्लम ज़्यादा है, बल्कि मैं यह कहूँ यह स्वास्थ्य समस्या कम और सामाजिक समस्या ज़्यादा है, तो यह गलत नहीं होगा। खासकर हमारे देश में जहाँ त्वचा का रंग गेहुआ होता है, यह समस्या ज़्यादा प्रतीत होती है, जबकि पश्चिमी देशों में त्वचा का रंग हल्का होने की वजह से यह छुप जाता है। सफ़ेद दाग के मरीज या रिश्तेदार यह पूछते हैं कि क्या यह रोग छुआछूत से फैलता है, तो मैं यह बताना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं।

0: त्वचा का रंग हल्का होने की वजह से यह छुप जाता है। सफेद दाग के मरीज या रिश्तेदार यह पूछते हैं कि क्या यह रोग छुआछूत से फैलता है, तो मैं यह बताना चाहूंगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह बीमारी कोई संक्रमण नहीं है, अपितु हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में होने वाले बदलाव की वजह से यह उत्पन्न होती है। अतः सफेद दाग छुआछूत या रक्त संक्रमण या शारीरिक संबंध या एक दूसरे की वस्तुएं इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं फैलता है। यह एक यह सवाल कि क्या सफेद दाग वंशानुगत है, तो मैं यह आपको बता दूं कि अगर माता पिता दोनों में विटिलाइगो जनरलाइज है, अर्थात कि 50% से ज़्यादा शरीर की त्वचा पर सफेद दाग है, तब भी सिर्फ 15 से 20% बच्चों में इसके होने की संभावना रहती है, अर्थात 80 से 85% लोगों में इसके वंशानुगत होने की समस्या नहीं होती है। क्या सफेद दाग या विटिलाइगो तथा कुष्ठ रोग एक ही बीमारी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुष्ठ रोग बैक्टीरिया जनित रोग है और यह छुआछूत द्वारा फैल सकता है। इसमें त्वचा पर हल्के रंग के चकत्ते पड़ते हैं जिनमें शून्यता होती है, ना कि सफेद दाग। अब मैं आपको बताना चाहूंगी सफेद दाग एवं खान पान में क्या रिश्ता होता है। ऐसी भ्रांतियां हैं कि सफेद दाग में खट्टी चीजों या सफेद चीजों से परहेज करना चाहिए, तो यह सत्य नहीं है, अपितु रिसर्च से यह पता चला है कि एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी एंड विटामिन B12 जो कि नींबू जैसे खट्टे पदार्थों में मौजूद होता है, सफेद दाग के इलाज में काफी कारगर सिद्ध होता है। तो इसलिए ऐसी भ्रांतियों पर ध्यान ना दें जिनमें कि लोग कहते हैं कि सफेद दाग होने पर सफेद चीजें नहीं खानी चाहिए, यह सरासर गलत बात है। तो क्या सफेद दाग लाइलाज बीमारी है? नहीं, सफेद दाग का इलाज मौजूद है और यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि बीमारी कितनी पुरानी है, मरीज की उम्र क्या है और बीमारी कितनी ज़्यादा फैली हुई है। क्योंकि बच्चों में इलाज का असर ज़्यादा जल्दी आता है, उसी प्रकार शरीर के वह भाग जहाँ पर रोई अर्थात बाल होते हैं वहाँ पर दवाइयाँ ज़्यादा कारगर सिद्ध होती हैं। इसी तरह अगर इलाज जल्दी शुरू किया जाता है तो बीमारी को कंट्रोल करना आसान होता है। इसके अलावा अगर दवाइयों का असर ना आ पाए तो आजकल शल्यक्रिया द्वारा भी सफ़ेद दाग का इलाज संभव है। तो श्रोतों, मुझे उम्मीद है कि अब सफ़ेद दाग से जुड़ी कई भ्रांतियां आपके मन से दूर हो गई हैं और आप इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को इलाज की उम्मीद दिलाएंगे और उन्हें हीन भावना से नहीं ग्रस्त होने देंगे, ना उन्हें समाज से परित्यक्त होने देंगे।
1: ल्यूकोडर्मा कारण और उपचार विषय पर अभी आप डॉक्टर सुधा यादव की ये वार्ता सुन रहे थे। इसी के साथ कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा समाप्त हुआ। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विवरण। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर पंडित निखिल बनर्जी का सितार वादन, दिन में 12:15 पर पंडित अनोखीलाल का तबला वादन और रात 10:30 हम आपको सुनवाएंगे गौरी शंकर का क्लैरियोनेट वादन। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर कलाकार होंगे भूपेंद्र कुमार।

सुबह 10:05 पर वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम में अभिनेत्री नूपू जोशी से नेहा गुप्ता और अभय कांत तिवारी की बातचीत का आज आप सुनेंगे तीसरा भाग। लोकगीतों के कार्यक्रम में सुबह 10:30 कलाकार होंगे मोहनलाल जैसल और साथी और इंद्रजीत यादव और साथी, एक ही कलाकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 11:00।

युवा श्रोताओं का अपना पसंदीदा कार्यक्रम यूथ एक्सप्रेस 11:30 पर। हेलो फरमाइश, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 12:30 पर। शाम 5 बजे नन्हे मुन्नों के कार्यक्रम नन्ही दुनिया में नन्हे मुन्ने आओ जाने के अंतर्गत सुनेंगे क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। शाम 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में भास्कर मिश्र की वार्ता होगी श्री जगन्नाथ लोक यात्रा। रात 8:30 पर अक्षय वट कार्यक्रम में डॉक्टर कमलेश कुमार सोनकर से दीपक राय की बातचीत का विषय होगा वृद्धावस्था में रीढ़ की हड्डियों में होने वाली समस्याएं और उपचार। गजलों का प्रोग्राम कहकशां रात 9:30 और रात 10:00 अंशु मालवीय का लिखा नाटक प्रसारित होगा सदा नीरा। अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विवरण सुन रहे थे।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हमारे कार्यक्रम आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, प्रतीक्षा करें।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य हरियाणा चण्डीगढ़ पंजाब स्थलानां यात्रायै निर्गमिष्यति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री हरियाणायाः जिन्द रेल स्थानके जिन्द सोनीपत क्षेत्रयोः भारतस्य प्रथमाय हाइड्रोजन संचालित रेलयानाय हरितपताकां प्रदर्शयिष्यति। अनेनैव सह श्रीमोदी जिन्दनगरस्थे एकलव्य क्रीडांगणे 714,000 करोड़ रूप्यकाणां विभिन्नानां विकासात्मक परियोजनानां शिलान्यासं उद्घाटनञ्च विधास्यति। प्रथमस्य हाइड्रोजन संचालित रेलयानस्य अयं शुभारंभः रेलक्षेत्रे स्वच्छ सतत विकासाय कश्चन महत्वपूर्णः पदक्षेपो वर्तते। जिन्दनगरात् प्रधानमंत्री चंडीगढ़ प्रति प्रस्थास्यति, यत्र अपराह्णे पादोन द्विवादने सह 714,000 करोड़ रूप्यकाणां विभिन्नानां विकासात्मक परियोजनानां आधारशिलां स्थापयिष्यति। अत्रावसरे सः जनसभामपि संबोधयिष्यति। ततः परं प्रधानमंत्री पंजाबस्य जालंधर नगरं प्रति गमिष्यति, यत्र सः 70,000 करोड़ रूप्यकाणां नैकासां विकास परियोजनानां शिलान्यासं उद्घाटनञ्च करिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कतर देशस्य अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी इत्यनेन सह दूरभाषेण संवादम अकरोत्। अथ फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी इत्यस्य निधनं प्रति शोक संवेदनाः प्रेषितवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे प्रधानमंत्री अवदत् यत् कतर देशस्य फादर अमीर इत्येतस्य स्थायी रिक्तं भारत कतर देशयोः मध्ये सामरिक सहभागितां सुदृढां कर्तुं अग्रेपि मार्गदर्शनं करिष्यति। असौ भारतस्य प्रति तस्य अतिस्नेहं, कतरदेशे स्थित भारतीय समुदायं प्रति तस्य आत्मीय भावं, भारत

संतों के समाज को आनंदमय और कल्याणकारी बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने उनकी तुलना तीर्थराज प्रयाग से की है, जहां राम भक्त रूपी गंगा तथा ब्रह्म विचार रूपी सरस्वती की धाराएं प्रवाहित होती हैं। मात्र कवियों तथा पंडितों की ही नहीं, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है।

अभी आप मन्ना डे सुरेश वाडकर और रंजना जोगलेकर के स्वर में सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्मों से भजन। सबसे पहले हम आपको आदि पुरुष की ये रचना सुनवा रहे हैं। रचना है मनोज मुंतजर की, संगीत है सचेत परंपरा का और स्वर भी सचेत टंडन और परंपरा टंडन का।

और अब अंत में हम आपको बैजू बावरा फिल्म की ये रचना सुनवा रहे हैं। रचना है शकील बदायूनी की, संगीत है नौशाद का और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की।

आप सुन रहे थे फिल्मों से भजन। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:20 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को आज रवाना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लखनऊ के ऐशबाग सहित 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी आईटी डिजिटल सेवाओं और नवाचार का केंद्र बनाने के लक्ष्य पर दिया जोर। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के तहत वाराणसी में आयोजित हुआ पहला पंच सम्मेलन। उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों के 500 ग्राम प्रधान हुए शामिल। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने घोषित किए नीट यूजी 2026 के परीक्षा परिणाम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें उत्तर प्रदेश से जुड़ी परियोजना भी शामिल है।
2: प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1,570

0: करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ के ऐशबाग जंक्शन स्टेशन सहित 20 राज्यों में 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल द्वारा लगभग 24 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से ऐशबाग जंक्शन स्टेशन का अपग्रेडेशन किया गया है। इस आधुनिकीकरण से हजारों यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्मों पर यात्रियों की बैठने की क्षमता बढ़ाने, सर्कुलेटिंग एरिया बढ़ाने, वेटिंग हॉल को आधुनिक रूप देने सहित कई अन्य सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की गई है। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
1: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का एक नया स्वरूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें 4 बड़े सुधार किए हैं।
2: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर तथा अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों का राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता बनाने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी IT, डिजिटल सेवाओं और नवाचार केंद्र बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी नीति को बदलती वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक व्यवहारिक, निवेशक अनुकूल और रोजगारोन्मुख बनाया जाए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता मामले में पुलिस ने कल एंटी करप्शन कोर्ट में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और मनीष यादव की एक हफ्ते की कस्टडी रिमांड के लिए आवेदन दिया है। रिमांड पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले विवेचक आशुतोष तिवारी ने कोर्ट से अनुमति लेकर कल सुबह ही दोनों से लगभग 1 घंटे की पूछताछ भी की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR News गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कल वाराणसी में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत आयोजित पहले पंच सम्मेलन में हिस्सा लिया।
3: सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड के लगभग 500 ग्राम पंचायत प्रधानों ने भाग लिया और ग्रामीण विकास, सुशासन और सशक्त पंचायतों के निर्माण पर व्यापक विचार विमर्श किया। सम्मेलन में पंचायतों की संस्थागत तैयारी, विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्राम स्तर पर पारदर्शी एवं उत्तरदायी शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: कार्यक्रम को संबोधित करते उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के तहत पारदर्शिता के साथ पात्र व्यक्ति को काम भी मिलेगा और गांव का विकास भी होगा।
4: विकसित भारत जी रामजी है, इसमें PM गति शक्ति के नाम का एक पोर्टल है। जो सड़क पहले लोग बनाते थे, गांव की कच्ची बनावे चाहे पक्की बनावे, जो तालाब पहले खोदते थे चाहे वह खोद के फिर से उसको भरे और फिर खोदने का काम करें, अब यह डुप्लीकेसी नहीं होगी। PM गतिशक्ति का मतलब है कि अगर आपने गांव के हर घर तक आप आवागमन और जल निकासी की अस्थायी व्यवस्था करना चाहते हैं तो उसकी कार्य योजना आपको बनाना पड़ेगा।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को अधिक सक्षम, जवाबदेह और विकास परक बनाना है।
5: विकसित भारत जी राम जी जो 1 जुलाई से पूरे देश में एक साथ लागू हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जब इसकी कल्पना की गई तो सिर्फ ये कल्पना नहीं था, प्रधानमंत्री मोदी जी का यही सपना था कि हमारा जो श्रमिक है 12 करोड़ से ऊपर के लोग इस देश में 1 घंटा भी बिना काम के वो न रहे। ये हमारी सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है, पारदर्शिता

0: का एक बहुत बड़ा माध्यम है। अपने गांव को कैसे विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए आप कितना खड़े हैं, यह आपके ऊपर।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 के परीक्षा परिणाम बीती रात घोषित कर दिए। परीक्षा में 11,21,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। एनटीए के अनुसार सफल अभ्यर्थियों में 58% से अधिक महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। 21 जून को आयोजित इस परीक्षा में करीब 20,00,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बाराबंकी में घाघरा और कुशीनगर में गंडक नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर भी चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच चुका है। केंद्रीय जल आयोग के जूनियर इंजीनियर आकाश प्रताप ने बताया कि प्रशासन जलस्तर पर नजर रख रहा है और जरूरत पड़ने पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
2: पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जल स्तर बढ़ रहा है। पिछले एक दिन में जो है लगभग 40 सेंटीमीटर पानी बढ़ा है, और अगर बारिश ऊपरी क्षेत्रों में लगातार होती रहेगी तो जल स्तर इसी तरह से बढ़ेगा। वार्निंग लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा तो जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको जल स्तर की सूचना दे दी जाएगी।
1: मौसम विभाग ने आज राज्य के पश्चिमी जनपदों में बौछारें पड़ने और पूर्वी क्षेत्र में भारी बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को आज रवाना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लखनऊ के ऐशबाग सहित 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी आईटी, डिजिटल सेवाओं और नवाचार का केंद्र बनाने के लक्ष्य पर दिया जोर। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के तहत वाराणसी में आयोजित हुआ पहला पंच सम्मेलन। उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों के 500 ग्राम प्रधान हुए शामिल। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने घोषित किए नीट यूजी 2026 के परीक्षा परिणाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी प्रयागराज है। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित निखिल बनर्जी का सितार वादन, राग है अहीर भैरव। तबले पर आपके साथ संगत की लालजी श्रीवास्तव ने। तो आइए सुने पंडित निखिल बनर्जी का सितार पर राग अहीर भैरव।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित निखिल बनर्जी का सितार पर राग अहीर भैरव, तबले पर आपके साथ संगत की लालजी श्रीवास्तव ने। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों के बारे में बता दें। सुबह 10:05 पर वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम में आप सुनेंगे अभिनेत्री नूपुर जोशी से नेहा गुप्ता और अभय कांत तिवारी की बातचीत का तीसरा भाग। दिन में 11:30 पर युवा श्रोता अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनेंगे यूथ एक्सप्रेस। रात 8:30 पर अक्षय भट्ट कार्यक्रम में डॉक्टर कमलेश कुमार सोनकर से दीपक राय की बातचीत का विषय होगा वृद्धावस्था में रीढ़ की हड्डियों में होने वाली समस्याएं और उपचार।

शाम 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में भास्कर मिश्र की वार्ता होगी श्री जगन्नाथ लोक यात्रा। रात 10 बजे अंशु मालवीय का लिखा नाटक सुनिएगा सदा नीरा। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे कार्यक्रम आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 8 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात। प्रतीक्षा करें।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
3: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद वे चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और

0: शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद SCS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब और श्री अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों के 74 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का जलंधर से ही वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास प्रोग्राम में से एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया गया है। वह जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह भारत के दो सबसे पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली डायरेक्ट रेलगाड़ी है जो हफ्ते में 3 बार चलेगी। प्रधानमंत्री नंगल डैम तलवाड़ा मुकेरिया नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर दौलतपुर चौक करतौली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे और करतौली अंबाला ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे आज तीनों राज्यों के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इनका सबसे अधिक लाभ देश की युवा शक्ति को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरल के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
3: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नीति के तहत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा।
5: नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित

0: आयोजित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। एजेंसी ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। गुजरात आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाकांच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल BSF से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा संबंधी मुद्दों पर एक बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। केरलम में आज से रमाण मास का शुभारंभ हुआ। केरलम में मलयालम पंचांग के कंगंडम महीने को रमाण मास के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति के लिए रामायण का पाठ करते हैं। आज से करगिडगम महीने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आज से राज्य के अनेक घरों और मंदिरों में प्रतिदिन रामायण पाठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके और पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। उन्होंने भारत और कतर में भारतीय समुदाय के प्रति स्नेह और भारत कतर संबंधों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी याद किया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमन की ओर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने लोगों की हत्या, जबरन हिरासत, घरों पर छापेमारी और आम नागरिकों, महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा की है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वामपंथी चरमपंथी आतंकवादियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू की है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये नीति ऐसे तत्वों को रोकने के लिए है जो हिंसक गतिविधियों के जरिए लोगों की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल देखने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। फाइनल मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल के साथ इसका समापन होगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को AFC Under-17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। भारत लगातार दूसरी बार महिला एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट पेपर लीक के बाद अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच आयोजित नीट UG 2026 का परिणाम घोषित होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है नीट UG का परिणाम जारी, सफल होने वालों में 58% छात्राएं। अमर उजाला के शब्द हैं पंजाब के आर्यन और हरियाणा के पंशुल अव्वल, 19 बच्चों को 700 से अधिक अंक। अमेरिका और ईरान के बीच ताज़ा सैन्य संघर्ष को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए

0: सख्त कदम उठाया। जनसत्ता ने इस खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, होर्मुज पर जहाजों में भारतीय नागरिकों की तैनाती पर रोक, नौवहन प्रशासन महानिदेशालय का निर्देश। पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़, एक श्रद्धालु की मौत, लोकसत्ते की सुर्खी है। पत्र लिखता है, खराब मौसम और बारिश के बाद उमड़ी 10 लाख की भीड़। राजधानी में 16 साल के बाद सबसे लंबा मानसून ब्रेक। दिल्ली में अगले 4-5 दिन और अच्छी बारिश होने की उम्मीद बेहद कम, हिंदुस्तान की सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने अनुमान शीर्षक से खबर दी है, दो नए सिस्टम से रफ्तार पकड़ेगा मानसून, 20 से उत्तर और मध्य भारत में तेज बारिश, 40 से अधिक देशों के साथ साझा समुद्री अभ्यास, 20 जुलाई से होगा, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, कोच्चि स्थित सदर्न नेवल कमांड में होगी ऑपरेशन की शुरुआत। लोकसत्ते ने साइबर अपराध पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, शीर्षक दिया है, डिजिटल भारत पर साइबर अपराध का साया। पत्र लिखता है, साइबर अपराध की सबसे चिंताजनक बात है कि इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। दुनिया के कई देशों में बैठे अपराधी भारत के नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं, ऐसे में सभी को सावधान रहना जरूरी है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to flag off India's first hydrogen-powered train from Jind Railway Station in Haryana this morning. Delhi government approves 400 crore rupees startup and incubation policy to promote innovation and self-employment. National Testing Agency declares results of NEET UG 2026 re-examination. Gujarat ATS arrests 5 persons from Patan district in connection with its probe into Jaish-e-Mohammed terror module. And in men's cricket, hosts England beat India by 4 wickets in second ODI to level 3-match series 1-1. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab today. During his visit to Haryana, the Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station. He will also lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium in Jind and address the gathering on the occasion. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With its introduction, India joins a select group of countries that have operational hydrogen-powered trains. These include Germany, Japan, China and the United States. More from our correspondent.
3: India has set a new global benchmark with this project, surpassing many other nations currently testing this technology. While countries like Germany and China usually run 2 or 3 coach hydrogen trains, India has developed a 10-coach formation. It is designed to carry nearly 2,600 passengers, which is the highest capacity among compared hydrogen trains globally. This hydrogen train is powered by a 3,200 horsepower propulsion system, making it one of the most powerful hydrogen-powered train sets in operation. The train is powered by hydrogen fuel cell technology, which converts hydrogen into electricity to propel the train. The process produces only water vapor as a byproduct, resulting in zero carbon emissions during operation. The train is equipped with multi-layer safety systems capable of detecting hydrogen leaks, heat, flames and smoke. The hydrogen facility has been established at Jind to enable safe, efficient and reliable hydrogen-powered rail operations. Anand Kumar, Akashwani News, Jind.
2: From Jind, the Prime Minister will travel to Chandigarh, where at around 1:45 p.m. he will lay the foundation stone and inaugurate various development projects worth over 4,700 crore rupees. He will also address

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने इख्तिरा और खुद रोजगार को बढ़ावा देने की खातिर 400 करोड़ रुपए मालियत की स्टार्टअप और इनक्यूबेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इम्तिहानात के निकाद से मुतालिक एजेंसी ने नीट यूजी 2026 के दोबारा कराए गए इम्तिहान के नतीजों का ऐलान कर दिया है। गुजरात एटीएस ने जैश ए मोहम्मद तंजीम के दहशतगर्द गिरोह की अपनी तहकीकात के सिलसिले में पाटन जिले से 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। और मर्दों के क्रिकेट में दूसरे एक रोजा मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर जा रहे हैं। हरियाणा के अपने दौरे में वज़ीर-ए-आज़म जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के दरमियान हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जनाब मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में तकरीबन 14,700 करोड़ रुपये मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। साथ ही वो इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन का आगाज रेलवे के शोबे में माहौलियात के लिए साजगार और पायदार मोबिलिटी इख्तियार करने की सम्त एक अहम कदम है। अंदरूनी मुल्क वसाइल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये रेलगाड़ी बनाई गई है, जिससे जदीद तर्ज की रेलवे इंजीनियरिंग में भारत की बढ़ती हुई सलाहियत की अक्कासी होती है। इस तरह भारत उन चुनिंदा मुल्कों में शामिल हो गया है जहाँ हाइड्रोजन पर मबनी रेलगाड़ियाँ चलती हैं। इन मुल्कों में जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका शामिल हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारत ने इसे तकनीक की आजमाइश करने वाले कई दीगर मुल्कों पीछे छोड़ते हुए मशहूरा प्रोजेक्ट के जरिए एक नया आलमी पैमाना तय किया है। जर्मनी और चीन जैसे मुल्कों में चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेनों में आमतौर पर 2 या 3 रेल डिब्बे ही होते हैं, जबकि भारत ने 10 रेल डिब्बों वाली हाइड्रोजन रेलगाड़ी तैयार की है। इसका डिजाइन इस तरह बनाया गया है कि इसमें तकरीबन 2600 मुसाफिर सफर कर सकते हैं, जो आलमी सतह पर दीगर हाइड्रोजन ट्रेनों के मुकाबले सबसे ज्यादा गुंजाइश वाली रेलगाड़ी है। इस हाइड्रोजन ट्रेन में 3200 हॉर्स पावर का प्रोपल्शन निजाम नस्ब है। ये

0: रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर मबनी है, जो रेलगाड़ी को चलाने के लिए हाइड्रोजन को बिजली में तब्दील कर देती है। जीन से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चीन से चंडीगढ़ जाएंगे, जहां वो दोपहर 2:45 बजे के आसपास 4,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर एक जलसे से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दोपहर पंजाब के जालंधर का दौरा करेंगे, जहां वो 5,470 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत के रेल और सड़क बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों का मकसद कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करना, मुसाफिरों की सहूलत में इजाफा करना और खित्ते में इक्तिसादी तरक्की को रफ्तार देना है। मज़ीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: वज़ीर आज़म ज़ाती तौर पर जालंधर कैंट स्टेशन का इफ्तिताह करने के बाद 20 रियासतों के नए सिरे से तामीर किए गए 74 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह करेंगे। इन स्टेशनों को दुनिया के सबसे बड़े तामीर नौ प्रोग्राम अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत नए सिरे से तैयार किया गया है। वज़ीर आज़म जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह हफ्ते में 3 दिन चलने वाली पहली बराह रास्त एसी ट्रेन होगी, जो भारत के दो अहम तरीन रूहानी और सकाफती मकामात अमृतसर और वाराणसी को मरबूत करेगी। वज़ीर आज़म 30.9 किलोमीटर तवील 4 लेन वाले दिल्ली अमृतसर कटरा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे समेत कौमी शाहराहों के प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह करेंगे। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों से मिलने नीज, रेलवेज, हिफ्जान सेहत, सकाफत, कनेक्टिविटी, तालीम और दीगर शोबों से वाबस्ता मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शामिल होने के मुंतजर हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि इन सभी प्रोजेक्टों से लोगों की जिंदगी, खासतौर पर मुल्क की युवा शक्ति पर बहुत मुस्बत असर पड़ेगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज से मगरबी बंगाल के 3 रोज़ा दौरे पर रहेंगे। जराए ने कहा है कि अपने दौरे के दौरान वो सरहदी सिक्योरिटी, हुक्मरानी, अमन व कानून और तरक्की पर मरकूज प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। कल जनाब शाह 18वीं बटालियन सरहदी अगली चौकी पर बीएसएफ के एहलकारों से बातचीत करेंगे। वो बीएसएफ से वाबस्ता मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। दोपहर में वो मगरबी बंगाल में सरहद से मुतालिक मामलात पर एक मीटिंग की सदारत करेंगे। जराए ने मजीद कहा है कि वजीर दाखिला रियासत में 3 नए फौजदारी कवानीन के निफाज का भी जायजा लेंगे। दिल्ली हुकूमत ने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड्स के साथ स्टार्टअप और इंक्यूबेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 5 बरस तक इख्तिरा और खुद रोजगार के लिए रकम इस्तेमाल की जाएगी। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि ये पॉलिसी 11 रियासती यूनिवर्सिटियों, 13 हुकूमत के इमदाद याफ्ता कॉलेजों, ITI और हुकूमत के पॉलिटेक्निक इदारों का इहाता करेगी। दिल्ली हुकूमत के स्कूलों के तलबा इन इदारों में पॉलिसी के फवायद हासिल कर सकते हैं। दिल्ली की वजीर आला के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि कामयाब तलबा को माली मदद फराहम की जाएगी। रियासती इंक्यूबेशन पॉलिसी निगरानी कमेटी पर मबनी एक पैनल तश्कील दिया जाएगा, जो पॉलिसी के निफाज पर नजर रखेगा। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके वालिद अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के इंतकाल पर अपनी ताज़ियत का इजहार किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि अमीर कतर के वालिद की मीरास एक ऐसे वक्त में जबकि वो अपनी कलीदी शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम कर रहे हैं, दोनों मुमालिक की रहनुमाई जारी रखेगी। उन्होंने भारत के लिए उनकी गहरी उनसियत, कतर में भारतीय बिरादरी के लिए गर्मजोशी और भारत कतर ताल्लुकात के लिए उनके अज़्म को याद किया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। इम्तिहानात के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने NEET UG 2026 के दोबारा कराए गए इम्तिहान के नतीजों का ऐलान कर दिया है। 11 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने अंडर ग्रेजुएट मेडिकल, डेंटल, आयुष और मुतालिका प्रोग्रामों में दाखिले के लिए क्वालिफाई किया है। सभी उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर दस्तियाब हैं। NTA ने कहा है कि नतीजों का ऐलान बरवक्त कर दिया गया है, ताकि मेडिकल दाखिले और काउंसलिंग के प्रोग्राम मुतासिर ना हों। भारत में 551

शहरों और बैरून मुल्क 14 शहरों में 5,440 मराकज पर कराए गए दोबारा इम्तिहान में मजमूई तौर पर तकरीबन 20 लाख उम्मीदवार बैठे थे। गुजरात के दहशतगर्दी मुखालिफ दस्ते ATS ने पाकिस्तान में कायम जैश मोहम्मद तंजीम के दहशतगर्द गिरोह की अपनी तहकीकात के सिलसिले में पाटन ज़िले से 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। इनके नाम बिलाल आबिद भाई शेरा, मोहम्मद अयूब कड़ीवाला, मोहम्मद पालनपुरी उर्फ खलील अयूब सुनसारा, शफिया रईस मुख्ती और मोहम्मद हसन करदिया बताए गए हैं। इन अफराद को पाटन ज़िले के सिद्धपुर तालुका में खडियाल गांव से पकड़ा गया। इस महीने के शुरू में जैश मोहम्मद के 8 मुबैना कारिंदों से पूछताछ के दौरान इन 5 मुलजिमों के नाम सामने आए थे। इन 5ों को महसियाना ज़िले में जुडिशल मैजिस्ट्रेट RM भाटिया के सामने पेश किया गया और 24 जुलाई तक ATS की तहवील में भेज दिया गया। सरकारी वकील PR दंतानी ने अदालत को बताया कि इनमें से एक मुलजिम ने टाइम बॉम्ब बनाने की कोशिश की थी और बम बनाने के काम आने वाला सामान और जैश मोहम्मद का लिटरेचर अभी बरामद नहीं किया गया है, इसीलिए हिरासत में लेकर मुलजिमों से पूछताछ करने की ज़रूरत है। गोवा हुकूमत ने कसिनो से मुतालिक जाब्तों में सख्ती करते हुए 21 बरस से कम उम्र के लोगों की कसिनो में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। महकमा दाखिला ने इस नई पाबंदी के नफाज के सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में साहिल के नज़दीक कसिनो के जहाज़ों के लिए लाइसेंस की अदायगी के सिलसिले में भी जाब्ते सख्त कर दिए गए हैं। नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत का नौजवानों के उमूर का महकमा आज से माय भारत नेशनल यूथ वॉलंटियर कन्वेंशन का इनेकाद करेगा, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में इस माह की 18 और 19 तारीख को 2 रोज़ा चिंतन शिविर होगा। वजारत ने कहा है कि एक के बाद एक दो प्रोग्रामों का मकसद ज़मीनी सतह पर नौजवानों के राबतों को मुस्तहकम करना, इदारा जाति तालमेल को बढ़ाना और नौजवानों की क़्यादत में मुल्क की तामीर के लिए मुस्तकबिल के लिए तैयार एक इको निज़ाम तश्कील देना है। दोनों तकारीब में नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया और नौजवानों के उमूर और खेलों की वजीर मुमलिकत रक्षा नितिन खड़से दीगर सीनियर अहदेदारान के साथ शिरकत करेंगे। अमरीकी फोर्सेस ने ईरान के साथ अमन समझौता नाकाम हो जाने के तनाजुर में ईरान के खिलाफ लगातार 6ठी रात फौजी हमले किए। अमरीका की मरकजी कमान के मुताबिक इन हमलों का मकसद ईरान की फौजी सलाहियत को मजीद कमज़ोर करना है, क्योंकि ईरान से आबनाए हुरमुज से गुजरने वाले कमर्शल बहरी जहाज़ों को ख़तरा लाहिक है। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया है कि ईरान में अमरीका के हालिया हमलों में सिविलियन बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है और इन हमलों में 3 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए हैं। केरलम में मलयालम दौर के कार्किडाकम महीने को रामायण महीने के तौर पर मनाया जाता है, जिसका आगाज आज से हो रहा है। इस मौके पर अकीदतमंद रूहानी कुव्वत और जहनी सुकून के लिए रामायण की तरफ मुतवज्जे होते हैं। कार्किडाकम का आज पहला दिन है और इसके साथ ही पूरी रियासत में कई घरों और मंदिरों में रामायण का पाठ रोज़ाना का मामूल बन जाता है। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अरकान और आला ओहदेदारान के साथ आला सतह की मीटिंग की सदारत की और पवित्र श्री माता वैष्णो देवी जी मंदिर में चढ़ावे और अतियात वगैरह के बंदोबस्त के निज़ाम का जायज़ा लिया। इस सिलसिले में मुकम्मल शफाफियत, जवाबदेही और कामकाज से मुतालिक तयशुदा तरीक़ाकार पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की खातिर एक जामे जायज़ा पेश किया गया। मर्दों के क्रिकेट में कल रात कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में दूसरे एक रोज़ा बैन अल-अक़वामी मैच में मेज़बान इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया और 3 मैचों की सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल की क़्यादत में भारतीय टीम 44 ओवर्स में महज 233 रन ही बना पाई। भारत के लिए श्रेयस अय्यर ने सबसे ज़्यादा 66 रन बनाए, जबकि विराट कोहली ने 65 रन स्कोर किए। इंग्लैंड के लिए जो रूट ने 99 रन स्कोर किए और वो नॉट आउट रहे, उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। अब दोनों टीमें लॉर्ड्स के तारीखी क्रिकेट मैदान पर इतवार के रोज़ इस सीरीज़ का आखिरी और फैसला कुन मैच खेलेंगी।
व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इतवार की रात को न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान

0: फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने जाएंगे। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के आज हरियाणा दौरे से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोज़नामा प्रताप की शह सुर्खी है, वज़ीर आज़म आज हरियाणा में मुल्क की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। 10 कोच वाली इस ट्रेन में 2600 मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के सरहदी सड़क तंजीम BRO की स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ्रेंस से खिताब करने से मुतालिक खबर को भी अखबारों में नुमाया तौर पर शाया किया गया है। रोज़नामा इनकलाब ने इस दौरान दिए गए उनके इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि जदीद हथियारों के बावजूद स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अहमियत बरकरार है। सड़कें, सुरंगें, हवाई अड्डे और बंदरगाहें फौजी मुहिमात और कौमी सलामती के लिए इंतहाई अहम।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने इख्तिरा और खुद रोजगार को बढ़ावा देने की खातिर 400 करोड़ रुपए मालियत की स्टार्टअप और इंक्यूबेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इम्तिहानात के निकाद से मुतालिक एजेंसी ने नीट UG 2026 के दोबारा कराए गए इम्तिहान के नतीजों का ऐलान कर दिया है। गुजरात ATS ने जैश मोहम्मद तंजीम के दहशतगर्द गिरोह की अपनी तहकीकात के सिलसिले में पाटन ज़िले से 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। और मर्दों के क्रिकेट में दूसरे एक रोज़ा मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली है। इसके साथ ही ये खबरनामा ख़त्म हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हमारे कार्यक्रम आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 800-001-4242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 800-001-4242।
5: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
6: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं, न्याय हर व्यक्ति का अधिकार है, फिर चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो या फिर देश का हो। आज हम बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के बारे में। इसका महत्व क्या है, चुनौतियां क्या हैं और हमें इससे क्या उम्मीदें हैं? तो श्रोताओं, हम आपको बता दें कि 17 जुलाई 1998 को रोम में संविधि अपनाए जाने के बाद आईसीसी की स्थापना हुई। इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना होने के बाद यहाँ से नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराधों पर सुनवाई हो और हमें न्याय मिले, यही इसका उद्देश्य है। और आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना होने के कारण हर साल हम 17 जुलाई को आज ये दिन मनाते हैं और आज का ये दिन न्याय को समर्पित दिन के रूप में मनाया जाता है। जब बात न्याय की हो तो फिर ये केवल देश विदेश से संबंध न रखकर घर, समाज, कार्यालय सबसे संबंधित हो जाता है।

जब घरेलू स्तर की बात हो रही हो तो न्याय का मतलब है बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को कानून की सुरक्षा मिले, जो गरीब हैं उन्हें उनका अधिकार मिले, महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा मिले और समाज में समानता के साथ इसे लागू किया जाए। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कई बार कई जगहों पर न्याय की कमी हो जाने से युद्ध, उत्पीड़न और भ्रष्टाचार जैसे मामलों में न्याय पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। लाखों लोग न्याय के लिए रोज लड़ रहे हैं।

कोई गलत हो तो उसका विरोध करना, चाहे वो हमारा अपना सगा संबंधी ही क्यों ना हो। कमज़ोर लोगों की हर संभव सहायता करना, वो भी निस्वार्थ भाव से, तो ही असली न्याय है। शुरुआत जब हम खुद से करते हैं तो ही एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है और अच्छे समाज का भी। जहाँ कहीं भी महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहा हो, वहाँ पर हम खुलकर बोलें, सामने आए, विरोध करें और पुलिस को इसकी सूचना दें। हम आपको बता दें कि हमें अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए, दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और सोशल मीडिया पर #इंटरनेशनल जस्टिस डे या न्याय दिवस करके भी हम शेयर कर सकते हैं और वहाँ से भी हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। घर से ही शुरू करिए, समाज बदलिए, दुनिया को बेहतर बनाइए। न्याय सबका हो, न्याय सही वक्त पर हो, तभी वो असली न्याय कहा जाता है। और महात्मा गांधी ने भी कहा था, न्याय वह शक्ति है जो समाज को मजबूत बनाती है।

श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने हमें कई बड़े मामलों में न्याय दिलाया है। भारत में भी संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 हमें समानता और न्याय का अधिकार देते हैं। न्याय केवल अदालतों में नहीं, हमारे आपके हम सबके रोज के व्यवहार में होना चाहिए। जैसे घर में अगर बच्चों में आपस में लड़ाई हो जाए तो उसे जानकर समझकर निष्पक्ष रूप से निपटाना, पड़ोसी के साथ निष्पक्षता, भेदभाव न करना,

तो हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने घर और अपने आसपास जहां भी हो हर संभव प्रयास करेंगे कि किसी के साथ अन्याय ना हो, गलती के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और जो कमज़ोर हैं उनकी सहायता करेंगे। आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
3: फसा। अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का ये पहला गाना, श्रेया घोषाल और निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज़ों में। फिल्म है बर्फी, गीत के बोल लिखे हैं निखिल पॉल जॉर्ज ने और संगीत है प्रीतम का।

फिल्म संगीत में अब हम आपको राब्ता फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं। अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा है, प्रीतम ने तर्ज बनाई है और आवाज़ अरिजीत सिंह की।

और अब अंत में हम आपको बेशरम फिल्म का राजीव बर्नवाल का लिखा हुआ गीत सुनवा रहे हैं, संगीत ललित पंडित का, और आवाजें हैं अभिजीत भट्टाचार्य और श्रेया घोषाल की।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:15 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण। अगले प्रसारण की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए शाहजहांपुर और प्रतापगढ़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं शाहजहांपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है कौशलेंद्र मिश्रा का।
2: शाहजहांपुर में बीते माह विकास, जन कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, कृषि और प्रशासनिक गतिविधियां सुर्खियों में रहीं। राजकीय इंटर कॉलेज खिरनीबाग मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां 177 हिंदू और 28 मुस्लिम सहित कुल 205 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। मुख्य अतिथि वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने नव दंपतियों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और विवाह को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक जोड़े पर 1,00,000 रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें 64,000 रुपये कन्या के बैंक खाते में, 21,000 रुपये की गृहस्थी सामग्री तथा 15,000 रुपये समारोह के आयोजन पर व्यय किए जाते हैं। उन्होंने नव विवाहित दूल्हों से अपनी पत्नियों का सम्मान करने और उन्हें समान अधिकार देने की अपील भी की। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का आयोजन हुआ। विकासखंड भावलखेड़ा में वन विभाग द्वारा 7,500 पौधों का रोपण कर अभियान की शुरुआत की गई। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और सांसद अरुण कुमार सागर ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत हरिशंकरी पौधा लगाकर लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का संदेश दिया। इस वर्ष जनपद में 52.55 लाख पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे जन सहभागिता से पूरा करने का संकल्प लिया गया।
3: बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण इस हथौड़िया क्षेत्र में खासतौर से किया गया। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है ग्लोबल वार्मिंग को मिनिमाइज करने का और जो गर्मी पड़ रही है उसको भी मिनिमाइज करने का एक बहुत अच्छा प्रयास है। इस साल 37 करोड़ का लक्ष्य रखा गया, इसमें से 35 करोड़ वृक्ष केवल आज लगाने का लक्ष्य रखा है। 52,55,000 वृक्ष शाहजहांपुर में लगाने का लक्ष्य है। ये लक्ष्य आज शाम तक हम जरूर पूरा करेंगे।
2: इसी क्रम में जिला गंगा समिति के तत्वावधान में गर्रा नदी स्थित राजघाट पर बृहद स्वच्छता एवं श्रमदान अभियान चलाया गया। विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्वयं सेवकों ने घाट और नदी तट की सफाई कर लोगों को स्वच्छ नदी, स्वस्थ जीवन का संदेश दिया और नदी और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने का आह्वान भी किया। सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस ने थाना पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाया। ड्रंकन ड्राइविंग, मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सघन कार्रवाई करते हुए कुल 1,843 वाहनों के चालान किए गए। पुलिस ने लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने तथा सुरक्षित वाहन संचालन के प्रति जागरूक भी किया। विकास कार्यों को गति देते हुए वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने हथौड़ा क्षेत्र में 15.44 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सदर तहसील के नए अनावासीय भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा नए तहसील भवन के निर्माण से आम नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं मिलेंगी तथा सदर और ददरौल

0: क्षेत्र के लोगों को आवागमन में भी काफी सुविधा होगी। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव एवं जनपद के नोडल अधिकारी मनीष चौहान ने विकास भवन में सीएम डैशबोर्ड, कानून व्यवस्था, राजस्व एवं विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में बताया गया कि शाहजहांपुर ने सीएम डैशबोर्ड पर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिस पर प्रमुख सचिव ने प्रशासनिक टीम की सराहना भी की। अपने भ्रमण के दौरान प्रमुख सचिव ने लगभग 26.33 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे अत्याधुनिक स्पोर्ट्स स्टेडियम का भी निरीक्षण किया। उन्होंने स्विमिंग पूल, बैडमिंटन हॉल, कबड्डी हॉल और 400 मीटर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का जायजा लेते हुए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि स्टेडियम के तैयार होने से जनपद के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएँ उपलब्ध होंगी तथा खेल प्रतिभाओं को नई पहचान मिलेगी। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आत्मा गवर्निंग बोर्ड की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कृषि एवं किसान कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारियों ने अधिकारियों को सभी योजनाओं का 100% एवं पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही किसानों की आय बढ़ाने और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जनपद में फूड फेस्टिवल आयोजित करने के निर्देश भी दिए। शाहजहांपुर में बीते माह जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पर्यावरण संरक्षण, कृषि विकास, खेल सुविधाओं के विस्तार और आधारभूत संरक्षण के विकास को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां पूरे जोर शोर से जारी रहीं। कौशलेन मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, शाहजहांपुर।
1: शाहजहांपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं प्रतापगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजितेश त्रिपाठी का।
2: प्रतापगढ़ को विकास की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सदर और विधानसभा विश्वनाथगंज के अंतर्गत 384.71 करोड़ रुपए से अधिक की 111 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें प्रतापगढ़ सदर की 42 व विश्वनाथगंज की 13 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं प्रतापगढ़ सदर की 45 एवं विश्वनाथगंज विधानसभा की 11 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतापगढ़ के औला किसानों ने जो अमृत फल दिया, उसके अनेक उत्पाद स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, इसी से यहां की समृद्धि देखकर अच्छा लगता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के सभी गरीबों किसानों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से तहसील सदर के नगर पंचायत पृथ्वीगंज के पृथ्वीगंज भगेसरा में एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यालय पर भाई रहेंद्र कुमार शुक्ला ने की। शिविर में उपस्थित लोगों को विभाग द्वारा संचालित विभिन्न स्वरोजगार परक योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्रता आवेदन प्रक्रिया, ऋण संबंधी सुविधा एवं सरकारी सहायता संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत कराया गया। साथ ही युवाओं, कारीगरों एवं ग्रामीण उद्यमियों को रोजगार का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर राम मोहन मीणा की अध्यक्षता में संसद विधायक के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के साथ त्वरित आर्थिक विकास, पूर्वांचल विकास निधि, संसद निधि, विधायक निधि से कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा विकास भवन सभागार में की। समीक्षा में वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में त्वरित आर्थिक विकास योजना से रुपये 2,926.75 लाख की लागत से स्वीकृत 156 कार्यों में 8 कार्यों की प्रगति तथा अवशेष कार्य निविदा की प्रक्रिया में पाए गए। निविदा की प्रक्रिया से पूर्ण कराते हुए सभी कार्यों को माह नवंबर 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। योजना अंतर्गत भैरनाथ धाम में कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए अब तक भूमि सीमांकन न होने पर संबंधित उप जिला अधिकारी को 2 दिवसीय में सीमांकन कराने के निर्देश दिए गए। सांसद प्रतापगढ़ के वर्ष 2024-25 के संसद निधि से स्वीकृत अपूर्ण 9 कार्यों के संबंध में अधिशासी अभियंता UPSI सी प्रयागराज से जानकारी करने पर उनके द्वारा भूमि विवाद होने की स्थिति से अवगत कराया गया, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राजस्व विभाग से सहयोग प्राप्त कर विवाद निस्तारित कर 15 दिवस के अंदर कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। जनपद में विशेष संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम व दस्तक अभियान का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AN प्रसाद द्वारा किया गया। जिला मलेरिया अधिकारी द्वारा बताया गया कि विशेष संचारी नियंत्रण अभियान का वर्ष 2026 तक का यह दूसरा चरण संचालित किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग सहित पंचायती राज, नगर विकास, शिक्षा

0: बाल विकास, एवं पुष्टाहार, कृषि, पशुपालन, सिंचाई तथा अन्य संबंधित विभागों के समन्वय से व्यापक स्वच्छता एवं जागरूकता गतिविधियों यहाँ संचालित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया, जापानी इंफ्लुएंजा सिंड्रोम तथा अन्य संचारी रोगों व जल जनित रोगों की रोकथाम के लिए जल भराव समाप्त करने, एंटी लावा का छिड़काव, स्रोतों का समापन, बुखार के रोगियों को शीघ्र पहचान, जांच एवं उपचार, जन जागरूकता तथा मच्छर बीकरसी पौधे जैसे तुलसी, गेंदा, लेमन ग्रास, लेवेंडर, सेटोनेला आदि के रोपण जैसे कार्यक्रम पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके उपरांत मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा संचारी रोगों और जल जनित रोगों से बचाव के प्रति सजग रहने के लिए उपस्थित लोगों को शपथ ग्रहण कराई गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जनपद वासियों से अपील की कि वे अपने घरों एवं आसपास स्वच्छता बनाए रखें, पानी के एकत्र न होने दें, कूलर एवं जल पात्रों की नियमित सफाई करें, मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाए तथा बुखार एवं अन्य रोगों के लक्षण दिखने पर निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर तत्काल जांच एवं उपचार उपलब्ध कराएं।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए समूह स्वरों में देशगान।

अभी आप समूह स्वरों में देशगान सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:30 होने को हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा, प्रतीक्षा करें।

0: उर्दू कार्यक्रम।
1: पेश खिदमत है आज का उर्दू प्रोग्राम शुजाउर रहमान के साथ। पुरखलूस आदाब कबूल फरमाएं। सामाइन, जिंदगी अपने अंदर बेशुमार कहानियां समोए हुए रहती है, ताहम कुछ कहानियां वक्त के शोर में गुम हो जाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो बरसों बाद भी दिल की दहलीज पर दस्तक देती रहती हैं। अफसाना भी उन्हीं जिंदा हकीकतों का एक खूबसूरत इजहार है। ये महज लफ्जों की तरतीब नहीं बल्कि एहसास, तखय्युल और मुशाहिदे का ऐसा संगम है जो इंसान को खुद उसके बातिन से रोशनास कराता है। अदब की यही खूबी है कि वो बगैर किसी वाज के बहुत कुछ कह जाता है। तो आइए सामईन, लफ्जों के इस दिलकश सफर का आगाज करते हैं और सुनवाते हैं आपको एक ताज़ा तरीन अफसाना आस, अफसाना निगार दुर्फिशा चांदनी साहिबा से। महसूस फरमाए।
2: जून का महीना और शुमाल हिंद की तपती गर्मी, ऐसा लगता था जैसे सूरज आग बरसा रहा हो। चरिंद हो, परिंद हो या इंसान, सभी शिद्दत की गर्मी से बेचैन और बेजार हो रहे थे। सभी स्कूल कॉलेज बंद हुए। ईमान डिग्री कॉलेज का आज आखिरी दिन है। सभी तलबा गर्मी की छुट्टी से खुश नजर आ रहे थे। अमर और बहार खुश थे कि गर्मी की छुट्टियों में कहीं सैर पर जाएंगे। कई सालों से उनकी काफी गहरी दोस्ती थी जो अब माँ बाप की रजामंदी से शादी के पाकीज़ा रिश्ते में बनने वाली थी। एक दिन अंबर के वालिद कासिम साहब बहार के वालिद ताहिर हुसैन के घर उनसे मुलाकात करने उनके घर आए। दोनों की गुफ्तगू बहुत ही अच्छे माहौल में हुई। चाय पानी और नाश्ते के बाद कासिम साहब अपने घर वापस चले गए। इधर कमरे के अंदर से खिड़की की दरार से झांकती बहार पसीना पसीना होकर अपने वालिद की रजामंदी की दुआएं मांग रही थी। आखिर कासिम साहब को रुख्सत करके ताहिर हुसैन घर के अंदर आए, अपनी अहलिया से कुछ गुफ्तगू की और पास पड़ी पलंग पर लेट गए। इधर बाप के पास जाकर बहार उनसे बात करना चाहती थी लेकिन लिहाज और हिचक ने उसके कदमों को रोक रखा था। तभी बहार का फोन बज उठा। वो अंबर के साथ बात करने में इतनी मोह हो गई कि उसको ये पता ही ना चला कि उसकी माँ उसकी बिल्कुल करीब खड़ी हैं। जब होश आया तो बहार के तोते उड़ गए। वालदा मुस्कुराई और बाहें फैलाकर अपनी एकलौती बेटी को गले लगा लिया। बेटी भी ममता की छाँव में खुशबू से मुअत्तर होकर बार बार माँ के रुखसारों को चूमने लगी। अगले हफ्ते ताहिर साहब भी कासिम साहब के घर गए। बातें मुलाकातें हुईं और दोनों के बीच अच्छा खासा दोस्ती हो गई। फिर कुछ ही महीनों बाद अंबर और बहार सभी रस्म रिवाज के साथ वालदेन की दुआओं के जेर साया निकाह करके शादी के पाकीज़ा रिश्ते में मुंसलिक हो गए। सब कुछ पुरसुकून था। तभी कुछ ही महीने बाद एक और खुशखबरी के बहार पहली बार उम्मीद

से हुई। पूरे कुनबे में दोनों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। कासिम साहब तो फूले न समाए और दुआओं के साथ आने वाले मेहमान का बेसब्री से इंतजार करने लगे। बेटे अंबर की पैदाइश के साथ ही अपनी अहलिया की मौत का सदमा उन्हें बर्दाश्त करना पड़ा था, लेकिन बेटी जैसी बहू के घर में आने से वो बहुत खुश थे। जब कभी बहार मायके जाती तो उन्हें घर काटने को दौड़ता, और आज भी बहार अपने माँ बाप के घर गई थी, साथ में अंबर भी थे। माँ बाप बेटी और दामाद को देखकर बहुत खुश हुए। अभी बहार और अंबर को आए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक ताहिर साहब की तबीयत बिगड़ी। सभी घर के लोग परेशान हो गए। अंबर ने अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन मिलाना चाहा, लेकिन फ़ोन न मिल सका। वो परेशान होकर पैदल ही बाहर की जानी भागा कि आसपास कोई डॉक्टर मिल जाए तो घर ले आए। लेकिन बाहर तो अजीब ही मंजर था, बहुत ही अफरा तफरी। पुलिस लगातार माइक पर से ऐलान कर रही थी कि सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, कोई बाहर ना निकले। सड़क पर मौजूद लोग बदहवास होकर इधर उधर भाग रहे थे। उड़ती उड़ती आवाज़ कान में पड़ी कि शहर में तशद्दुद भड़क उठा है। वो मजबूर होकर घर की जानिब वापस आना चाहता था, तभी उसके सर पर जोर की चोट लगी और उसके बाद उसको होश न रहा। अंबर का मोबाइल घर पर ही रह गया। बहार की उंगलियां दुख गईं फोन मिलाते मिलाते, लेकिन कहीं पर भी फोन ना मिल सका। माँ बेटी हैरान और परेशान होकर जारो खतार रोने पर मजबूर थीं। कुछ ही देर में ताहिर हुसैन को एक जोर की हिचकी आई और वो कलमा पढ़ते हुए अपने मालिक के हकीकी से जा मिले। बेटी और बीवी को कोई दिलासा देने वाला नहीं था। मोहल्ले वालों ने किसी तरह कासिम साहब को इत्तला दी, फिर उनके आने के बाद कफन दफन का इंतजाम हो सका। माँ बेटी और कासिम साहब सभी गम दुख और जहनी तकलीफ से दो चार थे। अब तो रोते रोते आंसू भी खुश्क हो गए थे। फिर एक बार गम के बादल छटे और कुदरत ने बहार की गोद में एक प्यारी नन्ही सी बच्ची डाल दी। ये प्यारी खूबसूरत बच्ची सभी घर वालों की दुआओं का सिला और जीने का वसीला बन गई। माँ नानी और दादा दिन रात इसी मासूम बच्ची के इर्द गिर्द रहते। उसको हल्की सी ठोकर भी लगती तो सब परेशान हो जाते। नन्ही कली दादा की आंखों का नूर और कल्ब की ठंडक बन गई। बहार तो कभी शैतानी करने पर बेटी को तंबीह करने लगी, लेकिन दादा फौरन ही पोती को गोद में उठाकर बाहर निकल जाते। बहार तो घर के काम में मसरूफ होकर अपना गम गलत कर लेती, लेकिन कासिम साहब से जवान बेटे की जुदाई का गम बर्दाश्त न होता तो जानमाज पर बैठकर फूट फूट कर रोते और अल्लाह से अंबर के लिए खैर और आफियत की दुआएं करते। कभी कभी तो ऐसा होता कि पोती दादा को रोते देखकर अपने नन्हे हाथों से उनके आंखों से बहते आंसुओं को पोंछकर तोतली जबान में पूछती कि दादा जान आप क्यों रो रहे हैं। तब वो जल्दी से अपने आंसुओं को रूमाल से पोंछकर कहते, बेटा बस यूं ही कभी आंखों में पानी भर आता है। घर में कुछ ही दूर पर काम में मसरूफ बहार दादा पोती की बातें सुन रही थी। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और बिस्तर पर औंधे मुंह गिरकर इतना रोई कि मुंह के नीचे रखा हुआ तकिया आंसुओं से तर बतर हो गया। जब भी बेटी अपने बाप के बारे में कोई सवाल करती तो बहार बेटी को बहलाकर बात को टाल जाती और खुद अकेले में फूट फूट कर रोती तो दिल कुछ हल्का हो जाता। गुजरते वक्त के साथ बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और अब वो माँ के मासूम बहाने से इत्मीनान करने वाली बच्ची नहीं रह गई थी। अब उसको अपने सवालों के वाजिब जवाब चाहिए थे और शायद उसको भी इस दिन का इंतजार था। आज बहार ने बेटी से कुछ भी नहीं छुपाया, शुरू से आज तक की पूरी दास्तान सुना दी। माँ बेटी की बातें हो रही थी कि तभी किसी ने कॉल बेल बजाई। अंबर दरवाजे तक गई, सामने एक बीमार सा दिखने वाला आदमी खड़ा था। उसने अपनी जेब से एक कागज निकाला और

0: हार की जानी बढ़ाते हुए बोला, मैं भी 20 साल से अंदर था, अब घर जा रहा हूँ। आज रिहाई मिली है। मैंने तो जुर्म किया था, मैं मुजरिम था, लेकिन वो अंबर, वो तो बेकसूर है, उसको बचा लो भाभी। अच्छा मैं चलता हूँ, कहकर वो 30 कदमों से आगे बढ़ गया। बहार खत को बार बार पढ़ती और रोती जाती। तभी पास में आकर खड़ी हुई बेटी घबरा कर बोली, क्या हुआ मम्मी, कौन आया था, आप क्यों इतना रो रही हैं? लो पढ़ लो, तुम्हारे बचपन से लेकर आज तक के सभी सवालों के जवाब। और इस शख्स का लाया हुआ खत उसके सामने बढ़ा दिया। खत पढ़कर उसको एक जबरदस्त झटका लगा। फिर माँ की तरफ देखकर पुर इत्मीनान लहजे में बोली, अम्मी आप परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगी। और वो 30 कदमों को बढ़ाते हुए अपने चैम्बर की जानिब चल दी। ना जाने कितनी कानून की किताबें पढ़ डाली, आखिर मेहनत रंग लाई और आज अपने वालिद को रिहा करवाने में कामयाब हुई। वैसे भी उसका नाम बहुत ही ईमानदार वकला में शुमार होता था। आज एक बाप को बेटा, बीवी को शौहर और बेटी को उसका बिछड़ा हुआ बाप मिल गया।
1: अभी आप समाअत फरमा रहे थे एक बेहतरीन अफसाना आस मोहतरमा दुर्फिशा चांदनी साहिबा से। आइए सामईन, अब आपको ले चलते हैं शायरी की दुनिया में और कलाम शायर के तहत सुनवाते हैं एक ताज़ा दम कलाम जनाब अतीक अहमद खां साहब से।
2: कि किस कदर अंधेरा है प्यार की बस्ती में, किस कदर अंधेरा है प्यार की बस्ती में, कहाँ गए दीप उल्फत के जलाने वाले, कि कहाँ गए दीप उल्फत की जलाने वाले। और ये शेर समात फरमाएं कि उफ ये कैसा निज़ाम है शहर का, तेरे लुट जाते हैं रास्ता बताने वाले। और चार मिसरे और समात फरमा लें कि मुझको पता नहीं था यूं होता है प्यार में, मुझको पता नहीं था यूं होता है प्यार में, पत्थर का बन गया हूं तेरे इंतज़ार में, मुझको पता नहीं था यूं होता है प्यार में, पत्थर का बन गया हूं तेरे इंतज़ार में। और मुझ पे शहर के लोगों ने पत्थर उठा लिए, मुझ पर शहर के लोगों ने पत्थर उठा लिए, ऐसी सज़ा मिली है मुझे तेरे प्यार में। और आईना मुझको देखकर हैरत में पड़ गया, आईना मुझको देखकर हैरत में पड़ गया, मैं इतना अट गया हूँ धूल के गुबार में, आईना मुझको देखकर हैरत में पड़ गया, मैं इतना अट गया हूँ धूल के गुबार में। और टूटा जो दिल हमारा तो कलियाँ सिसक पड़ी, टूटा जो दिल हमारा तो कलियाँ सिसक पड़ी, गुल कोई न खिल सका अब की फसले बहार में, गुल कोई खिल न सका अब की फसले बहार में। कि जिस्मों का कारोबार सरेआम हो गया, जिस्मों का कारोबार सरेआम हो गया, अब जा रही है नस्ल तबाही के गार में, अब जा रही है नस्ल तबाही के गार में। और ये शेर बतौर ख़ास, तारीख उठाकर देख लो हिंदुस्तान की, था तख्त हमारा दोस्तों ताजदार में, था तख्त हमारा दोस्तों ताजदार में। और मक्ता समात फरमाएं कि हमने अतीक जिसको देखा ना कहीं कभी, हमने अतीक जिसको देखा कभी ना कहीं, ये कौन बस गया है दिले दागदार में, ये कौन बस गया है दिले दागदार में। और एक गज़ल का मतला और शेर समात फरमा लें कि हुस्न है आहनी तलवार बड़ी मुश्किल है, हुस्न है आहनी तलवार बड़ी मुश्किल है, इश्क है रेत की दीवार बड़ी मुश्किल है, और मैं भी पागल हूँ जो दिल दे दिया परदेसी को, मैं भी पागल हूँ जो दिल दे दिया परदेसी को, उससे मिलना हुआ दुश्वार बड़ी मुश्किल है, उससे मिलना हुआ दुश्वार बड़ी मुश्किल है। और तुमने लिखा है मेरा नाम जो हथेली पे, तुमने लिखा है मेरा नाम जो हथेली पे, दोस्त दुश्मन हुए यार बड़ी मुश्किल है। और मेरी शोहरत की खबर जब पड़ी अखबारों में, मेरी شہرت

की खबर जब पड़ी अखबारों में, हो गए दोस्त भी गद्दार, बड़ी मुश्किल है। मेरी शोहरत की खबर जब पड़ी अखबारों में, हो गए दोस्त भी गद्दार, बड़ी मुश्किल है। और कहीं हद पार न कर जाऊं मैं पागलपन की, कहीं हद पार न कर जाऊं मैं पागलपन की, उनसे आंखें हुई हैं चार, बड़ी मुश्किल है। कहीं हद पार न कर जाऊं मैं पागलपन की, उनसे आंखें हुई हैं चार, बड़ी मुश्किल है। और गज़ल का आखिरी शेर समाप्त फरमाएं कि मेरी बर्बादी का हर शख्स तमाशाई था, मेरी बर्बादी का हर शख्स तमाशाई था, कोई मिलता नहीं गमखार, बड़ी मुश्किल है, कोई मिलता नहीं गमखार, बड़ी मुश्किल है। और गज़ल का मक्ता समाप्त फरमाएं कि मैं तो खामोश खड़ा था सरे बाजार अतीक, मैं तो खामोश खड़ा था सरे बाजार अतीक, ना मिला कोई ख़रीदार, बड़ी मुश्किल है, ना मिला कोई ख़रीदार, बड़ी मुश्किल है। ये गज़ल का मतला और चंद अशआर समाप्त फरमा लें। अब

चाहिए। और गजल का मकता समाप्त फरमाए कि उसकी चाहत मैं गुम हो गया हूँ अतीक, उसकी चाह

0: सी।
1: अभी आप महसूस हो रहे थे जनाब अतीक अहमद खान साहब के ताज़ा तरीन कलाम से। तो सामईन, आज के उर्दू प्रोग्राम में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए शुजाउर रहमान को इजाज़त दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, आदाब।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। कुछ ही पलों में हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: लीजिए सुनिए सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं भूपेंद्र कुमार। हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भूपेंद्र कुमार की गाए भजन। सबसे पहले लीजिए सुनिए कबीर दास जी की रचना भूपेंद्र कुमार के स्वर में।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भूपेंद्र कुमार के गाए भजन। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 10 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
1: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,770 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। श्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ते ATS ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ATS के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जैश ए मोहम्मद के 8 सदस्यों को इस महीने गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार ये आरोपी गुजरात में आतंकी नेटवर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट NEET.NTA.NIC पर उपलब्ध हैं। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। उत्तर प्रदेश में आज माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति

0: और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी है। इस नीति के अंतर्गत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा में विभिन्न स्थानों पर तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी आज मूसलाधार वर्षा की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ स्थानों पर ऐसा ही मौसम रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हमारे कार्यक्रम आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अभिनेत्री नूपुर जोशी से नेहा गुप्ता एवं और अभय कांत तिवारी की बातचीत का आज आप सुनेंगे तीसरा भाग।

0: श्रोताओं, इस सप्ताह वॉइस ऑफ प्रयागराज में हम बातचीत कर रहे हैं एक्ट्रेस नुपुर जोशी जी से, तो आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।
1: अच्छा, अभी जब बातचीत हो रही है आपसे, तो एक तरफ बड़ा पर्दा है, मेकअप लगाए हुए नुपुर जी एक्टिंग कर रही हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, और एक तरफ वो नुपुर हैं जो हट योग की ओर काम कर रही हैं। देयर इज टू डिफरेंट पर्सनालिटीज इन वन बॉडी वन माइंड।
2: सो योग का मतलब ही होता है कॉम्बिनेशन, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ योर माइंड बॉडी एंड सोल। तो जब मुझे लगा कि मैं अभी वहाँ शारीरिक रूप से हूँ नहीं, फिजिकली आई एम नॉट प्रेजेंट इन बॉम्बे, जब मैं यहाँ हूँ मुझे अपना मन लगाना है, चाहे वो मेरा डांस है ओडिसी, या फिर मैं जो यहाँ अपने फैमिली वेलफेयर में जो थोड़ा बहुत समय देती हूँ, या मेरा घर है, तो मुझे कुछ ऐसा माध्यम चाहिए था जो मुझे एक स्थिरता प्रदान करे। तो योग से बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता।
1: बहुत सारी महिलाएं हैं जो शादी होती है, उनकी बच्चे होते हैं, फिर मैंने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मेरा जीवन तो खत्म हो गया, अब कुछ होगा नहीं। लेकिन इस पूरे बातचीत के दौरान मैंने ये चीज़ देखा है कि आप अप्रोच करती हैं, जाती हैं, और खुद को संभालने की कला भी आप सीखती रहती हैं। देयर इज टू डिफरेंट थिंग्स, कोई कह रहा है कि नहीं जी अब सब खत्म हो गया, कोई कह रहा है कि नहीं जी सब कुछ बाकी है।
2: ये ना मुझे लगता है थोड़ा तो आपके अंदर पहले से होता है, थोड़ा आपको बनाना ही पड़ता है। समय हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलता, हमेशा क्या, कभी नहीं चलता। आप क्या प्लान कर रहे हैं आज, आपका दिन कैसा जाएगा, जरूरी है वैसा जाएगा? 1% भी पॉसिबिलिटी नहीं आपके हिसाब से जाए, बट अगर आप रुक जाएं पहला कदम लेते ही, तो दिन तो आपने वहीं रोक लिया अपना। मुझे लगता है कि ये एक निरंतर प्रयास है जो इंसान को हर दिन हर मिनट खुद करना है। कोई नहीं आएगा, जो बनाना है आपने अपने अंदर खुद को ही बनाना है, और बाहर का जो आपका एक सर्कल है, एक ऑरा, एक वाइब क्रिएट करना है, वो भी आपने ही करना है। मैं ये भी कहना चाहूँगी, आजकल की हमारी जो जेनरेशन है इसको बहुत सेल्फिश बना रही है, मेरा मतलब वो बिल्कुल नहीं है। सेल्फिश होना और अपने आप को दृढ़ करना वो दो अलग, बहुत अलग बातें हैं। आपको अपने आप को दृढ़ इसलिए रखना है, इसलिए मजबूत बनाना है, ताकि आप अपने आसपास आपके प्रियजन जो हैं उनके काम आ पाएं। आप अपने को अगर दृढ़ नहीं रखेंगे तो आप किसी के लायक नहीं है। आप डूबते को तिनके का सहारा, कम से कम तिनका तो बनिए। अपने लिए अगर आज आप तिनका बन रहे हैं, तो आप अगले के लिए ढाल भी बनेंगे।
0: आपने बताया कि आपके हस्बैंड जो हैं आर्मी ऑफिसर हैं, तो फिर उनसे कैसे मुलाकात हुई, कैसे आप मतलब वहां से यहां तक का जो सफर है वो कैसा रहा?
2: तो मैं बचपन से चाहती थी कि मेरी शादी ना एयरफोर्स ऑफिसर से हो, तो काफ़ी लोगों को काम पे लगा रखा था मैंने। मेरे भाई हैं छोटे, मेरे मामू हैं बड़े, और काफ़ी लोग हैं परिवार के जो फौज में भी हैं, एयरफोर्स में भी हैं, तो और मेरे काफ़ी दोस्त भी हैं। तो एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, उनके दोस्त फौज में हैं, तो वाया मीडिया से मेरी मुलाकात उनसे हुई, उनको भी बता दिया मैंने। मुझे तो जो मिलता है सबको बता देती थी कि मुझे फौजी से शादी करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरा थॉट था फौजी से शादी करने का, क्योंकि ऐसा कोई मेरा शारीरिक वो नहीं हो पाएगा योगदान अपने देश के लिए।

0: तो आई विल मैरी एंड बिकम द बेटर हाफ, आई
1: तो
0: विल
1: आपकी एक ही कंडीशन थी कि वो
0: फौजी हो, लंबा
1: फौजी
0: हो
1: हो,
0: लंबा फौजी
1: तो ठीक है कि
0: चाहिए
1: जब आप पहली बार अपने हस्बैंड से मिली होंगी, मतलब
0: जी
1: होने वाले हस्बैंड से उस समय मिली होंगी,
0: जी
1: तो कोई गाना आपके दिमाग में आया होगा जो अभी आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाह रही हो?
0: तो एक उनका प्रिय गाना है, ओ मेरे दिल के चैन।

0: नुपुर जी, अभिनय के अलावा,
1: जी
0: क्योंकि अभी आप जुड़ी हुई हैं अभिनय से, लेकिन इस समय उतनी व्यस्त नहीं है अभिनय जीवन में,
1: जी
0: तो फिर क्या आप और भी कुछ कर रही हैं अभिनय के अलावा? मान लीजिए आप एक्टिंग की फील्ड में न जाती तो क्या बनती, या अभी क्या कर रही हैं?
1: तो अभी मैं, जैसे मैंने बताया, योग एक मेरा प्रॉस्पेक्ट है जो कि एक्चुअली मैं चाह रही हूँ उसमें आगे और पढ़ाई करूँ और इसी को अपने जीवन में अपनाऊँ। करियर बने नहीं बने वो पता नहीं, लेकिन मैं योग की पढ़ाई ज़रूर करना चाहूँगी। उसके अलावा मुझे बेकरी का बहुत शौक है। जैसे आई एम अ लर्नर फॉर लाइफ, मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने का काफ़ी शौक है। आप पूछ रहे थे
0: आपको
1: कि
0: देख के
1: माय
0: लगता तो नहीं कि आप बेकरी प्रोडक्ट्स यूज करती होंगी?
1: नहीं तो जो फिर हलवाई अगर मिठाई खाएगा तो फिर वही है ना, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो फिर क्या होगा, हलवाई अपनी मिठाई थोड़ी खाता है। तो अभी देखते हैं वो कहाँ तक पहुँचता है सपना। मैंने तो रिकॉर्डिंग का भी कोर्स कर रखा है फॉर दैट मैटर। बहुत अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रहती हूँ।
2: कोई ऐसा लम्हा शूट के दौरान, जैसे आपने वो वाला बताया अयूब खान जी के साथ,
1: जी
2: जब
1: जी
2: इलेक्ट्रॉल पी पी के आपने खूब काम किया और वो हिट भी हो गया वो आपके लिए भी हिट हो गया, आपको याद है
1: याद है मुझे वो।
2: तो ये जवानी है दीवानी के दौरान कोई ऐसा वाक्या हुआ हो जब आप सब लोग, कल्कि कोचलिन थी, दीपिका थे, रणवीर, आयान आप
1: जी
2: थी,
1: जी
2: तो कुछ ऐसा हुआ हो जो सुधीर श्रोताओं को जानकर अच्छा लगे?
1: तो वहाँ पे काफ़ी, जैसे ठंड होती थी, हम लोग शिमला में
2: हाँ, ट्रैकिंग वाला।
1: ट्रैकिंग वाला जो हमारा सीक्वेंस था, तो हमने शिमला में ऐसे पार्ट एंड पोर्शंस में थोड़ा अब्रॉड भी ऐसे मिक्स एंड मैच शूट किया है। तो वहाँ पे क्योंकि सुबह जल्दी हो जाती थी, हम लोग 2:30 बजे उठ करके मेकअप वेकअप कर रहे होते थे, पूरा तैयार होकर के।

0: 4 बजे सेट पे होते थे और इंतज़ार
1: हाँ
0: देखते थे कि बादल छटे
1: हाँ
0: तो शूट शुरू हो। तो सब लोग और हमारे कॉस्ट्यूम्स जो होते थे वो थोड़े शॉर्ट्स और टॉप और इस तरीके थे, और मौसम वहाँ
1: हाँ
0: बिल्कुल बर्फ़ वाला होता था,
1: यस
0: तो काफ़ी हम लोग निर्भर थे उस समय मौसम में। तो ये एक हम
1: हाँ
0: लोगों का ड्रिल होता था कि सुबह उठ के, हम 2-3 बार ऐसा भी हुआ क्योंकि मौसम ख़राब होने की वजह से चॉपर नहीं चल रहा था, तो वो फिर कैंसिल हुई है शूट 2-3 बार। तो हम लेकिन तैयार हो गए, उसके बाद हमको डे ऑफ मिला है। तो ये एक काफ़ी हंसी का वाक्या होता था। तैयार होते थे शूटिंग के लिए पूरा, और 5 बजे तक तो डिक्लेयर हो जाता था कि आज मौसम ख़राब ही है, सुबह 5 बजे। उसके बाद हम होटल वापस आते थे, अपना मेकअप वेकअप निकाल के शिमला की सड़कों पे मस्त शॉपिंग, और वहाँ के कैफेज़ में सारे हम लोग बैठ करके,
1: जो वहाँ का माल रोड है,
0: माल रोड में।
1: चर्च है,
0: जी
1: आप पहाड़ी हैं ना, तो
0: जी
1: आप पहाड़ तो आपको पसंद आएगा ही
0: हाँ
1: आएगा।
0: बिल्कुल, आपने पहाड़ी से पहाड़ी बात है, पूरी दीदे खुल गई है मेरी।
1: तो जब आप पहाड़ देखती, पहाड़ में गई, तो कोई ऐसा गाना आपको याद आया कि ये वाला गाना? पहाड़ों में कई गाने शूट हुए हैं, अगर आपको याद आ रहा हो तो।

0: नुपुर जी, आपकी आगे की योजना के बारे में हम जानना चाहते हैं कि आपने एक सफल करियर बनाया, उसके बाद आपका पारिवारिक जीवन भी सफल है, आप खुश हैं, आप संतुष्ट हैं अपने करियर
1: जी,
0: से, तो आगे की योजना क्या है?
1: आगे बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करती हूँ मैं अभय जी। जैसा मैंने बताया कि जुड़ाव मेरा अभी भी है मुंबई से, थिएटर्स में हमेशा से करना ही चाहती हूँ। आगे जाके अगर मौका मिलेगा तो मैं फुल फ्लेजेडली थिएटर करना चाहूँगी।

0: सब है उसमें। तो इस तरीके का अगर कोई कैरेक्टर प्ले करने के लिए आपको मिले, उसकी तैयारी इतनी ज़बरदस्त होगी और वो फिर आएगा स्क्रीन पे तो अलग ही मज़ा आएगा। तो उस तरीके का कुछ बहुत अच्छा रहेगा अगर मुझे मौका मिले कुछ करने का, मैं पूरी जस्टिस कर पाऊँ। और उसके साथ साथ जैसे सदमा में श्रीदेवी का किरदार है
1: जो हमारे श्रोतागण कुछ
0: जी
1: ऐसे भी होंगे जो अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाह रहे
0: जी
1: होंगे,
0: जी
1: खासकर छोटे शहरों के जो लोग हैं, तो
0: जी
1: उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: आप लोगों को तैयारी अपनी बिल्कुल दुरुस्त करनी चाहिए। वो समय पुराना था जब हमारी ऑन फील्ड ट्रेनिंग हो जाती थी। आजकल समय का अभाव रहता है, क्विक ज़िंदगी हो गई है। तो अगर आपकी तैयारी स्ट्रांग है, अगर आपने कोई ट्रेनिंग ले रखी है एक्टिंग के फील्ड में, तो वो आपको ज़रूर सहायता करेगी। अगर आप आना चाहते हैं फील्ड में, बहुत से कोर्सेज होने लग गए हैं आजकल, शॉर्ट टर्म वर्कशॉप्स होती हैं, बहुत से नाम आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे, आप जहाँ जा सकते हैं। NSD है, बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ पे ज़रूर जाएं। एक प्रोफेशनल जो शिक्षा होती है बहुत ज़रूरी है मेरी ओर से, और साथ के साथ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आपके पास एक फॉल बैक ऑप्शन, जो आपके पास एक सेकेंड प्लान, वो ज़रूर होना
1: प्लान
0: चाहिए,
1: बी
0: प्लान बी, जो कि आपका प्लान ए बनने के लिए तैयार रहे हमेशा। हताश नहीं होना है, अपॉर्चुनिटीज़ होंगी सबके लिए, मतलब देर इज़ इनफ सनशाइन फॉर एवरी वन, बट यू हैव टू फाइंड योर ओन सन। तो हताश नहीं होंगे, मौका मिलता है, छोटा हो काम, बड़ा हो काम, आप शुरुआत कर रहे हैं तो हर काम को सराहें, लें, आगे बढ़ें। और फॉल बैक ऑप्शन, जैसा मैंने कहा, पढ़ाई ज़रूर करें ताकि कल को अगर कहीं दिक्कत आ रही हो तो आपके पास कुछ ना कुछ हो।
1: तो नुपुर जी, बातचीत के क्रम में अब समय आ गया है श्रोताओं को गीत सुनवाने का, तो इस बार आप कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगी?
0: एक और मेरा ऑल टाइम फेवरेट गाना है, मेरे परिवार के काफ़ी लोग हैं उनको भी गाना काफ़ी पसंद है, उनकी फरमाइश आई थी ये गाना ज़रूर सुनाइएगा।
1: उनका नाम भी आप ले सकती हैं।
0: मेरे ससुर जी हैं। गाना है

0: तो अब समय समाप्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को कौन सा गाना आप सुनवाना चाह रहे हैं?
1: तू इस तरह

0: उम्मीद है सभी श्रोताओं, इस हफ्ते वॉइस ऑफ प्रयाग में अभिनेत्री नुपुर जोशी जी को आपने सुना है और बहुत अच्छा लगा होगा आपको। जितने खूबसूरत हैं वो, उतने खूबसूरत उनके विचार हैं, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत उनकी प्लानिंग, उनकी मेहनत है और ज़िंदगी की समझ है। तो उम्मीद करते हैं कि वॉइस ऑफ प्रयाग आप सुनते रहेंगे और अपनी प्रतिक्रिया से ज़रूर अवगत कराइएगा। हमारा नंबर है 8004926250। तो नुपुर जी, आप आए स्टूडियो में, बहुत अच्छा लगा।
1: मुझे भी बहुत मजा आया नेहा जी, अभय जी, बहुत अच्छा लगा, पता ही नहीं चला समय कहाँ गया। थैंक यू,
2: आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वॉयस ऑफ प्रयागराज। इसमें अभिनेत्री नूपुर जोशी से नेहा गुप्ता और अभाकांत तिवारी की बातचीत का आज आपने सुना तीसरा भाग। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी।

वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। लीजिए अब सुनिए लोकगीत। आज कलाकार हैं मोहनलाल जैसल और साथी और इंद्रजीत यादव और साथी। सबसे पहले हम आपको मोहनलाल जैसल और साथियों के स्वर में सुनवा रहे हैं ये लचारी।

मोहनलाल जैसल और साथियों के गाए लोकगीतों के बाद अब हम आपको इंद्रजीत यादव और साथियों के गाए लोकगीत सुनवा रहे हैं। लीजिए सुनिए देवी गीत इंद्रजीत यादव और साथियों के स्वर में।

लोकगीतों के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे मोहनलाल जैसल और साथी और इंद्रजीत यादव और साथियों के गाए लोकगीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आप हमारे प्रोग्राम न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। विशेष खिदमत प्रोग्राम फिल्म संगीत एक ही कलाकार। सभी सुनने वालों को अतुल यादव का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिनकी कलम से निकले शब्द सीधे दिल में उतर जाते हैं। इमोशनल अत्याचार से लेकर केसरिया तक, जिसने हर जज्बात को अल्फाज दिए।
1: धड़कन नहीं जाना, जिंदा हूं मैं तो अभी।
0: तो स्वागत करते हैं संगीत के शिल्पकार, गीतकार और गायक अमिताभ भट्टाचार्य का।
1: ये लम्हा कहाँ था मेरा।
0: शुरू करते हैं सफर उनकी अनसुनी कहानियों और उनके बेहतरीन गीतों का।

कहते हैं हर कलाकार के भीतर एक सपना होता है और अमिताभ भट्टाचार्य के बीच भी वही सपना था, गायक बनने का सपना। लखनऊ के रहने वाले अमिताभ ने संगीत को बचपन से ही महसूस किया था। कॉलेज फंक्शंस में परफॉर्म करते अमिताभ को लगता था कि कभी मेरा भी गाना बड़े पर्दे पर जरूर आएगा, और यही वो सपना था जो ग्रेजुएशन के बाद उन्हें मुंबई खींच लाया। लेकिन मुंबई में न गाने का मौका मिला और न ही कोई पहचान मिली। महीनों उन्होंने स्टूडियोज के बाहर इंतजार किया, गाना रिकॉर्ड करवाने की कोशिश की, पर हर जगह जवाब मिला अभी नहीं, बाद में। संघर्ष की निराशा को कम करने के लिए उन्होंने विज्ञापनों के जिंगल्स के लिए गीत लिखना शुरू किया, और यहीं से उन्होंने अपनी लेखनी को धार देनी

साल 2004, जब उनके एक मित्र ने उन्हें संगीतकार अमित त्रिवेदी से मिलवाया। अमित उस वक्त टीवी चैनल्स के लिए म्यूजिक बनाया करते थे। फिर क्या था, अमिताभ उनके लिए रफ गीत लिखने लगे और यही वो समय था जब अमिताभ भट्टाचार्य को लगा कि उनमें धुनों को शब्द देने की जन्मजात प्रतिभा है, जिसे उन्होंने अभी तक सीरियसली लिया ही नहीं था। अमिताभ को बड़ी सफलता तब मिली जब अमित त्रिवेदी अनुराग कश्यप की फिल्म देवडी के संगीत पर काम कर रहे थे। त्रिवेदी ने अमिताभ से गीत के कुछ अंश लिखने को कहा। अमिताभ भट्टाचार्य ने देवडी के गीतों के बोल लिखे और इसके ज्यादातर गाने हिट हो गए और यही वो सफर था जो अब रफ्तार पकड़ने को बेताब था।

श्रोता, अमिताभ भट्टाचार्य के गीत में कहीं ना कहीं रोमांस था, कई बार उसमें वो मस्ती थी जो यूथ को रिप्रेजेंट करती थी, और कई बार उसमें आध्यात्म की वो एक लॉ दिखाई पड़ती थी जो हर किसी को अपनी ओर खींच लाती थी। उसी बीच इमोशनल अत्याचार, जो देवडी का गाना था, वो भी आया। इस गाने ने एक नए दौर की शुरुआत की। ये गाना न सिर्फ बोल्ड था बल्कि अलग किस्म की सोच लेकर आया था, और अमिताभ का यही अंदाज उन्हें बाकियों से अलग बनाता है। 2009 में उन्होंने एक और गाना बनाया, इतारा। जब ये गाना लोगों तक पहुंचा तो यूं लगा जैसे सुबह की ठंडी हवा सी आ गई हो कहीं से। ऐसा लगता है जैसे दिल में हल्की सी कोई रोशनी चला गया हो, और ये अमिताभ के शब्दों की सादगी में समाई गहराई थी।

श्रोता, अमिताभ भट्टाचार्य का एक और गाना जो दोस्ती और मोहब्बत को साथ लेकर आया। इस गाने में जो भाव हैं वो हर किसी को अपने किसी पुराने रिश्ते की ओर खींच ले जाते हैं। अमिताभ भट्टाचार्य ने जिंदगी को शब्दों में ढालना जिस तरीके से सीखा, उसी तरीके से हम सबके सामने रखा और इस बात की तस्दीक कर जाता है ए दिल है मुश्किल का टाइटल ट्रैक, और उसी के बाद चेन्नई एक्सप्रेस। आखिर कौन भूल सकता है जब दिल का दर्द लफ्जों में उतरता है तो वो ए दिल है मुश्किल बन जाता है। और फिर उसी दौर में उन्होंने लिखा नैना, जो दंगल जैसे फिल्म में एक बेटी और पिता के रिश्ते को आंसुओं में पिरो देता है। कितना अद्भुत है, बदतमीज दिल बलम पिचकारी जैसी मस्ती लिखने वाला गीतकार नैना जैसी भावुकता भी रच सकता है।

श्रोताओ, अमिताभ भट्टाचार्य सिर्फ एक गीतकार ही नहीं बल्कि हर दिल की आवाज रहे हैं। उनके शब्द हमें रुलाते भी हैं और हंसाते भी हैं, और इतना ही नहीं जिंदा रहने का एहसास भी कराते हैं। कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अतुल यादव के साथ, फिर मुलाकात होगी और बात होगी किसी और कलाकार की। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत एक ही कलाकार, जो केंद्रित था अमिताभ भट्टाचार्य पर। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दीपक कुमार राय। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार।

0: प्रस्तुत है युवा साथियों का अपना कार्यक्रम यूथ एक्सप्रेस।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग डियर लिसनर्स। इट्स 11:30 एंड अ फ्राइडे मॉर्निंग, यानी इट्स टाइम फॉर यूथ एक्सप्रेस। और मैं हूँ सुष्मिता श्रीवास्तव, एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि अगले आधे घंटे आपके दिन को एक मच नीडेड एनर्जी और एंटरटेनमेंट का बूस्ट दे सके। आज हम बात करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो सुनने में तो आपको बिल्कुल एक मूवी जैसा लगेगा, लेकिन रियलिटी में हम सबकी लाइफ का हिडन सुपर पावर है। जी हाँ, हम आज बात करेंगे द बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में। कभी बस एक रैंडम हाई ने एक बहुत स्ट्रांग फ्रेंडशिप बनाई है, या फिर एक लेट अलार्म से एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिली हो, या फिर इंटरनेट पे आपने कोई बहुत ही रैंडम सा एक वीडियो देखा हो जो आपको आपके करियर में एक नया ऑप्शन दे। ज़रा सोचिए, क्या सच में कि एक छोटी सी चीज़ आपके फ्यूचर को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है? आज इसी मिस्ट्री को हम लोग डिकोड करेंगे। सबसे पहले एक सीन इमेजिन करिए। सुबह बस आप 5 मिनट ही सही, लेकिन लेट से उठे, आपकी बस मिस हो गई और आपने नेक्स्ट बस ली, और उस नेक्स्ट बस पे आपको एक स्ट्रेंजर मिला जिससे बात होने के बाद आपको एक इंटर्नशिप के बारे में पता चला, और आगे चल के वही इंटर्नशिप ने आपको आपकी मच नीडेड और इम्पॉर्टेंट ड्रीम जॉब से मिला दिया। बस यही तो है बटरफ्लाई इफेक्ट, यानी एक छोटी सी बिगिनिंग और उसके बाद के इवेंट्स की पूरी चेन जो आपके फाइनल रिजल्ट को टोटली बदल देती है।

तो दोस्तों बात हो रही थी बटरफ्लाई इफेक्ट की, और बता दें कि ये आइडिया पॉपुलर हुआ क्योस थ्योरी से। इस टर्म को मीटियोलॉजिस्ट एडवर्ड नॉर्टन लॉरेंस ने 1960s में डेवलप किया। एक्चुअली वो एक वेदर प्रेडिक्शन पर कंप्यूटर मॉडल बना रहे थे। एक दिन उन्होंने सोचा सेम कैलकुलेशन को दोबारा चलाते हैं, लेकिन उन्होंने एक नंबर को पूरा लिखने के बजाय उसका राउंडेड ऑफ वर्जन यूज़ किया, यानी बस डेसिमल के बाद के ही कुछ माइन्यूट से चेंजेस थे। उन्हें लगा कि रिजल्ट पे क्या ही ज़्यादा फर्क पड़ेगा एंड ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट मिलेगा, लेकिन रिजल्ट पूरा अलग आया, यानी कि एक कम्प्लीटली डिफरेंट रिजल्ट। यस, तब उन्हें समझ में आया कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जैसे वेदर, उनमें बहुत छोटे छोटे चेंजेस भी फ्यूचर में काफ़ी बड़े चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। इसी ऑब्जर्वेशन से क्योस थ्योरी को बूस्ट मिला। फिर बात आती है 1972 में, जब लॉरेंस ने एक लेक्चर दिया जिसका टाइटल था डज द फ्लैप ऑफ अ बटरफ्लाईज विंग इन ब्राज़ील सेट ऑफ अ टोर्नेडो इन टेक्सास। वेल, ध्यान रहे, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि बटरफ्लाई सच में टोर्नेडो बनाती है। बटरफ्लाई तो बस एक सिंबल थी। एक्चुअल मैसेज था कि कभी कभी छोटे छोटे यानी कि बहुत ही माइक्रोस्कोपिक चेंज बहुत बड़े चेंजेस ला सकते हैं, फ्यूचर में मैसिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं, थोड़ा इसको साइकोलॉजी से जोड़ते हैं। साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग बटरफ्लाई इफेक्ट दिखाता है कैसे हमारी छोटी सी चॉइस या हमारा कोई छोटा सा आइडिया एक बहुत ही बड़े मैसिव एक्शन को रिजल्ट दे सकता है।

साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग बटरफ्लाई इफेक्ट दिखाता है कि कैसे हमारी एक छोटी सी चॉइस, हमारा एक छोटा सा आइडिया एक मैसिव और एक लंबे एक्शन चेन में बदल सकती है। जैसे हर रोज के छोटे छोटे एक्शंस एक चॉइस रखते हैं, एक पावर रखते हैं कि वो हमारी लाइफ में बड़े चेंजेस को रिजल्ट दे सकें। जैसे कोई बुक पढ़ना या किसी से एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन भी आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है। फ्रेंड्स, हमारे एक्शंस ना कई बार काफ़ी इनविजिबल तरीकों से हमारे फ्यूचर को डिसाइड कर रहे होते हैं, या यूँ कहें कि उसमें अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस ला रहे होते हैं। और दोस्तों, यहाँ बात सिर्फ करियर, सिर्फ गोल्स की नहीं है, बल्कि हमारे रिलेशनशिप्स की भी है। जैसे एक सिंपल स्माइल से या एक सिंपल पॉजिटिव अप्रोच से आप एक ऐसे इंसान से इंट्रोड्यूस हो सकते हैं जो आगे चलकर आपका एक बहुत अच्छा, बहुत खास और बहुत क्लोज फ्रेंड बन जाए। कितने आइडियाज़ होते हैं ना किसी के पास, और उसी के वो पॉजिटिव आइडियाज़ अगर आपकी लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस ले आए तो। या फिर जैसे एक स्लाइट सा शिफ्ट किसी की थिंकिंग में, या एक छोटा सा रेजोल्यूशन किसी को नेगेटिव थिंकिंग के लूप से बाहर निकाल सकता है।

तो दोस्तों, जैसे किसी का कोई पॉजिटिव थिंकिंग अगर करने लगे तो वो नेगेटिव थिंकिंग के विशियस लूप से बाहर आ जाता है, कुछ ऐसे ही हमारी थॉट्स, हमारे हैबिट्स और हमारे एक्शंस लॉन्ग टर्म आउटकम को भी डीपली इन्फ्लुएंस करते हैं। वैसे एक सिचुएशन इमेजिन करिए, जैसे आपने जिम ज्वाइन किया हो और सिर्फ एक दिन ही गए और वहाँ जाके आपकी किसी से फ्रेंडशिप हुई। इवेंचुअली उसके इन्फ्लुएंस में आप आकर आपने हेल्दी खाना स्टार्ट किया, आपका कॉन्फिडेंस भरा और धीरे धीरे आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती गई। उसके साथ आपका करियर इम्प्रूव हुआ, साथ ही साथ आपकी रिलेशनशिप्स भी इम्प्रूव हुए। लेकिन इन सब का स्टार्टिंग पॉइंट आखिर क्या था? वो था एक जिम मेंबरशिप। सो साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि हैबिट्स ना कंपाउंड होती रहती हैं, जैसे कि जेम्स क्लियर ने अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में इसी आइडिया को एक्सप्लेन किया था। वो कहते हैं कि 1% इम्प्रूवमेंट डेली लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट ला सकता है। यानी कि बटरफ्लाई इफेक्ट सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, एक्चुअली एक इंटेंशनल चीज़ है।

आई एम श्योर फ्रेंड्स, ये गाना आपको आपके किसी ना किसी खास दोस्त के बारे में ज़रूर याद दिलाया होगा, क्योंकि कभी ना कहीं हमने ये गाना उन्हें डेडिकेट किया हो। और जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे ना कि हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप आर सेल्फ पॉजिटिव और पॉजिटिव एक्शंस लेना कितना इम्पॉर्टेंट है, तो आइए एक और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट जानते हैं जिसे कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। अगर आप बोलते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता या मैं ये काम नहीं कर सकती, तो हमारा ब्रेन ना वैसे ही बिहेव करने लगता है। वो एफर्ट्स को कम कर देता है, रिजल्ट्स वीक आते हैं, और जब रिजल्ट्स हमारे फेवर में नहीं आते ना, तो हम कहते हैं देखो मुझे पता था ये मुझसे नहीं होगा, और फिर हम सोचते हैं कि जो मैंने नेगेटिव सोचा ना वही रिजल्ट आया। यानी कि एक नेगेटिव थॉट इनिशियली जिससे आपने स्टार्ट किया वो रियलिटी बन गया। लेकिन पता है इसकी एक क्या खूबसूरत बात है, चीज़ें जैसे हमने नेगेटिव बोला उसी तरीके से उल्टा भी एग्जैक्टली ट्रू होता है। जैसे एक पॉजिटिव बिलीफ, एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, एक एक्स्ट्रा ट्राई, एक एक्स्ट्रा फ़ोन कॉल या एक एक्स्ट्रा बार अप्लाई करना, कहीं पे कोई एप्लीकेशन डालना, आपकी लाइफ की डायरेक्शंस को बदल सकता है। मतलब एक रिलेटेबली चैलेंज है। ज़रा सोचिए कि अगर आप किसी को जेन्युइनली उसके काम के लिए अप्रिशिएट कर दें, या फिर कोई एक प्लांट लगा दें फॉर द गुड ऑफ एनवायरनमेंट, या फिर रीडिंग स्लम को तोड़ने के लिए आज ही मान लीजिए सिर्फ 5 पेजेस ही सही बट एक बुक पढ़ें, बहुत टाइम से ओवरथिंकिंग करने के बाद आज फाइनली उस रेज्यूमे को भेज दें, क्या पता आपकी लाइफ का बटरफ्लाई इफेक्ट बन जाए। लेकिन इम्पॉर्टेंट वार्निंग है यहाँ पर,

वो ये है कि बटरफ्लाई इफेक्ट का मतलब ये नहीं है कि हर छोटी चीज़ मैजिकली डेस्टिनी डिसाइड करती है। मतलब लाइफ में लक, एनवायरनमेंट, अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले तो करते हैं, लेकिन बटरफ्लाई इफेक्ट तो हमें सिर्फ इतना याद रखने को कहता है कि स्मॉल एक्शंस को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि कब किस एक्शन का क्या बड़ा इम्पैक्ट बन जाए ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो हर दिन एटलीस्ट एक पॉजिटिव एक्शन ज़रूर चूज करिए। कभी कभी ज़िंदगी बदलने के लिए एक छोटा सा डिसीजन ही आपके लिए काफ़ी होता है, और इसी को कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम यूथ एक्सप्रेस। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। हाइड्रोजन से चलने वाली इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत में ही डिजाइन की गई ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमता

0: बताओं को दर्शाती है।
1: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
0: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहेम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहेम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का बीएसएफ कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तरकन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वे कोलकाता के लिए रवाना होंगे। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। संसद का मॉनसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है। इससे पहले भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक हुर्मुस जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। महानिदेशालय ने यह सलाह खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी की है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

के हेलो फरमाइश कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी मधु कुमार। 1:15 पर महिलाओं का अपना कार्यक्रम की लक्ष्मी होगा। शाम 5 बजे नन्हे मुन्नों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया। युवा साथी अपना कार्यक्रम युववाणी सुनेंगे रोजाना की तरह 5:15 पर। ग्रामीण भाइयों का अपना कार्यक्रम पंचायत घर शाम 6:30 बजे। इस कार्यक्रम में वार्ता के अलावा ग्रामीण भाई आनंद ले सकेंगे मोहनलाल यादव और साथियों के गाए लोकगीतों का। सात 7:31 पर संस्कृत वार्ता प्रसारित की जाएगी, जिसमें आज भास्कर मिश्र की वार्ता श्री जगन्नाथ लोक यात्रा। 7:45 बजे सुगम संगीत कार्यक्रम होगा, जिसमें गीत और भजन सुनवाए जाएंगे। कलाकार होंगी दीपयंती। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का समय होगा 8:00 बजे। रात 8:30 बजे अक्षयवट कार्यक्रम, जिसमें आज आशुतोष सुंदरम की कहानी रिटायरमेंट। और 9:30 बजे सुनिएगा नाटक सदा नीरा, आलेख अंशु मालवीय का।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ। एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
2: नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जे विक्रम सिंह, पीडियाट्रिशियन, जे विक्रम हॉस्पिटल बांदा से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव साझा करेंगे। डॉक्टर, यदि बच्चे की साधारण सर्दी का समय पर ध्यान न रखा जाए, क्या जटिलताएं हो सकती हैं?
3: संक्रमण कान तक फैल सकता है, जिससे कान में दर्द या कान का संक्रमण हो सकता है। यह साइनस तक भी पहुँच सकता है, इससे चेहरे में दर्द या नाक में गाढ़ा स्राव आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खांसी बढ़कर छाती को प्रभावित कर सकती है और ब्रोंकाइटिस या सांस लेने में तकलीफ का कारण बन सकती है। जिन बच्चों को एलर्जी या अस्थमा की समस्या होती है, उनमें घरघराहट या अस्थमा के लक्षण बढ़ सकते हैं। इसके अलावा लगातार बुखार, कम खाना पीना या शरीर में पानी की कमी बच्चे को अधिक कमजोर बना सकती है और उसके ठीक होने में देरी हो सकती है। इसलिए भले ही सर्दी सामान्य लगे, लेकिन समय पर देखभाल, बच्चे की स्थिति पर नजर और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेना बहुत महत्वपूर्ण है।
2: यह संदेश

0: फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी किया गया है।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित अनोखे लाल का तीन ताल में तबला वादन।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित अनोखेलाल का तीन ताल में तबला वादन। अब आज का यह कार्यक्रम समाप्त तो होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गानों का प्रोग्राम हेलो फरमाइश। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं मधु कुमार।
1: हेलो फरमाइश कार्यक्रम। हेलो, अपना नाम बताइए।
2: मैं जबलपुर MP से आपका स्टूडियो श्रोता अशोक से बात कर रहा हूँ। मैडम
1: जी, अशोक जी बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
2: मैं भी ठीक हूँ, बस बात हो रही है और अच्छे हो गए हैं
1: जी।

0: इस समय आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। हेलो, अपना नाम बताइए।
1: नमस्कार, मेरा नाम धीरज जब्बल है। मैं गांव डेयर स्टेशन जिला पाटन गुजरात से बात कर रहा हूँ। आप कैसी हो?
0: जी बिल्कुल, धीरज जी ने देखिए गुजरात से हमारे इस कार्यक्रम में फोन किया है। बहुत अच्छा लगता है जब इतनी दूर से हमारे इस कार्यक्रम के लिए फोन आता है। तो धीरज जी, क्या फरमाइश है आपकी?
1: गाना सुनना है, पंख होती तो उड़ाती है सहरा पिंता, लता मंगेशकर की आवाज में।
0: जी, बहुत ही अच्छा गाना चुना है धीरज जी ने, पुरानी फिल्म का गाना है। तो धीरज जी, आपकी इस पसंद को सुनवाने से पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपको किसी का नाम तो नहीं लेना है?
1: हमारा ग्रुप है आकाश में एकता जी, भारत भर के श्रोता जुड़े हैं, उनको अगर देखने के बाद लेना चाहता हूँ। गुणवंत खड़ू है, लोकेंद्र वर्मा जी है, गौतम राय बोले जी, तुलाराम जी है, गंगाधर सावलकर जी है, भारत के सारे जो आकाशवाणी प्रयागराज का ये कार्यक्रम लोकप्रिय कार्यक्रम है जिसको फल लगाने में बहुत यानी दिक्कत होती है। इसका प्रमाण ये है कि कार्यक्रम लोकप्रिय है। उन सभी श्रोताओं को ये गाना डेलीगेट रहेगा और आपको भी।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े और अपनी फरमाइश को सुनना चाहा। तो आइए सुनते हैं सेहरा फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: पोस्ट हटिया, तहसील हटिया, थाना हटिया, गांव मगरम, जिला प्रयागराज से प्रेमचंद यादव बोल रहे हैं। मैं
0: जी प्रेमचंद जी, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मैम फिल्म का नाम है पैडमैन
0: जी,
1: और गाने के बोल हैं मेरी हो गई हर तेरा गया तेरी हो गई।
0: तो आपको सुनवाने जा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना, लीजिए सुनिए।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश और मैं हूं मधु आपके गीतों के साथ। अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार जी।
1: मैडम मैं रमेश गुप्ता बोल रहा हूँ मैडम, रहने वाला जिला प्रयागराज गाँव रामेश, और इसमें बात कर रहे हैं मुंबई से, रहते हैं मुमरा कल्याण फाटा।
0: जी जी रमेश जी।
1: मैडम हमें हेलो।
0: हाँ जी गाना बताइए।
1: मैडम फिल्म का नाम है मोहरा, गाने बोले है टिप टिप बरसा पानी।
0: टिप टिप बरसा पानी, मोहरा का बहुत ही चर्चित गाना रहा है ये।
1: हाँ मैडम अच्छा गाना है।
0: तो आपकी पसंद का ये गाना हम सुनवाने जा रहे हैं रमेश जी, लीजिए सुनिए।

0: मैं परदेसी घर वापस आए।
1: सनी देओल के ऊपर फिल्माया हुआ ये गाना निगाहें फिल्म से, यानी नगीना पार्ट टू। अच्छा, तो चलिए आपकी इस फरमाइश को पूरा करते हुए सुनवाएं आपको गाना।
0: मैम नाम लेना चाहते?
1: हाँ जरूर लीजिए।
0: मैम पहला मैं प्रतापगढ़ से मेरी दीदी है शांत दी और सुनील है और उनकी दो बेटी हैं आशीष सागर आदि सागर और प्रतापगढ़ से है बेटी दीदी है शेखर दीदी है और हमारे छोटे भाई बहन सूरज कुमार संदीप कुमार मंदीप कुमार सुशांत कुमार छोटी बहन है पूजा और आप हैं सभी सुनने वाले श्रोता मित्र हैं हमारे बड़ी मम्मी हैं हमारे पापा हैं हमारी मम्मी हैं।
1: तो सुनिए निगाही फिल्म का ये गाना।

0: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से हेलो फरमाइश कार्यक्रम और मैं हूं मधु आपके गीतों के साथ। अपना नाम बताइए।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार जी।
1: मैम रोशनी बोल रहे हैं गाँव भूपिया मोडिया जिला प्रतापगढ़
0: जी। गाँव भूपिया प्रतापगढ़ से आई हैं रोशनी जी। तो रोशनी जी कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैम नहीं गाया फिल्म का
0: जी। गाने के बोल बताइए।
1: सावन के झूलों ने मुझको

0: अभी श्रोता सुन रहे थे अपनी फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गानों का प्रोग्राम हेलो फरमाइश। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी मधु कुमार। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।
0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 1 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरी तरह से स्वदेश में बनाई गई ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक जनसभा में उन्होंने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया।
3: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप

0: लिया है। आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
1: जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे, जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का बीएसएफ कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये दौरा भारत के इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। महानिदेशालय ने यह सलाह खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 790 अंक बढ़कर 77,977 जबकि निफ्टी 205 अंक की बढ़त के साथ 24,277 पर कारोबार कर रहा था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today flagged off India's first hydrogen-powered train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station in Haryana. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. On the occasion, the Prime Minister also dedicated to the nation as well as laid the foundation stone of national highway projects worth over 12,470 crore rupees in Haryana. Mr. Modi dedicated the 157-kilometer-long Delhi-Amritsar-Katra Expressway. The Greenfield Corridor forms part of the 667-kilometer Delhi-Amritsar-Katra Expressway. The expressway will reduce travel time between Delhi and Katra from nearly 14 hours to about 6 hours, while cutting the Delhi-Amritsar

0: पूरे देश को भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: इसके अलावा वजीर आजम आज जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से ज्यादा के रेल और सड़क के बुनियादी ढांचे के मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद भी रखेंगे। इस दौरान 20 रियासतों में 75 तजयीन और आरआई शुदा स्टेशनों का इफ्तिताह किया जाएगा, जिनमें लखनऊ का ऐशबाग जंक्शन स्टेशन भी शामिल है, जिस पर प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,570 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज शामली जिले में खिताब करते हुए कहा कि इससे कबल अफसानवी अहमियत के कैराना में नकल मकानी होती थी और तरक्याती काम ठप होते थे, लेकिन आज ये शामली एक्सप्रेसवे का संगम बन चुका है। उन्होंने कहा कि अगर यहां के नौजवान ताकत का सही इस्तेमाल किया जाए तो आने वाले वक्त में शामली एनसीआर का सबसे खुशहाल इलाका बन जाएगा।
2: ये विकास का वो मॉडल है जो डबल इंजन सरकार आपको दे रही है, और डबल इंजन सरकार आज एनडीए की डबल इंजन की दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार हो या उनके मार्गदर्शन में चलने वाली यूपी की सरकार, दोनों मिलकर के इस गति को शामली की प्रगति में बदल रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
1: वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज 3 अजला के दौरे पर हैं। वजीर आला शामली, बिजनौर और गाजियाबाद में तकरीबन 2,500 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आला तीनों अजलाओं में अवामी बहबूद की स्कीमों से फायदा उठाने वालों को भी एजाज देंगे और गाजियाबाद में साबिक वजीर राजपाल त्यागी के मुजस्मे की नकाब कुशाई करेंगे। इस दौरे के दौरान वो हुकूमत, इंतजामिया, पुलिस और मुतालका महकमों के अहदेदारों के साथ मीटिंग भी करेंगे और कांवड़ यात्रा के इनेकाद के सिलसिले में रहनुमा खतूत फराहम करेंगे। इस दौरान वजीर आला मुख्तलिफ अवामी फलाही स्कीमों को मुस्तफदीन को कबूलियतनामा, चाबियां, चेक्स और 9 तैनात आंगनवाड़ी कारकुनों को तकरीरी नामे तकसीम करेंगे। जनाब योगी कैराना में रियासती टैक्स महकमे के दफ्तर, कंडीला में वेटनरी अस्पताल, थाना भवन में सरकारी खवातीन के IIT का भी इफ्तिताह करेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को रोबोटिक्स, मसनूई जहानत, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमी कंडक्टर और दीगर उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में कौमी लीडर बनाने के लिए एक जामा एक्शन प्लान तैयार करने की हिदायत दी। कल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की एक जायजा मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि रियासत को न सिर्फ नई टेक्नोलॉजीज का सारिफ बनने पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए बल्कि तहकीक, इख्तिरात और हाईटेक मैनुफैक्चरिंग का आलमी मरकज भी बनना चाहिए। हैवानात और दूध की तरक्की के वजीर मुमलकत कृष्णा पासवान ने कल आगरा महकमे के अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग की। उन्होंने मवेशी पालने से मुतालिक मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के पेशरफ्त का जायजा लिया और अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि बकरी पालन, भेड़ पालन, मिनी नंदनी गाय स्कीम, नंदनी डेयरी स्कीम और नंद बाबा मिशन जैसी स्कीमों का फायदा ज्यादा से ज्यादा किसानों, मवेशी पालने वालों और मुआशी तौर पर कमजोर तबकात तक पहुंच सके। दुनिया भर में आज इंसाफ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसका मकसद उन तमाम लोगों को मुत्तहिद करना है जो इंसाफ की हिमायत करने, मुतासरीन के हुकूक को फरोग देने और ऐसे जराइम को रोकने में मदद करने के ख्वाह हैं जो दुनिया के अमन, सलामती और फलाह के लिए खतरा है। ये दिन 17 जुलाई 1998 को रोम के आइन को अपनाने की सालगिरह के तौर पर मनाया जाता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कल रात नीट यूजी 2026 इम्तिहान के नतायज का ऐलान कर दिया। 11,21,000 उम्मीदवारों ने इम्तिहान पास किया। एनटीए के मुताबिक 58% से ज्यादा कामयाब उम्मीदवार खवातीन थी। 21 जून को होने वाले इम्तिहान में तकरीबन 20 लाख उम्मीदवारों ने शिरकत की। रियासत के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से होने वाली बारिश और डैमों से पानी छोड़ने की वजह से कई नदियों के सतहआब में इजाफा हुआ है। बाराबंकी में दरियाए घाघरा और कुशीनगर में दरियाए गंडक खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। अयोध्या में दरियाए सरयू भी वार्निंग लेवल पर पहुंच गई है। सेंट्रल वाटर कमीशन के जूनियर इंजीनियर आकाश प्रताप ने बताया कि इंतजामिया पानी की सतह की निगरानी कर रही है और अगर जरूरी हुआ तो जरूरी कार्रवाई करेगी। गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी बारिशों के बाइस पानी की सतह बुलंद हो गई है। गुज़िश्ता पानी की सतह में तकरीबन 40 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ है और अगर बालाई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहा तो पानी की सतह में इजाफा जारी रहेगा। वार्निंग लेवल क्रॉस होते ही तमाम मुतल्लिका महकमों को पानी की सतह से आगाह कर दिया जाएगा। महकमा मौसमियात ने आज येलो अलर्ट जारी किया जिसमें रियासत के मगरबी अजला में बारिश और मशरकी इलाकों में तेज बारिश और आसमानी बिजली गिरने की पेशगोई की गई है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी

0: 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।
1: आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है डॉक्टर जे विक्रम सिंह, पीडियाट्रिशियन, जे विक्रम हॉस्पिटल बांदा से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव साझा करेंगे। डॉक्टर, यदि बच्चे की साधारण सर्दी का समय पर ध्यान न रखा जाए, क्या जटिलताएं हो सकती हैं?
2: संक्रमण कान तक फैल सकता है, जिससे कान में दर्द या कान का संक्रमण हो सकता है। यह साइनस तक भी पहुँच सकता है, जिससे चेहरे में दर्द या नाक में गाढ़ा स्राव आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खांसी बढ़कर छाती को प्रभावित कर सकती है और ब्रोंकाइटिस या सांस लेने में तकलीफ का कारण बन सकती है। जिन बच्चों को एलर्जी या अस्थमा की समस्या होती है, उनमें घरघराहट या अस्थमा के लक्षण बढ़ सकते हैं। इसके अलावा लगातार बुखार, कम खाना पीना या शरीर में पानी की कमी बच्चे को अधिक कमजोर बना सकती है और उसके ठीक होने में देरी हो सकती है। इसलिए भले ही सर्दी सामान्य लगे, लेकिन समय पर देखभाल, बच्चे की स्थिति पर नजर और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेना बहुत महत्वपूर्ण है।
1: यह संदेश Alembic Pharmaceuticals Limited द्वारा जनहित में जारी किया गया है।

0: गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता बहनों को मेरा यानी अनीता का
1: और मंदाकिनी का
0: प्यार भरा नमस्कार। मंदाकिनी, तुम्हें और हमारे श्रोताओं को मेरा मन कह रहा है, मेरा दिल कह रहा है कि एक छोटी सी कविता सुनाऊं।
1: बिल्कुल नेकी और पूछ।
0: तो सुनो, ईश्वर तुम हो प्रकाश हमारे, ईश्वर तुम हो प्रकाश हमारे, दूर करो सब दुख के अंधियारे, सत्य प्रेम की राह दिखाओ, जीवन को सुंदर बनाओ, हर मन में विश्वास जगाओ, सबको अपना प्रेम सिखाओ, हे प्रभु इतनी कृपा बनाए रखना, हम सबको सदा सही राह दिखाए रखना।
1: क्या बात है, बिल्कुल आपने सही कहा दी। ईश्वर ही तो हैं जो हमें हर मुश्किल घड़ी में हमेशा मुसीबत से बचाते हैं, उनसे लड़ने की हिम्मत देते हैं और ताकत देते हैं। और सच में जब हमारे चारों ओर जब भी अंधेरा छाता है, कहीं ना कहीं से जाने एक ऐसे उजाले की किरण आती है जो हमारे इस अंधेरे को दूर कर जाती है और रास्ता दिखाती है।
0: जो बात शायद हम अपनों से नहीं कह पाते हैं, वो दिल की हर बात हम ईश्वर से कह पाते हैं, और कहीं ना कहीं किसी भी रूप में आकर वो हमारी हर समस्या का हल करके यूं ही चला जाता है, और हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारी वो समस्या सुलझ गई है। सच में हमें गर्व होता है कि हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसे अनेक पर्व और यात्राएं हैं। हमें केवल धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि प्रेम, सेवा, समर्पण और समानता का संदेश भी देती है। तो बहनों, ऐसी ही एक अद्भुत और विश्वविख्यात यात्रा है श्री जगन्नाथ रथ यात्रा।
1: और भगवान जब स्वयं अपने भव्य रथ पर विराजमान होकर भक्तों के बीच आते हैं, तब ऐसा लगता है मानो ईश्वर अपने भक्तों का हालचाल जानने के लिए उनके द्वार पर स्वयं पधारे हों। ये यात्रा हमें सिखाती है कि भगवान के दरबार में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा, और ना ही कोई भेदभाव, सभी को समान प्रेम और सम्मान मिलता है।
0: सही कहा तुमने मंदाकिनी। और हम सभी महिलाएं देखा जाए तो परिवार की एक आधारशिला होती है। हम सभी अपने संस्कारों, सेवा भाव और ममता से पूरे परिवार को जोड़ कर रखती हैं, और कहीं ना कहीं श्री जगन्नाथ यात्रा भी हमें यही प्रेरणा देती है कि परिवार और समाज में प्रेम, सहयोग, त्याग, करुणा और एकता का दीप सदैव जलता रहे।
1: बिल्कुल श्रोताओं, जैसा कि हम सभी को पता है कि श्री जगन्नाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर उड़ीसा के पुरी नगर में स्थित है। यहाँ पर जगन्नाथ जी अपने बड़े भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा जी के साथ विराजमान।

0: अजमान है और हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इस अवसर पर तीनों देवता अपने विशाल और सुंदर रथों में बैठकर गुडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं।
1: और इस यात्रा के लिए तीन विशाल रथ बनाए जाते हैं जिन्हें हर वर्ष नई लकड़ी से तैयार किया जाता है और भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहते हैं, बालभद्र जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं और माता सुभद्रा के रथ को दरपदलन या फिर देवदलन कहते हैं। इन रथों को लाखों श्रद्धालु रस्सियों से खींचते हैं और ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा भाव से रथ की रस्सियों को खींचने वालों पर भगवान की विशेष कृपा होती है।
0: बिल्कुल, और रथ यात्रा आरंभ होने से पहले पुरी के गजपति महाराज जी सोने की झाड़ू से रथ की सफाई करते हैं। इसे छेरा पहरा कहा जाता है। ये परंपरा बताती है कि ईश्वर के सामने कोई बड़ा या छोटा नहीं है, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है।
1: और बहनों, हम सभी महिलाओं के जीवन में अनेक जिम्मेदारियां होती हैं। घर परिवार, बच्चों का पालन पोषण, बुजुर्गों की सेवा और समाज के प्रति अपने कर्तव्य, इन सभी के बीच हम कभी कभी खुद को भूल जाते हैं। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा हमें याद दिलाती है कि सेवा तभी सार्थक होती है जब उसके साथ आत्मसम्मान, धैर्य और सकारात्मक सोच भी जुड़ी हो।
0: बिल्कुल, और श्रोताओं, भगवान के साथ माता सुभद्रा की उपस्थिति ये बताती है कि नारी केवल परिवार की सदस्य नहीं बल्कि शक्ति, संवेदना और संतुलन का प्रतीक है। परिवार में प्रेम, संस्कार और एकता का वातावरण बनाने में महिलाओं की जो भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है।
1: और श्री जगन्नाथ यात्रा हमें प्रेरित करती है कि हम आधुनिकता को अपनाएं, लेकिन अपनी संस्कृति, नैतिक मूल्य और मानवीय संवेदनाओं को कभी ना छोड़ें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आत्मनिर्भर बने, बेटियों को शिक्षित करें और समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन की भागीदारी बने। और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा की हार्दिक
0: शुभकामनाएं।
1: और मंदाकिनी, इतनी ढेर सारी चर्चा हम लोगों ने करी तो लगता है ना कि अपने इस वातावरण को, अपने इस माहौल को हम भक्तिमय बनाएं इस प्यारे से गीत के द्वारा।

0: वाकई में जैसे लग रहा है कि पूरा हमारा मन, ये हमारा पूरा माहौल एकदम संगीतमय हो गया। वाकई में बहुत सुकून मिलता है उस ईश्वर के पास बैठ के, उसके उसका ध्यान करके। सच में एक शक्ति है, एक अलग सा एहसास है उस ईश्वर को के नूर में।
1: बिल्कुल, कोई तो है जो करता है मुश्किल हमारी दूर।
0: बिल्कुल। और अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे इस कार्यक्रम में पुनः प्रसारण पर सुनाया जाएगा पहल जिंदगी में मलाल ना रखे। इस विषय पर बातचीत कर रही हैं नेहा गुप्ता और वंदना राठौर। तो आइए सुनते हैं पहल।

0: देते हैं लेकिन समय पर पूर्ण नहीं कर पाते। और जब हम समय पर पूर्ण नहीं कर पाते और उम्र के दूसरे पड़ाव पर पहुंच जाते हैं तो लगता है, जब पीछे पलट कर देखते हैं कभी तो लगता है, अरे ये हमने सोचा था और किया ही नहीं। और जब दूसरों को वो काम उस उम्र में करते देखते हैं जिस उम्र से हम गुजर चुके होते हैं, अब तो हम दूसरे पड़ाव पर हैं, तो एक मलाल सा, एक हृदय में मैं कहूँ, आँखों में कहूँ, एक अधूरापन सा लगता है कि आह काश कि कर लिया होता तो आज कहानी कुछ और होती।
1: ये पछतावे का जो एक हमारे भीतर नजर आता है, एक रंग जो होता है वो हमेशा हमारे मन में टीस बन के उभरता है। कभी कभी जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है जब हमने कहीं कुछ, हमको कुछ और करना था वो नहीं कर पाते उस समय पर, और बहुत समय बीत जाने के बाद जब हम अतीत के गलियारे में जाते हैं, खोजते हैं, तब हमको लगता है कि अरे काश हमने सच में वो चीज़ कर ली होती, वो पा ली होती। हम चाहे पाएँ या ना पाएँ वो एक अलग की बात थी, लेकिन हमने कोशिश तो की होती। तो जैसा आपने कहा कि हो सकता है कि जिंदगी की जो बनावट है उसका जो उभर कर आता है नक्शा वो अलग होता है।
0: बिल्कुल। और कई बार क्या होता है, जब हम करने की स्थिति में होते हैं, बहाना करते हैं खुद से, या हम ये कहते हैं कि अरे ये काम आ गया नहीं करेंगे, या कोई देख लेगा तो, दुनिया वाले सोच लेंगे तो, अगर आज आपने अपने बारे में नहीं सोचा, दुनिया वालों के बारे में सोचा, तो आप तब सोचेंगी जब उम्र गुजर जाती है और वही मलाल जिंदगी में रह जाता है कि अरे काश कि उस समय ये परिधान ही पहनने का मन था, पढ़ने का मन था, काश कि जब पेट ठीक था तो वो खा लिया होता, घूम लिया होता
1: जी,
0: या फिर सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ थोड़ा तो एंजॉय कर लिया होता। कुछ भी हो सकता है ना वंदना।
1: नहीं, बिल्कुल सही करें, ये तो आप उस मलाल की बात कर रही हैं जो हमारे शौक पूरा ना होने के कारण
0: कई बार होता
1: उपजता है।
0: हाँ?
1: एक मलाल वो भी होता है नेहा जी, जब हमसे कुछ ऐसी गलती हो गई होती है जिसको हम दोबारा सोचते हैं बैठकर बहुत समय बाद, तभी लगता है कि काश हम कहीं से जाकर उसको सुधार लें। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि हम अतीत को दोबारा लिख नहीं सकते हैं, वो कहानी दोहराई नहीं जा सकती है। अगर इस तरह की भावनाएं आती हैं तो हम बहुत सारे पशुपेश वाली जो स्थितियां होती हैं, तनाव की स्थिति जो होती है, दुख की जो एक स्थिति होती है, उससे गुजर रहे होते हैं, वो हमारे हृदय को बहुत पीड़ा से भर देती है और बहुत समय तक हम उस पछतावे से निकल नहीं पाते हैं।
0: लेकिन मुझे लगता है एक और बात यहाँ पर, जो आप कह रहे हैं कि वो जो पीड़ा तो हो ही रही है, वो छटपटाहट कि हमने सोचा था उसको उस तरह से नहीं जिया जिस तरह से हम जीना चाहते थे, तो ऐसे में क्या अगर थोड़ी सी भी सांसें बची हुई हैं कुछ सुधार कर सकते हैं, कुछ जो हमसे हो सकता है। कहते हैं ना कि इतनी भी देर कभी नहीं होती, अगर आप एक एक राग छेड़ दें, जिंदगी भी शायद थामने के लिए होती है कि ठीक है कुछ गलत कर दिया तो ठीक है उसको लेके मत बैठो। आपसे जब बात होती है आप कहती है ना जिंदगी है, जिंदगी की तरह देखिए।
1: देखिए जो एक चलने वाली चरैवेति का जो एक सूत्र वाक्य है नेहा जी, कि चलते चले चलिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम सीखते भी हैं इस दौरान, गलतियां करते हैं और बहुत कुछ अनुभव प्राप्त करते हैं। गलतियां करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम उस गलती को करके सुधर जाते हैं और दोबारा नहीं करते तब तो चीज़ें संभल जाती हैं, लेकिन अगर हम गलती करके दोहराते हैं उसी गलती को दोबारा, वो फिर अक्षम्य होती है, वो माफ़ी के काबिल भी नहीं होती हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा अतीत होता है, वो अतीत जहाँ बहुत सारे दुख हमने खुद से क्रिएट किए हुए हैं अपने लिए और आज हम उसी को सिर्फ सोच कर और दुखी होते जा रहे हैं, तो अतीत घूमने की बहुत अच्छी जगह है, वहाँ की सैर कीजिए, वहाँ के उन पड़ावों को याद कीजिए जो आपके जीवन में जिन्होंने सकारात्मक बदलाव किए हैं, और जो पड़ाव ऐसे रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से भर दिया है उसको छोड़ दीजिए, उस मोड़ की तरफ नज़र ही मत डालिए, उस मोड़ से मुड़ जाइए, अपनी नज़रों को हटा लीजिए और अपना जो एक जीवन वर्तमान, जो एक समय जो चल रहा है, अतीत में जो हो चुका उसको सही नहीं किया जा सकता, भविष्य किसी ने देखा नहीं क्या होने वाला है, वर्तमान हमारा अपना हमारे हाथ में है, उसको मलाल से ना भरें, वहाँ पर ऐसा कुछ करते चलें कि जहाँ पर आगे चलकर जब हम दोबारा इस अवस्था को सोचें, इस समय को देखें, तो वहां पर हमारे पास सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो, पछतावा का कोई एक रंग ना हो, मलाल कोई

0: भी दिल में ना हो।
1: बिल्कुल, जिंदगी आपको मिली है, अपनों को प्यार करिए, खुद को प्यार करिए, आसपास पड़ोसे, और वो सपना जो आप खुद के लिए बन रही हैं, वो चाहे करियर का हो, रिश्तों का हो, आपके व्यक्तित्व का हो, जितना हो सकता है बिना किसी के बातों में आए उसको पूर्ण करिए, है
0: बिल्कुल
1: ना?
0: सही कह रही। और एक चीज़ और भी मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगी नेहा जी, कि जीवन में अभी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जब तक हम सांस लेते हैं, हमारे पास अपने जीवन को बदलने सुधारने का मौका है। चीज़ें गलत होती हैं, लोग बदलते हैं, बहुत ज़्यादा पछतावे की आग में जल रहे होते हैं, तो उससे हमारे जीवन पर बड़ा ही नकारात्मक असर पड़ता है। खुद से प्यार और सम्मान करने की कोशिश करें, इसके अलावा खुद को माफ़ करें, तो इन छोटी छोटी बातों का भी ख्याल हम रख सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जिन ढूंढा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, तो इस सूत्र वाक्य को पकड़ के रखिए। छोटी छोटी खुशियां जो कहीं अगल बगल हमारे आसपास हैं, उनको तलाश कीजिए, उनको गहराई से समझिए। उन छोटी खुशियों में ही जो आपके बहुत सारे मलाल हैं, वो पछतावे का जो रंग है, वो फीका पड़ जाएगा, फेड हो जाएगा।
1: और जिंदगी चहचहाने लगेगी
0: तो चलिए आज से ही कीजिए इस बात की पहल।
1: पहल।
2: तो श्रोता भी सुन रहे थे पहल, जिसका विषय था जिंदगी में मलाल न रखें, और वाचन स्वर थे नेहा गुप्ता और वंदना राठौर के। तो श्रोताओं, ये तो थी पहल की बात। और अनीता जी, अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का वक्त हो चला है, और वक्त है अब एक म्यूजिकल ट्रैक का।
1: ब्रेक का,
2: चलिए सुनते
1: बिल्कुल।
2: हैं।

0: मंदाकिनी, पता है मैं जब से रेडियो आई हूँ ना, तो मैं तुम्हें निहार रही हूँ बार बार। तुम्हारे ऊपर से मेरी नज़र नहीं हट रही है। तुम्हारा ये जो जोड़ा है ना, मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है। मुझे भी सिखाना कि कैसे तुमने बांधा है।
1: भाई, ये जो आपने जोड़े की बात की है, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। आपको पता है मैंने इसका कितना ख्याल रखा है। अपने बालों को मैंने जो है हेल्दी रखने के लिए कितने सारे टिप्स अपनाए हैं।
0: टिप्स अपना।
1: हाँ,
0: अच्छा, तुमने जूड़ा बनाया, बहुत मेहनत। देखो मेरी लंबी सी चोटी, और कितना मुझे मेहनत लगा इसको बनाने में। मैंने सिर्फ तारीफ करी है, मतलब कि नहीं पूछा कि बहुत खूबसूरत लगता
1: बिल्कुल।
0: है, और तुमने पूरी मेहनत बता डाली।
1: मैं आपसे यही जानना चाहती थी, जो आपके लंबे बाल
0: हाँ,
1: हैं, इसके पीछे क्या राज है? वो अपने श्रोताओं से आपको साझा करना पड़ेगा भाई।
0: साझा तो मैं करूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे जूड़े को लेके, अपनी ये पोनीटेल चोटी को लेके, और ये जो मैंने उठा के बांधा है, तो आज हम अपने निखार में बात कर लें कि बालों को दे ट्रेंडी लुक, मतलब एक
1: ये
0: अलग अलग
1: रही
0: सा
1: ना,
0: लुक। हाँ, ये बात
1: हाँ
0: करते
1: ये
0: हैं।
1: बात हुई, तो चलिए फिर शुरू करिए।
0: हाँ, तो भाई बाल हम सभी महिलाओं के सौंदर्य और व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा तो होता ही है। स्वस्थ, घने और अच्छी तरह संवारे गए बाल न केवल सुंदरता को बढ़ाते हैं, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं। बदलते समय के साथ हेयर स्टाइल में भी नए ट्रेंड आते रहते हैं, लेकिन ट्रेंडी दिखने का मतलब केवल फैशन अपनाना नहीं है भाई, बल्कि अपने चेहरे, उम्र, बालों की बनावट और जीवन शैली के अनुसार सही हेयर स्टाइल चुनना भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे अगर हम बात करें लेयर कट की, तो ये हेयर स्टाइल बालों को घना और आकर्षक लुक देता है। लंबे और मध्यम बालों के लंबाई वाले

0: लो पर ये बहुत ही अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल। और अनीता जी, कुछ हेयर कट्स और भी हैं जिससे आप बिल्कुल एकदम ब्यूटीफुल लग सकती हैं, जिसे ट्रेंडी लुक जिसे आप कह सकते हैं, तो जिसमें मैं सबसे पहले बात करूंगी बॉब कट की। जो कामकाजी महिलाएं होती हैं और जो हमारे टीनेजर्स हैं, उनके बीच ये काफ़ी लोकप्रिय है, इसकी क्योंकि देखभाल जो है बहुत ही आसान है। और कुछ स्टेप कट्स होते हैं जो लंबे बालों को एक नया और स्टाइलिश लुक देने के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प माना जाता है। और आप पोनीटेल हाई बन भी बना सकती हैं, जो कि हमारे जो दैनिक जीवन, कार्यालय, कॉलेज या किसी भी आप फेस्टिवल में इस लुक को अपनाती हैं ना, तो ये बिल्कुल सादगी और सुंदरता का संतुलित तालमेल प्रस्तुत करेगा। और अगर आप चाहें तो शॉर्ट कट्स और जो कर्ल्स होते हैं उनके बीच में वेव्स आप दे दीजिए, तो ये तो बहुत ही आकर्षक बनाने वाला है आपके बालों को, ख़ास तौर पे जब आप किसी ऐसे इवेंट्स में, जैसे शादी है, पार्टी है, ऐसे किसी भी फेस्टिवल में आप जा रही हैं, तो ये स्टाइल बेहद ही अट्रैक्टिव लगने वाला है, आप बहुत ही गॉर्जियस लगने वाली हैं।
0: मैं तो सोच रही कि मैं जब कभी जाऊँगी तो बस ऐसे ही स्टाइल करूँगी, और वाकई में हम कितने सुंदर लगेंगे ना। और हम लोग सच में, हम महिलाएं सुंदर लगने के लिए बहुत कुछ करती भी हैं, और जैसे तुमने कहा बहुत मेहनत लगती है, तो भाई हम महिलाओं को ही पता है कि भाई हम सजने के लिए बहुत समय और बहुत मेहनत हमारे हमको लगता है।
1: देखो अनीता जी, एक बात यहाँ मैं और कहना चाहूँगी कि ये सब जो स्टाइल हम कर रहे हैं वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि हम मेहनत करते हैं, तो वो अगर आपके अंदर आप इंटरनल जो ग्लो होती है वो आपके चेहरे पे और बालों पे अगर आए, तो बहुत ज़्यादा भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बशर्ते आपको अपनी डाइट बहुत ही अच्छी रखनी पड़ेगी।
0: वो तो
1: जल्दी खाइए और अपने आप को हाइड्रेट रखिए, यानी आपको जो वाटर इनटेक है
0: वो खूब
1: बहुत ही अच्छा रखना पड़ेगा, खूब ज़्यादा पानी पीजिए,
0: और बालों पे आप नेचुरल ही चीज़ें अपनाइए। मतलब कुछ ऐसा ना करें कि जो आपके
1: जो
0: बाल खराब लगे।
1: हेयर ड्रायर हम यूज़ करते हैं तो उससे अक्सर जो बाल होते हैं हमारे रफ हो जाते हैं, तो बहुत ज़रूरी है तभी आप उसको यूज़ करिए, अदरवाइज इसको अवॉइड कीजिए, है ना। और कोशिश करिए, जैसे हम अक्सर अपने निखार सेगमेंट में महिलाओं को हम बहुत सारी टिप्स देते हैं कि घरेलू जो चीज़ें जैसे आंवला है, शिकाकाई है, मेहंदी है, इसको हम यूज़ करें तो कहीं ना कहीं बालों को डैमेज होने से बचाएगा।
0: बिल्कुल, मेहंदी लगाने के बाद बालों की जो शाइनिंग होती
1: है
0: कितनी खूबसूरत लगती है,
1: और जो कलर आता है
0: वो बहुत। और एक चीज़ तो तुम बताना भूल गई, मैं बता रही हूँ, जब बाल को आप छूते हो तो हाथ से कैसे ऐसे फिसल जाते हैं, कितना
1: स्मूथ हो जाते हैं।
0: देखिए अब हम लोग पिछले नहीं बहुत बातें कर लिए बालों पे, तो कुछ हम गुनगुना लें।
1: बिल्कुल।

0: मदक नहीं, वाकई में हम मतलब गाना इतना खूबसूरत कि बस मन उसी में रम गया। लेकिन भाई रम मन को अपने हटाना है और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है, तो अब हमारे प्रोग्राम में है जायका। आज हम बताने वाले हैं अपने श्रोताओं को खजूर की पिस्ता बर्फी।
1: वाह,
0: हाँ, तो सामग्री मंदाकिनी नोट कर लें, और मेरी बहनें भी जो सुन रही हैं वो हम लोगों को वो भी नोट कर लें। तो सामग्री है बीज रहित खजूर 250 ग्राम, पिस्ता 100 ग्राम, हल्का मोटा कटा हुआ बादाम 50 ग्राम, काजू, इलायची पाउडर आधा छोटा चम्मच, घी 1 से 2 बड़े चम्मच, खसखस या कटा हुआ पिस्ता सजाने के लिए। बनाने की विधि, अगर खजूर थोड़ा सख्त हो तो उन्हें 10 मिनट गुनगुने पानी में भिगो दें, फिर पानी से निकाल कर बारीक काट लें या फिर उसे मिक्सर में हल्का पीस लें। अब एक कढ़ाई में थोड़ा घी डालें और पीसे हुए खजूर को 4 से 5 मिनट धीमी आंच पर चलाते हुए पकाएं। जब वो अच्छे से मुलायम हो जाए, पैन को धीरे से छोड़ने लगे, नीचे से जब हम चलाते हैं तो नीचे से छोड़ता है, तो अब उसमें भुने हुए पिस्ता, बादाम, काजू और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें और इसे कम से कम 2 मिनट तक पकाएं। अब एक प्लेट या कुछ ऐसा बर्तन लीजिए, उसमें घी लगाकर इस मिश्रण को फैला दें और ऊपर से कटे हुए पिस्ते या फिर खसखस उसको डाल के ऊपर से चम्मच से हल्का दबा दें। अब इसे ठंडा होने के लिए आप रख दीजिए। जब ये अच्छे से सेट हो जाए तो उसको आप बर्फी के आकार का या फिर आपके मन में जो भी है, जैसे आपका मन चाह आकार है, वो आप काट लीजिए। और इसे आप अगर फ्रिज में रखते हैं तो कम से कम ये 10 से 15 दिनों तक ख़राब नहीं होता है।
1: क्या बात है
0: हाँ, और
1: अनिता
0: इसे आप
1: दीदी,
0: आराम से खा सकते
1: इतनी
0: हैं।
1: अच्छी रेसिपी आपने इतने आसान शब्दों में हमारे श्रोताओं को बताया है। उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता आज ही बर्फी जरूर ट्राई करेंगे।
0: और अब आगे हमारा है गृहलक्ष्मी टिप्स। तो भाई
1: आज क्या है भाई, आज हमारे श्रोताओं के लिए गृहलक्ष्मी में क्या खास?
0: खास तो भाई हर चीज़ होता है, लेकिन आज भी खास है। जिसको हम लोग बेकार समझ के फेंकते हैं वो भी बहुत हम लोग खास बना देते हैं। तो भाई हमारी शुरुआत, तो हम सब महिलाओं की शुरुआत होती है हमारे किचन से। तो भाई जो हमारी रसोई है उसके जैविक कचरे से हम बनाएंगे आज कंपोस्ट खाद। हमारे घर में रसोई से रोज़ सब्जियों और फलों के छिलके, चाय की पत्ती, फल, सब्जियों के बचे हुए भाग जैसे अनेक प्रकार के जैविक कचरे निकलते हैं। अक्सर हम उन्हें बेकार समझकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं, लेकिन यही कचरा पौष्टिक जैविक खाद में बदला जा सकता है और जो हमारे बगीचे, गमलों और खेतों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है।
1: बिल्कुल अनीता जी, और ये जैविक खाद मैं आपको बताऊं अन्य सभी खादों से काफ़ी बेहतर होता है। रीज़न ये है कि इसमें जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो जो हमारे पेड़ पौधों को बहुत ही उपजाऊ बनाते हैं, और जो फसल होती है ना वो बहुत ही उम्दा होती है। तो अगर हम अपने श्रोताओं से बात करें कि कंपोस्ट बनाते कैसे, तो इसके लिए जो सामग्री होती है वो कुछ इस प्रकार होती है कि जो ढक्कन वाली बाल्टी होती है प्लास्टिक की, या मिट्टी का घड़ा, ड्रम, कुछ भी आप ले सकते हैं, उसमें सूखे पत्ते और सूखी घास, अकटा हुआ गत्ता या कागज, उसकी एक लेयर आपको बिछानी होती है। रसोई का जो जैविक कचरा होता है, जैसे कि सब्जियों के छिलके,

0: फलों के छिलके, चाय की पत्ती, कॉफी का बचा हुआ भाग, या कैसे भी जैसे अंडे के छिलके, ऐसे कुछ भी आपकी जो सामग्रियां हैं आप उनको ले सकते हैं। और थोड़ी सी जो मिट्टी है या पुरानी जो कंपोस्ट आपके पास बची हो वो आपको लेनी है, और एक छोटी लकड़ी या डंडे मिश्रण को पलटने के लिए चाहिए होती है। तो आप एक लेयर, जब ये आप जो सूखी घास है, सूखे पत्ते की है, इन सबको बिछा देते हैं, हाँ, तो उसके बाद जो है आप इन सब सामग्रियों को रख के उस पर लेयरिंग करेंगे, और लेयरिंग करेंगे कैसे वो आप बताएंगी।
1: बिल्कुल। तो बनाना भी इसको बहुत आसान है। बाल्टी या ड्रम, जैसे मंदाकिनी ने बताया, तो आप बाल्टी या ड्रम ले लीजिए, उसके नीचे और किनारों पर छोटे छोटे छेद कर दीजिए ताकि हवा का जो संचार है, जो आना जाना उसका, वो बना रहे। अब सबसे नीचे सूखे पत्ते या सूखी घास की एक परत बिछाएं। ये ज़्यादा नमी, जैसे कि अतिरिक्त जो नमी होती है, वो सूखने में मदद करती है। अब रसोई का जैविक कचरा डालें इसके ऊपर, थोड़ी मिट्टी डालें, इससे सूक्ष्म जो जीव होते हैं ना, ओकर वो कचरे को जल्दी सड़ाते हैं। और फिर
0: हाँ, और फिर जो सूखे पत्तों की एक लेयर हमने डाली है, उसको ध्यान रखना है कि हर गीली परत के ऊपर एक सूखी परत जरूर डालें, क्योंकि इससे क्या है, दुर्गंध नहीं आती है। और हर 4-5 दिन में डंडी की सहायता से आप जो मिश्रण है उसको हल्का सा पलट दें ताकि हवा मिलती रहे और खाद जल्दी तैयार हो।
1: और लगभग ये 45 से 60 दिनों में कचरा गहरे भूरे या काले रंग की भुरभुरी और मिट्टी जैसी खुशबू वाली खाद में बदल जाती है, और ये अच्छी कंपोस्ट की पहचान है। और मंदाकिनी, और हम कुछ और बातें करें?
0: बिल्कुल, हम अपने श्रोताओं से ये ज़रूर कहेंगे कि जो है जिस तरीके से आप अपने कार्यक्रम को पसंद करते हैं, हमें अपनी प्रतिक्रिया भेजते हैं, उन प्रतिक्रियाओं को हम तहे दिल से स्वागत करते हैं उनको, और उनको हम देख के मतलब इतने उत्साहित होते हैं कि हमें हर समय एक कुछ क्रिएटिव करने का मन करता है।
1: बिल्कुल, हम चाहते हैं कि जो हम बोलते हैं, जो हम कहते हैं, वो आप प्रतिक्रिया के द्वारा हमारे पास भेजते हैं, तो सच में हमारा एक उत्साह बढ़ता है, हमें एक अलग से एनर्जी मिलती है
0: बिल्कुल।
1: अपने प्रोग्राम को और अच्छा और अच्छा और खूब अच्छा बनाने के लिए।
0: तो भाई, इसके लिए आपको हमारा ईमेल एड्रेस चाहिए और व्हाट्सएप नंबर चाहिए। तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए, grihlakshmibalsangh123@gmail.com, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। हिंदी में अनीता दीदी आप बताइए।
1: 800-4926-250। और अब हमारा समय हो गया है विदा लेने का, तो बहनों से कहते हैं नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: रखी। श्री मोदी ने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 667 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा का समय 14 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे हो जाएगा, जबकि दिल्ली अमृतसर की यात्रा का समय लगभग 8 घंटे से घटकर 4 घंटे हो जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हाल के वर्षों में विकास के एक नए चरण को देखा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है।
1: 2 नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है। भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज और नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल, इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहाँ के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल बनने के नए रास्ते भी बनेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जींद भाजपा और एनडीए के सुशासन मॉडल का प्रतीक बनकर उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ ने जींद को भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है।
1: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। श्री वैष्णव ने कहा कि ये उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार के व्यापक रेलवे आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि स्वदेशी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दृढ़ राष्ट्र संकल्प का परिणाम है।
2: जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ।
0: भारत में डिजाइन और एकीकृत की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। जींद सोनीपत खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ ये ट्रेन न केवल सुरक्षित है बल्कि 89 किलोमीटर के इस खंड पर तेज भी है। एक रिपोर्ट।
3: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जींद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
0: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहिम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहिम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के

0: माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है।
1: यह परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी किया गया है। महानिदेशालय का कहना है कि इन घटनाओं से संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत नाविकों और व्यापारिक जहाजों के लिए जोखिम काफी बढ़ गया है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाज के सीमा चौक स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन से मिलेंगे और प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकों का अध्यक्षता करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक विषय, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन तथा जन्म मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वह कलकत्ता के लिए रवाना होंगे। रविवार श्री शाह पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा वह कलकत्ता में राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित वर्ल्ड म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। बाद में वह अमूल बंगाल डायरी का आधारशिला रखेंगे। संदीप दासगुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने इस रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनके आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया गया है। 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना तथा संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक मंच पर प्रदर्शित करना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इन देशों की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोप क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति मुर्मू 20 जुलाई को मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वे राष्ट्रपति माया सैंडू से द्विपक्षीय वार्ता के अलावा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मुलाकात कर व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति 21 जुलाई को उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी, जहां वे राष्ट्रपति गोर्डोना सिल्जनवोस्का दावकोवा, क्रिस्टिजन मिकोस्की और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया की संसद और भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 23 जुलाई से 2 दिवसीय रोमानिया यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे राष्ट्रपति निकोसोर डैंस सहित वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ ने पाकिस्तान से कहा है कि व्यापारिक लाभ पाने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा। संघ ने कहा है कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस के अंतर्गत पाकिस्तान को व्यापार लाभ 2027 से संशोधित जीएसपी ढांचे के तहत अंतर्राष्ट्रीय

0: बद्धताओं के अनुपालन पर निर्भर करेगी। ये टिप्पणियां यूरोपीय आयोग और विदेश मामलों तथा सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई 2023-2025 अवधि की नवीनतम संयुक्त निगरानी रिपोर्ट में की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अब भी भेदभाव, व्यक्तिगत हमलों, भीड़ हिंसा और पूजा स्थलों को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पाकिस्तान की संघीय सरकार से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को अस्थायी प्रांतीय दर्जा और संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। दोनों पक्षों के समर्थन से पारित ये प्रस्ताव कल सत्र के दौरान सांसद जलाल अली शाह ने पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस से राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने संबोधन में चुनाव सुरक्षा से संबंधित खुफिया रिकॉर्ड को तत्काल सार्वजनिक करने की घोषणा की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 771 अंक बढ़कर 77,957 पर, जबकि निफ्टी 195 अंक की बढ़त के साथ 24,268 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन की विश्व नंबर 4 चेन युफेई से होगा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव पर पहुंच गई। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ ग्रैंड रोड पर अपनी औपचारिक यात्रा पूरी करते हुए श्री गुंडीचा मंदिर के निकट स्थित पवित्र स्थल शारदाबली पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में हमेशा ऐसी संगति चुननी चाहिए जो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाए और हमारी सोच को सकारात्मक बनाए। अच्छे लोग वही हैं जिनकी उपस्थिति से हमारे भीतर का श्रेष्ठ गुण प्रकट हो सकता है और जो हमें हर दिन और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले।

0: श्रोताओं के नाम। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल का।
1: शंकर प्रसाद खूंटे जी लिखते हैं, मैं दृष्टिबाधित हूं और बीएड स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा हूं। मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंकर प्रसाद खूंटे जी। और अगला संदेश हमें मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से, राजकुमार डूडी जी का।
1: गाँव खिंदासा तहसील कोरायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी।
0: और शोभा राणे जी लिखते हैं ठाणे महाराष्ट्र से।
1: गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रम्मा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद और नैतिक कुमार निषाद।
0: आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर संदेशों के लिए। तो प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। श्रोताओं एक बार फिर से हम प्रस्तुत हैं नई और रोचक जानकारियों के साथ।
1: श्रोताओं हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक उद्भव और विकास की। आज हम चर्चा करेंगे मुद्रण से आधुनिक पुस्तकों तक की यात्रा पर। श्रोताओं जिस आधुनिक पुस्तक को हम हाथ में लेकर आज पढ़ते हैं उसके पीछे लगभग 600 वर्षों का इतिहास है। हमने अब तक सुना कि मुद्रण कला के आने से पहले पुस्तकें हाथों से लिखी जाती थी। भारत में ताड़पत्र, भोजपत्र और बाद में कागज पर ग्रंथ और साहित्य लिखा जाता था।
0: जी हाँ श्रोताओं, यूरोप में चर्म पत्रों और कागज पर लिखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे मानव सभ्यता मुद्रण की ओर बढ़ने लगी। चीन में लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जा चुके थे जिन पर अक्षरों को उकेर कर और उसमें स्याही लगाकर पूरे पृष्ठ की छपाई की जाती थी।
1: ये तकनीक हस्तलिखित तकनीक से कहीं अधिक तेज और सुविधापूर्ण थी। 11वीं शताब्दी में चीन में धातुओं या लकड़ी से अलग अलग अक्षरों को बनाया जाने लगा और उनसे शब्द और वाक्य बनाए जाने लगे। ये आधुनिक मुद्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
0: जी श्रोताओं, 15वीं शताब्दी को मुद्रण की दिशा में एक मील का पत्थर माना जाता है जब जर्मनी के ग्यूटेनबर्ग ने 1450 में छापने की मशीन का आविष्कार किया।
1: जी,
0: इसके द्वारा एक ही पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां तैयार हो सकती थीं।
1: गुटेनबर्ग ने एक धातु का फार्मा बनाया जिसमें चल अक्षर थे। चल अक्षरों का अर्थ है उनके फार्मे में अक्षरों को वाक्यों के रूप में सजाया जाता था और उनमें स्याही पोतकर कागज पर छापा जाता था। छपाई के बाद उन्हीं धातु के अक्षरों को फिर से नए वाक्यों के अनुसार संयोजित कर लिया जाता था।
0: जी श्रोताओं, गुटेनबर्ग की मशीन से छपने वाली पहली पुस्तक बाइबल थी जिसे गुटेनबर्ग बाइबल कहा जाता है। यही तकनीक आधुनिक मुद्रण कला की नींव बनी।
1: इसके बाद हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता ने एक शानदार मुद्रण तकनीक को देखा। अब डिजिटल मुद्रण का युग है जिससे कुछ ही समय में हजारों लाखों पृष्ठ छापे जा सकते हैं। इसके बाद आया ई बुक का जमाना जिसमें हम रह रहे हैं। पहले पुस्तकों को रखने के लिए विशाल पुस्तकालय हुआ करते थे, लेकिन अब हजारों पुस्तकें एक छोटे से डिवाइस में ही रखी जा सकती हैं।
0: जी तो श्रोताओ, कहा जा सकता है कि मिट्टी की पुस्तकों से पेपिरस तक, भोज और ताड़ पत्रों से होते हुए चर्म पत्रों तक, वहां से गुटेनबर्ग के छापे खाने और फिर डिजिटल पुस्तकों तक की पुस्तकों की यात्रा सच में अनूठी है।
1: जी बिल्कुल, सच में अनूठी है। तो श्रोताओ, कैसी लगी आपको ये जानकारी जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से बताया गया है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किन भौगोलिक कारणों से हुई और इसे मूड़दार पर्वत श्रृंखला क्यों कहते हैं।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
3: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
2: कैसे बना हिमालय।
3: आज रिद्धि

0: नव्या
1: और रिदित
0: सब बहुत खुश है
1: क्योंकि उनका परिवार
0: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
2: चलो चलो दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा। मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
3: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
2: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
3: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे।
2: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है।
3: बहुत मजा आएगा।
1: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
0: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
1: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
0: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
1: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
0: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
2: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
1: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
2: क्या 20 करोड़ साल?
1: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे। सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
2: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
1: नव्या, अब ही थोड़ा सा धीरज तो रखो। अब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? रिदित तुम बताओ।
3: ये तो बहुत आसान है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
2: रुको, मैं बताती हूँ।
1: तुम बताओ।
2: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
1: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था और महासागर का नाम था टेथिस महासागर। क्या नाम था?
2: टेथिस महासागर।
1: वाह,
2: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
1: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
2: अलग होकर खिसकने लगे?
1: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
2: सर फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
1: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
3: लेकिन सर हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
2: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
1: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे, लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
3: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
2: सर आप तो टेथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
1: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
2: जी।
1: देखो, विशाल और शांत महासागर ये एक प्राचीन महासागर था जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
2: फिर क्या हुआ सर जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
1: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टेथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई।

0: गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
1: अच्छा।
0: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
1: सर, मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
0: हाँ बेटा, क्यों नहीं।
1: ठीक, वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
0: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
2: अब समझ आया। सर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है। इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
1: सर, एक खास बात तो हम भूल ही गए, टेथिस सागर का क्या हुआ?
0: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टेथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
1: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
2: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टाने मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टाने भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टाने समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
2: अच्छा, तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं। हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
3: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताता हूँ। तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
2: सर, मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
2: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
4: तो साथियों, अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न। पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी की दादी।
1: इस कार्यक्रम में स्वामीनाथन नामक एक बच्चे की सुंदर कहानी है, जिसमें उसके और उसकी दादी के बीच प्रेम और स्नेह के संबंध को बताते हुए संदेश दिया गया है कि बच्चों को अपने बड़ों और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम मुख्य रूप से पारिवारिक मूल्यों के महत्व पर बल देता है।
2: बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थीं। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था।
3: आजा, आजा, आजा।
2: बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला,
4: ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है।
3: अच्छा?
2: उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई।
4: तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है,
2: स्वामीनाथन बोला।
3: सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए,
2: दादी ने पूछा।
4: उसके पिता पुलिस अधिकारी

0: शिक्षक है, वो यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं।
1: अच्छा।
2: दादी काफी प्रभावित हुई।
1: उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा।
2: उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडमड करती हुई।
0: बस काफी है दादी,
2: उसने रूखे स्वर में कहा।
0: मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं?
1: सारे नंबर मिलते।

0: इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडमड करती हुई।
1: बस काफी है दादी,
0: उसने रूखे स्वर में कहा।
1: मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं?
2: सारे नंबर मिलते होंगे, है ना?
0: दादी ने पूछा।
1: अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं।
2: चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वो मेडल अब कहाँ है? मैंने वो तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियां बनवा ली, और वो भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और
1: अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती?
2: बोलो
1: दादी। जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था।
2: सच? बड़ा बहादुर लड़का है।
1: तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो?
2: अरे नहीं नहीं,
1: तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा।
0: स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की।
1: राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे।
2: अच्छा।
1: राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई?
0: उसने कहानी खत्म होने पर पूछा।
2: नहीं नहीं बेटा, सुन रही हूँ।
1: अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे?
2: 2 शेर राजम पर झपटे थे,
0: दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया।
1: मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या ऊल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती।
2: अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है।
0: दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण

0: उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ।
1: दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है।
2: मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ।
0: दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा,
1: जो भी उसे झूठा कहेगा वो उसे गोली मार देगा।
3: अच्छा।
0: दादी ने इसका समर्थन किया और हरीशचंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा।
2: तो हरीशचंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चे को इस तरह से खो दिया, लेकिन बाद में
0: दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वो भी सो गई।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वामी की दादी, और अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आपसे आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु, चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3 बजे हैं। ये सभा अब समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव तो सुबान 2.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे शुरू की घड़ी में 5 बजे हैं। हमारी आज की सायंकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी देर में नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुनेंगे नन्ही दुनिया। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया।

0: बच्चों जय हिंद।
1: कैसे हैं आप सब? अब आप बोलेंगे, दीदी एग्जाम शुरू हो गए हैं स्कूल में, तो कैसे ही हो सकते हैं? अरे भाई, जब आपके साथ आपकी दो दीदियां हो तो डर किस बात का? आपके डर को खत्म करने और आपकी मदद करने के लिए हाजिर हैं आपकी दोनों दीदियां, मैं मंदाकिनी
0: और मैं अनीता दीदी। तो बच्चों, आपको पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर के सवाल को देखकर डर किन-किन बच्चों को लगता है, सच सच बताना। भाई, सबको डर लगता है, लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। तो भाई, उन बच्चों को मैं ये कहूँगी कि जो बच्चे डरते हैं वो अपने मन से वो डर को निकालें, क्योंकि जो क्लास में कुछ भी टीचर आपसे क्वेश्चन करती है ना, तो आप डरिए नहीं, उस क्वेश्चन को सुनिए, और नहीं समझ में आ रहा फिर से पूछ पूछिए उनसे। मतलब ये कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो, लेकिन आपने सोचा अगर मैंने पूछा तो सब हंसेंगे, या मैडम क्या सोचेगी कि मैं तो सारे बच्चों को समझा चुकी हूँ, ठीक से क्वेश्चन का आंसर दे चुकी हूँ, फिर ये क्यों पूछ रहा है? तो ये मन में मत ले आओ कि मैम ने समझा दिया है, मैं नहीं पूछूंगा। तो भाई, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे, जो सवाल मन में आ रहे हैं, तो बिल्कुल पूछिए। और इसलिए अपने सवाल को मतलब मन में मत रखिए और उसको पूछिए ज़रूर। पता है बच्चों, सवाल पूछना हमारी कमजोरी नहीं होती, बल्कि सीखने की हमारी सबसे पहली वो सीढ़ी होती है।
1: और बच्चों, आपको पता है, दुनिया के हर महान वैज्ञानिक, लेखक और आविष्कारक ने अपने जीवन की शुरुआत सवाल पूछने से ही की थी। अगर वे सवाल पूछने से डर जाते, तो शायद आज दुनिया में इतने बड़े बड़े जो आविष्कार हुए हैं, कभी भी नहीं हो पाते।
0: जब आप अपनी क्लास में सवाल पूछते हैं तो केवल आप की ही नहीं, बल्कि कई दूसरे बच्चों की भी शंका दूर हो जाती है। इसलिए

0: ये मत सोचिए कि आपका सवाल छोटा है भाई। मैं तो दीदी यही कहेगी कि हर सवाल की अपनी एक अहमियत होती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मान लीजिए आपको आ रहा है और बच्चों को नहीं आ रहा है, या फिर आपको नहीं आ रहा है और बच्चों को आ रहा है, तो आप पूछिएगा। कुछ लोगों को डाउट होगा तो सबको क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, पूछना ज़रूरी है सवाल को।
1: तो बच्चों याद रखिए, जो पूछता है वो कुछ देर के लिए अज्ञानी ज़रूर कहलाता है, लेकिन जो नहीं पूछता वो हमेशा अज्ञानी रह जाता है। तो इसलिए अगली बार जब कोई बात समझ ना आए तो पूरे आत्मविश्वास से अपने शिक्षक, माता पिता या बड़े भाई बहन से ज़रूर पूछिए। वे आपकी मदद करके बहुत ही खुश होंगे और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, है ना?
0: तो बच्चों आज का हमारा ये संदेश है कि डर को नहीं, जिज्ञासा को अपना दोस्त बनाइए, सवाल पूछिए, सीखिए और आगे बढ़िए। तो दीदी,
1: हाँ,
0: हम तो बच्चों को बहुत सारा हौसला दिए हैं, बहुत सारा हिम्मत दिए हैं कि आप सवाल पूछिए, और बच्चे अब सोच रहे हैं कि दीदी ने सवाल की तो बातें करी हैं, तो क्या हम लोग दीदी बच्चों को क्या कुछ सुनाएंगे भी क्या?
1: बिल्कुल भाई, इस
0: हाँ
1: डर के माहौल से उनको हमको निकालना ही तो है, और इसलिए तो हम मौज मस्ती के साथ ज्ञान की बातें करते हैं। तो और चलिए फिर बच्चों को सुनवाते हैं प्यारा सा गीत।
0: हाँ जो बच्चे

0: अनिता दी
1: हाँ
0: तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर,
1: पीछे तीतर
0: आगे तीतर पीछे तीतर। अब आप बताइए कितने तीतर?
1: अरे भाई तीन।
0: क्या बात है।
1: ये पता है ये सवाल हम लोगों ने बचपन में सीखा था, और जिनका बचपन अभी चल रहा है तो वो तो भाई डरेंगे ही, वो बोलेंगे
0: दो
1: एक
0: आगे
1: दो तीन चार पांच, फिर कोई सोचेगा चार, तो भाई सही सवाल का जवाब तो है तीन। और सच में सवाल जवाब में कितना मजा आता है ना ये गाना सुन के, वाह।
0: और जो पहेलियाँ हुआ करती थी, जो पहले हम लोग खेला करते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमारे साथ शामिल हुआ करते थे, और अनोखे अनोखे पहेलियाँ सवाल होते थे जिसमें कितनी ढेर सारी ज्ञान की बातें हुआ करती थी, और कहीं ना कहीं इस खेल खेल में हम लोग कितना सीखा करते थे, है ना दी? तो अनीता
1: मुझे
0: दीदी
1: मुझे ना मैं तो सोच रही थी कि अच्छा बचपन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, कितनी पहेलियाँ लोग पूछते थे, हम लोग को खूब मज़ा आता था। और पता है मंदाकिनी दीदी, जब वो सवाल का आंसर नहीं मिलता था ना, क्वेश्चन का आंसर, तो बड़ी घबराहट होती थी
0: सी
1: और
0: होती
1: कहते
0: थी।
1: थे जल्दी बता दो जल्दी बता दो।
0: अच्छा अक्सर आपके होता है बचपन में लोगों के साथ हुआ होगा, सबके साथ, और हमारे आज के बच्चे भी इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि जब कोई हमारे घर में गेस्ट आता है, बहुत कुछ तो बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, बहुत अच्छे से मस्ती से बात करते हैं बच्चों के साथ, और कुछ ऐसे होते हैं कि आते हैं, हाँ मैथ्स तुम्हारा सब्जेक्ट है, चलो अब बताओ 2 की टेबल क्या है, 16 की टेबल क्या है, बच्चे नर्वस हो जाते हैं ना। ओ अगर नेक्स्ट डे फिर वो गेस्ट आया, वो बच्चे भाग जाएंगे, वो कभी उसके सामने नहीं आएंगे। तो यही तो हमने अभी चर्चा में अपनी बातें की
1: आप
0: है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मुझे एक छोटा सा वाक्य आ रहा है कि गेस्ट आते हैं तो पूछते हैं, मैं अपने बच्चों को अपने मायके लेके जाती हूँ, तो वहाँ मेरे बाबूजी जो बच्चों के नाना हैं वो पहले तो प्यार करेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर उनसे पूछेंगे चलो तुमने क्या पढ़ा, चलो पहले टेबल ही सुनाओ। तो उनको तो पहले का टेबल वो हिंदी में याद है, लेकिन वो कहेगी कोई नहीं मैं रिपीट कर लेता हूँ। तो जो बच्चा नहीं सुना पाता उसको भाई गिफ्ट नहीं मिलता, जो सुना लेता है उसको गिफ्ट मिलता है। तो मेरे बच्चे और बहन के बच्चे जो भी आते हैं तो सब लर्न करके आते हैं, खूब याद करके आते हैं,
0: कि अब जाएंगे तो हमारी क्लास लगेगी,
1: क्लास लगेगी और सुनाएंगे तो गिफ्ट मिलेगा। तो ये बड़ी
0: है?
1: अच्छी बात है।
0: तो चलिए हम लोग तो आते हैं अपने प्रोग्राम में अपने नन्हे मुन्ने से खूब ढेर सारी बातें करने, और वो भी ज्ञान की बातें। तो आओ जाने सेगमेंट है हमारा, जिसमें आज का विषय क्या है?
1: गुरुत्वाकर्षण बल। तो आज बच्चों हम जानेंगे कि क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो बच्चों क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम गेंद ऊपर से फेंकते हैं तो वो थोड़ी देर बाद वापस नीचे क्यों आ जाती है? और सोचो भाई, पेड़ से आम या सेब नीचे क्यों गिरता है और हम धरती पर आराम से कैसे चल पाते हैं? इन सभी सवालों का जवाब है हमारा ये जो बात कर रहे हैं हम आज, गुरुत्वाकर्षण बल की।
0: बिल्कुल। और बच्चों आपको पता है जो ये गुरुत्वाकर्षण बल है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और आज हम दोनों दीदियाँ उसी के बारे में आपसे चर्चा करने आए हैं, आपको थोड़ा बहुत सिखाने आए हैं। तो देखिए, जो ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है, एक ऐसी अदृश्य शक्ति होती है जो हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। हमारी पृथ्वी भी हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है, इसी कारण हम जमीन पर टिके रहते हैं और कोई भी वस्तु ऊपर उड़कर अंतरिक्ष में नहीं चली जाती। क्यों आपको पता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी की भी एक एस्केप वेलोसिटी होती है, जिसे हम पलायन वेग कहते हैं, और अगर किसी भी चीज़ को इस वेग से ज़्यादा हम फेंकेंगे तभी वो पृथ्वी के पार जाएगी। अनीता दीदी,
1: और पता है मंदाकिनी दीदी और बच्चों, मैं आपको और दीदी को भी बता रही हूँ कि कहा जाता है कि जो महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी एक सेब पेड़ से गिरा, फिर उनके मन में सवाल उठा, भाई सेब नीचे ही क्यों गिरा? इसी जिज्ञासा ने उन्हें गुरुत्वाकर्षण बल के नियम को समझने की दिशा में आगे बढ़ाया।
0: बिल्कुल अनीता दीदी। और सोचिए बच्चों, अगर गुरुत्वाकर्षण ना होता तो क्या होता? हम चलते चलते हवा में तैरने लगते, पानी नदियों में नहीं बहता, और जो ये बारिश की बूंदें हैं धरती तक पहुंचती ही नहीं, और खेलना कूदना भी हमारे नन्हे मुन्हों का मुश्किल हो जाता।

0: दी, मैं एक बात बोलूं, हम लोग जब जब आप बोले कि हम हवा में तैरते और हम कैसे खेलते कूदते, तो बच्चे सोच लिए होंगे कि अगर ये ना होता गुरुत्वाकर्षण बल तो हम खेलते एक दूसरे से लड़ जाते और मजा आता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मजा ही नहीं आता ना दीदी।
1: बिल्कुल। और
0: हाँ
1: अनीता दीदी, इसीलिए तो अगर बच्चों को जो है स्पेस में इंटरेस्ट हो, तो देखें जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो कैसे स्पेस में तैरते रहते हैं, उड़ते
0: हाँ
1: रहते हैं। इसका रीजन क्या है बच्चों? यही गुरुत्वाकर्षण बल, जो वहाँ नहीं पाया जाता, इसलिए हर चीज उड़ती रहती है, तैरती रहती है, और हम अपने पृथ्वी पर जमीन से चिपके रहते हैं क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हुए हैं।
0: तो इसलिए बच्चों, गुरुत्वाकर्षण हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमें सुरक्षित रखता है और हम और जो हमारी पृथ्वी है उस पर जीवन भी ये संभव बनाता है। और देखो ना, वो दीदी कह रही हैं बस अब बस करो, बस बातें नहीं करना, अब अगली बार आके बातें करना। तो बच्चों कोई बात नहीं, हम फिर से आएंगे अपने अगले प्रोग्राम में, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए बच्चों, जय
1: जय
0: हिंद।
1: हिंद।

0: अभी नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुन रहे थे नन्ही दुनिया, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में युवजन अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जे विक्रम सिंह, पीडियाट्रिशियन, जे विक्रम हॉस्पिटल बांदा से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव साझा करेंगे। डॉक्टर, यदि बच्चे की साधारण सर्दी का समय पर ध्यान न रखा जाए, क्या जटिलताएं हो सकती हैं?
3: संक्रमण कान तक फैल सकता है, जिससे कान में दर्द या कान का संक्रमण हो सकता है। यह साइनस तक भी पहुँच सकता है, इससे चेहरे में दर्द या नाक में गाढ़ा स्राव आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खांसी बढ़कर छाती को प्रभावित कर सकती है और ब्रोंकाइटिस या सांस लेने में तकलीफ का कारण बन सकती है। जिन बच्चों को एलर्जी या अस्थमा की समस्या होती है, उनमें घरघराहट या अस्थमा के लक्षण बढ़ सकते हैं। इसके अलावा लगातार बुखार, कम खाना पीना या शरीर में पानी की कमी बच्चे को अधिक कमजोर बना सकती है और उसके ठीक होने में देरी हो सकती है। इसलिए भले ही सर्दी सामान्य लगे, लेकिन समय पर देखभाल, बच्चे की स्थिति पर नजर और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेना बहुत महत्वपूर्ण है।
2: यह संदेश एलेंबिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी किया गया है।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: हम आंधियों के वन में किसी कारवां के थे, जाने कहाँ से आए थे, जाने कहाँ के थे। ए जाने दास्ता, तुझे आया कभी ख्याल वो लोग क्या हुए जो तेरी दास्ता के थे।
1: गुड इवनिंग प्रयागराज, मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट आरजे साक्षी, सिर्फ और सिर्फ 100.3 एफएम पर। उम्मीद है आपकी शाम बेहद खूबसूरत और पॉजिटिविटी से भरी होगी।
0: और मैं हूँ

0: आपका दोस्त आरजे सुधांशु। साक्षी, आज की सुबह की चाय के साथ जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो दिमाग में एक बात आ रही थी कि इस पूरी दुनिया को पीसफुल और फेयर बनाए रखने के लिए आखिरकार पर्दे के पीछे काम कौन कर रहा है।
1: हाँ सुधांशु, और आज का ये दिन इसी बात को समझने के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि टुडे इज 17th of July, जिसे पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस यानी इंटरनेशनल जस्टिस डे के रूप में मनाती है।
0: वाह, अक्सर हम अपने लोकल कोर्ट्स या पुलिस के बारे में तो डेली सुनते रहते हैं, लेकिन आज का ये स्पेशल सेगमेंट ग्लोबल लेवल पर मिलने वाले इंसाफ के नाम है।
1: बिल्कुल, तो अगले कुछ मिनटों में हम जानेंगे क्यों यह दिन इतना ज़रूरी है, इसके पीछे का इतिहास क्या है, और कुछ बेहद दिलचस्प फैक्ट्स एंड डेटा के बारे में भी हम बात करेंगे। सो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ।

0: वेलकम बैक डियर लिसनर्स। ये 17 जुलाई की तारीख ही क्यों चुनी गई आखिर, ये प्रश्न हो सकता है साक्षी। इसके पीछे कहानी क्या है? दरअसल 17 जुलाई 1998 को दुनिया के इतिहास में एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया गया था।
1: और दोस्तों, इस दिन दुनिया के कई देश एक साथ आए और उन्होंने रोम स्टैट्यूट को अपनाया और इसी के साथ स्थापना हुई थी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC की, जिसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड्स में है।
0: अगर हम इसके मुख्य उद्देश्यों की बात करें ना, तो यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक ICC का काम दुनिया के उन गंभीर अपराधों के खिलाफ एक्शन लेना है जिनसे पूरी इंसानियत को खतरा हो सकता है, जैसे वॉर क्राइम, जीनोसाइड यानी कि नरसंहार, और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी।
1: यानी ये कोर्ट ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी अपराधी, चाहे वो कितना भी ताकतवर लीडर क्यों ना हो, कानून की नज़रों से बच नहीं सकता। कानून से ऊपर कोई नहीं है। और अगर हम ऑफिशियल ICC डेटा के अनुसार देखें तो अब तक अंतर्राष्ट्रीय अदालत के सामने 30 से भी ज़्यादा बड़े मामले आ चुके हैं और इस कोर्ट की पहुंच दुनिया के 120 से अधिक देशों तक है जो इसके परमानेंट मेंबर्स हैं।
0: हाँ, अब ये तो बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन ग्लोबल जस्टिस सिर्फ अपराधियों को सजा देने के बारे में नहीं होती है, बल्कि पीड़ितों को न्याय दिलाना यानी विक्टिम जस्टिस इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। ICC के तहत एक ट्रस्ट फंड ऑफ विक्टिम बनाया गया है।
1: दोस्तों, UN डेटा के अकॉर्डिंग इस फंड की मदद से अब तक दुनिया भर में लाखों वॉर विक्टिम्स और उनके परिवारों को मेडिकल केयर, साइकोलॉजिकल सपोर्ट और वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा चुकी है ताकि वे अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू कर सकें।
0: इंसाफ की ये ताकत इस दिन को बेहद खास बनाती है। आज हमने जाना कि कैसे ग्लोबल लेवल का इंटरनेशनल क्राइसिस कोर्ट दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए काम कर रहा है। लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय न्याय की बात करते हैं ना, तो हमें ये भी समझना होगा कि न्याय की शुरुआत हमारे अपने समाज और हमारे अपने घर से सबसे पहले होती है।
1: और दोस्तों, ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट भी कहती है कि जिस समाज में नियम और कानून का सम्मान होता है वहाँ क्राइम रेट्स काफ़ी कम होते हैं और लोग ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। और जस्टिस का मतलब सिर्फ कोर्ट कचहरी नहीं है दोस्तों, इसका मतलब है हर इंसान को समानता का अधिकार मिलना, इक्वेलिटी, फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल।
0: बिल्कुल, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का हो, अगर हम अपने आसपास किसी के साथ अन्याय होते हुए देखते हैं और चुप रहते हैं तो ये भी तो एक प्रकार का अपराध ही हुआ। इसीलिए आज के दिन हमें खुद से एक वादा करना चाहिए कि हम हमेशा सच और न्याय का ही साथ देंगे।
1: और आज अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के मौके पर हमने इतिहास से लेकर आंकड़ों तक न्याय की इस ग्लोबल जर्नी को समझा। और दोस्तों, महान लीडर मार्टिन लूथर जूनियर किंग ने एक बार कहा था, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एनीवेयर।
0: यानी दुनिया के किसी भी कोने में होने वाला अन्याय हर जगह के न्याय के लिए खतरा है। इसलिए जागरूक बनिए, अपने राइट्स को जानिए और दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान कीजिए।

0: तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप इस गीत जो गीत हम बजा रहे हैं आज उसका आप आनंद उठा रहे होंगे। साक्षी, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कोई पर्सनालिटी ऐसी होती है जो बहुत गहरा प्रभाव डालती है ना। वो चाहे जिस भी क्षेत्र का हो, अगर उसने सही मायने में अगर काम किया है तो हमें ऐसा लगता है कि उसकी चीज़ों को पढ़ा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए, और हो सके तो हमें, जैसे कहते हैं ना, अगर हम जो अपना ज्ञान है उसको बांटते हैं, आगे शेयर करते हैं तो और बढ़ता है, है ना। तो दोस्तों इसी संदर्भ में आज हम प्रेरणा पुंज में एक बहुत खास शख्सियत को लेके आए हैं।
1: और दोस्तों हम इसके पहले बात कर रहे थे कि न्याय के बारे में, क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। तो हम आज के हमारे जो प्रेरणा पुंज हैं और हमारा जो चर्चा का विषय रहा है, हम उनको थोड़ा जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों जो न्याय है वो हमारी इंसानियत को ज़िंदा रखती है।
0: हाँ।
1: और इस संवेदनशील बातचीत के बाद जब हम बात कर रहे हैं आज के प्रेरणा पुंज के बारे में, जहां हम शब्दों और विचारों के सबसे उजले चेहरों से मुलाकात करते हैं, तो दोस्तों आज अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के मौके पर न्याय, हम बात करें तो न्याय सिर्फ अदालतों में नहीं होता, न्याय तब भी होता है जब एक कवि समाज के सबसे साधारण व्यक्ति के सुख दुख को अपनी कविता में पूरी सच्चाई के साथ जगह देता है।
0: दोस्तों जो गीत हम आपको सुनाने चल रहे हैं उसके पहले एक छोटा सा शेर है कि नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम, खामोशी से अदा हो

जुलेखा ए अजीजा, बात ये है, भला घाटे का सौदा क्यों करें हम, हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम।

0: तो दोस्तों, आज हमारे प्रेरणापुंज के कार्यक्रम में हमने एक ऐसी शख्सियत को शामिल किया है जिनका नाम लेते ही मन में एक अजीब सी सादगी, घरेलूपन और मासूमियत भर जाती है। समकालीन हिंदी साहित्य के एक ऐसे अनूठे स्तंभ जिनकी कविताएं और उपन्यास आम आदमी के जीवन में बहुत ही धीमे से और बहुत ही प्यार से छूते हैं। हम बात कर रहे हैं आदरणीय विनोद कुमार शुक्ल जी की।
1: वाह सुधांशु, और विनोद जी का नाम आते ही ऐसा लगता है जैसे घर की कोई खिड़की खुली हो और बाहर ठंडी हवा चल रही हो। उनकी कविताएं भारी भरकम नहीं होती बल्कि सीधे दिल में उतरती हैं। जैसे उनकी ये बेहद मशहूर कविता, हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था, इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया, मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ, मुझे वह नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था।
0: कितनी सुंदर और गहरी बात है ना। विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में हुआ। उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में काम भी किया, लेकिन उनका मन हमेशा शब्दों की खेती में ही रमा रहा। उनका पहला कविता संग्रह ये था, वो आदमी चला गया नरम कोट पहनकर विचार की तरह। जरा सोचिए दोस्तों, शीर्षक में ही कितना गहरा और आम जीवन का दर्शन छुपा है। उनका लेखन इतना सीधा और इतना घरेलू होता है कि ऐसा लगता है जैसे हमारे घर की रसोई की दीवारें या आंगन में टंगा हुआ कोई पुराना कुर्ता हमसे बात कर रहा हो।
1: दोस्तों, उनके उपन्यास नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे और दीवार में एक खिड़की रहती थी ने हिंदी साहित्य को देखने का नजरिया ही बदल दिया। दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए उन्हें प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार और बाद में पद्म भूषण जैसे कई बड़े सम्मानों से नवाजा गया। उनकी रचनाओं का जादू सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा। उनके बेहद मशहूर उपन्यास नौकर की कमीज पर जाने माने फिल्म मेकर मणिकौल ने एक बेहतरीन फिल्म भी बनाई थी जिसे सिनेमा की दुनिया में एक मील का पत्थर माना जाता है।
0: साथियों, विनोद जी की शैली को लोग जादुई यथार्थवाद कहते हैं, जहां हमारे आसपास की बिल्कुल साधारण सी चीज़ें भी जादुई लगने लगती हैं। आज के समकालीन दौर में भी उनकी कविताएं इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में युवाओं के बीच सबसे ज़्यादा पसंद की जाती हैं। उनकी कविताओं में प्रकृति है, प्रेम है और पर्यावरण बहुत ही मासूमियत से आता है। वो अपनी एक कविता में कहते हैं, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, पेड़ पेड़ है, चिड़िया चिड़िया है, उड़कर जब चिड़िया दूर चली जाती है तब भी तो पेड़ पेड़ रहता है, लेकिन वो पेड़ जिसपे से चिड़िया उड़ गई, उड़कर चली गई, वो थोड़ा सा कम पेड़ हो जाता है।
1: क्या बात है। और आज के इस भाग दौड़ भरे दौर में जहाँ हर किसी को जल्दी है, वहाँ विनोद जी का साहित्य हमें थोड़ी देर ठहरना सिखाता है। वे हमें सिखाते हैं कि बड़ी बड़ी खुशियाँ ढूंढने के फेर में हमें अपने आसपास की छोटी छोटी चीज़ों को और अपने अपनों के साथ को नहीं भूलना चाहिए। आज जब हमारा युवा तनाव और हताशा से घिर जाता है, तब विनोद जी की कविताएँ एक सच्चे दोस्त की तरह उसका हाथ थाम लेती हैं। वे हमें एक बेहतर संवेदनशील और न्यायप्रिय इंसान बनाना सिखाती हैं।
0: बिल्कुल साक्षी, उनका यही अंदाज तो सीधे रूह में उतर जाता है। तो दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के इस खास मौके पर क्यों ना हम भी अपने भीतर की इंसानियत से एक छोटा सा न्याय करें, जरा ठहरें, अपनों को सुने और जिंदगी को थोड़ी और तवज्जो दें।

0: वेलकम बैक दोस्तों। आइए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। और इस संवेदनशील बातचीत और प्रेरणा पुंज के इस खास पड़ाव के बाद हम आपको बता दें कि युवाणी के अगले बेहद जोशीले और आपके पसंदीदा सेगमेंट का अब टाइम हो गया है। तो आइए पूरे जोश के साथ रुख करते हैं खेल जगत की ओर।
1: दोस्तों, हम रुख करेंगे, पर आइए सुनते हैं एक छोटा सा संदेश।
2: वीडियो लाइक करने

0: के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: दोस्तों, कभी कभी हम अपने जीवन में ये सोचते हैं कि जैसे जो हमारा काम होता है उस काम को करते हुए हम बहुत अपने को गर्व फील करते हैं, और हमें करना भी चाहिए, और उसी के साथ कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारा काम बहुत बड़ा है, हम अपने काम में बहुत मेहनत करते हैं। दरअसल हम जितना मेहनत करते हैं शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी फील्ड में इतनी मेहनत करता होगा। लेकिन दोस्तों, हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति जिस भी फील्ड में होता है उस फील्ड में अपने लिए पूरा काम करता है, पूरी कोशिश करता है, वो चाहे मैदान में बात पसीना बहाने की हो, कुर्सी पे बैठ के दिमाग लगाने की हो, हाथ से लिखने की बात हो, या कुछ भी, जो भी काम आप अगर कर रहे हैं तो हर काम का अपना महत्व होता है। और हमारा जो ये खास सेगमेंट होता है खेल जगत, उस पर हम यही कोशिश करते हैं कि हम आपको वो बता सकें, उस शख्सियत से आपको मिला सकें जिनके खून से, पसीने से जो मैदान का ग्राउंड है चमकता है। उनका जब पसीना वहाँ की घास पे गिरता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई मोती चमक रही है। दोस्तों, आज के खेल जगत के केंद्र में एक ऐसा ही नाम है जिसके क्रीज पर आते ही अच्छे अच्छे गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट के हिटमैन यानी रोहित शर्मा जी की। एक ऐसा कप्तान जिसने अपनी सूझबूझ से हमें T20 वर्ल्ड कप का शहंशाह बनाया, और जिसकी बल्लेबाजी में एक अलग ही क्लास नजर आता है।
5: बिल्कुल दोस्तों, रोहित के खेल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि मैदान पर गजब का शांत स्वभाव और वो जादुई टाइमिंग।
4: बोरीवली की गलियों से निकलकर दुनिया के इकलौते ऐसे बल्लेबाज बनने तक जिसने वनडे क्रिकेट में 3-3 दोहरे शतक जड़े हैं, रोहित का यह सफर हर युवा को सिखाता है कि अगर आपके पास हुनर और सब्र है तो आप इतिहास बदल सकते हैं।
5: और आज के इस समकालीन दौर में रोहित हमारे युवाओं के लिए एक बेहतरीन लीडर की मिसाल हैं, जो खुद से पहले अपनी टीम और अपने जूनियर खिलाड़ियों को आगे रखते हैं।
4: वैसे रोहित भाई की एक और बात है जो मुझे बेहद पसंद आती है, जब वो मैदान पर होते हैं ना तो वो सिर्फ रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेलते हैं बल्कि वो निस्वार्थ भाव से टीम के लिए खेलते हैं। उनका सेल्फलेस अंदाज ही आज के हमारे युवाओं के लिए सबसे बड़ी सीख है।
5: चाहे पावर प्ले में आते ही धुआंधार शुरुआत देनी हो या जरूरत पड़ने पर टीम को संभालना हो, रोहित ने हमेशा खुद से पहले देश को आगे रखा है। उनका यह जज्बा दिखाता है कि एक सच्चा लीडर वही है जो अपनी चमक से ज्यादा अपनी टीम की जीत की परवाह करे।
4: बिल्कुल दोस्तों, हिटमैन की बात हो और उनके अवार्ड्स की अलमारी का जिक्र ना हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई बात रह गई है। दोस्तों, रोहित भाई के नाम जितने रिकॉर्ड्स हैं उतने ही बड़े बड़े सम्मान भी उनकी झोली में हैं।
5: खेल के मैदान पर उनके इसी लाजवाब योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें साल 2015 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा था, और बात सिर्फ यही नहीं रुकी दोस्तों, साल 2020 में उन्हें देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो कि तत्कालीन राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से था, उसको भी दिया गया।
4: और दोस्तों, ताज़ा और सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि इसी साल यानी जून 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोहित शर्मा को देश के बेहद प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। ये सम्मान उन्हें 2024 में T20 वर्ल्ड कप और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी अपनी कप्तानी में जिताने के ऐतिहासिक तोहफे के रूप में मिला था। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने कार्यक्रम में एक प्रश्नावली का सेगमेंट लेके आते हैं, और उस सेगमेंट में हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं और आप हमें उसका उत्तर देते हैं। तो जैसा कि अगर हम बात करें कि हमारा जो कल का प्रश्न था वो ये था कि भारत में अध्यादेश जारी करने का नियम कहाँ से लिया गया है।
5: और दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है कि भारत में

0: अध्यादेश जारी करने का नियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है।
1: तो दोस्तों, हम आज का प्रश्न क्या है उस पर बात करेंगे, पर पहले आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारा जो आज का प्रश्न है वो है कि विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला। आप हमें अपना उत्तर भेज सकते हैं हमारी मेल आईडी पर जो कि है yuvvani@gmail.com पर,
1: और आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपना फीडबैक 8004926250 पर। दोस्तों आप सिर्फ उत्तर ही मत भेजिएगा, हमारे पास ये भी भेजिएगा कि आपको आज का हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, गीत आपको कैसे लगे, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ नया लाएं, कुछ इंटरेस्टिंग लाएं, और उसको प्रस्तुत भी बहुत अच्छे से करें कि आपको वो अच्छा लगे, आप उससे सीधे सीधे कनेक्ट हो सकें।
0: बिल्कुल, और दोस्तों साथ में हम ये भी आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हमें अगर कुछ सजेस्ट करना चाहें कि आप और किस तरह के प्रोग्राम चाहते हैं तो आप हमें वो भी फीडबैक में भेज सकते हैं।
1: और अगर आप हमें भेजेंगे तो ये इससे हमें ये पता चलेगा कि चीज़ें कहाँ पे और सही की जा सकती हैं और उसको चीज़ें और उस चीज़ को और कितना वेल बनाया जा सकता है ना साक्षी?
0: बिल्कुल।
1: तो दोस्तों अब घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, टाटा बाय बाय कहने का, लेकिन चलते चलते एक बात आप हमसे लेके जाइए कि वही हिसाबे तमन्ना है अब भी आ जाओ, वही है सर वही सौदा है अब भी आ जाओ, जिसे गए हुए खुद से अब एक ज़माना हुआ वो अब भी तुम में खटकता है।

0: अभी युवजन अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रही हैं। 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप दिल्ली से प्रसारित समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधा में सुधार करना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देना है। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक की सेवा को प्राथमिकता देती है, उनके जीवन को सुगम बनाती है और उन्हें प्रगति के नए अवसर प्रदान करती है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
2: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
1: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र और 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और सेक्टर 46 के सरकारी कॉलेज में छात्रावास भवनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसाराव पेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। संसद के मानसून सत्र से पहले मंत्रियों के समूह की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राम मोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद

0: का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 965 अंक बढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारत की टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। इस समय हमारे शुरू की घड़ी में 6:05 और 15 सेकंड हुए हैं। ये समय है आपको जानकारी देने का आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। तो पहले आपको बता दें आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज रात 8 बजे आप सुनेंगे माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल की 2 दिवसीय प्रयागराज यात्रा पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में आपको सुनाएंगे मोहनलाल यादव और साथियों के स्वर में लोकगीत और डॉक्टर सुधाकर सिंह से बातचीत फलदार वृक्षों की रुपाई की वैज्ञानिक विधि। 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनाएंगे भास्कर मिश्र की वार्ता श्री जगन्नाथ लोक यात्रा। दीपयंती के स्वर में भजन सुनिएगा 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में।

8:30 पर होगा अक्षय वट कार्यक्रम। आज की प्रस्तुति होगी आशुतोष सुंदरम की कहानी रिटायरमेंट। गजलों की महफिल सजेगी कहकशां रात 9:30 पर। 10:00 आपको सुनवाएंगे अंशु मालवीय का लिखा नाटक सदा नीरा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 10:30 पर सुनेगा गौरी शंकर का क्लेरिनेट वादन। ये थे आज के शेष कार्यक्रम और अब कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर एक नज़र।

कल रात 9:30 पर सुनेगा कार्यक्रम चित्र भारती। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10 बजे होगा। ये दोनों दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृषि जगत कार्यक्रम में 6:35 पर किसान भाई सुनेंगे प्रतिमा मिश्रा से बातचीत, वर्षा ऋतु में मधुमक्खियों की देखभाल, सर्दी जुकाम का आयुर्वेदिक उपचार, डॉक्टर मोनिका अग्रवाल की ये वार्ता सुनाएंगे। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में 6:45 पर श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ आप सुनते हैं रोज सुबह 7 बजे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 7:30 पर सुनेगा संदीप चक्रवर्ती का संतूर वादन। दिन में 12:15 पर सुनाएंगे राम शंकर का ख्याल गायन। नमस्कार प्रयागराज, ये कार्यक्रम होगा 8:45 पर, जिसमें आप अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं फेसबुक पर अपने विचार भेजकर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 9:50 पर सुनाएंगे दिलशाद अहमद के स्वर में भजन। शाम 7:45 पर कलाकार होंगी दिव्या श्रीवास्तव।

लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माथुरी सुबह 10:05 पर होता है। कल कलाकार होंगे पन्नालाल यादव और साथी श्रीयुत श्रीकांत वैश्य, और दिन में 2:30 पर लोकगीतों के कलाकार होंगे कल्पनाथ और साथी, जगदीश यादव और साथी और संगमलाल यादव और साथी। शाम 5 लोकगीतों के कार्यक्रम धरती के गीत से शुरू होगी हमारी दूसरी सभा, उसमें आपको सुनवाएंगे अनीता राय के स्वर में लोकगीत। सुबह 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम हमारे संग्रहालय से, इसके अंतर्गत कल सुनवाएंगे

प्रयागराज के सुप्रसिद्ध साहित्यकार जगदीश गुप्त से श्री अजामिल की भेंट वार्ता। आपकी फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्म गीत आप तक पहुंचाएंगे। हेलो फरमाइश के साथ 12:30 पर ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम पनघट 1:15 पर होगा। बहनें सुनेंगे स्मृति गुप्ता से बातचीत, संयुक्त परिवार बनाम एकल परिवार। युववाणी में 5:15 पर स्पेशल सेगमेंट होगा शाहिद कपूर पर केंद्रित आज की शाम आपके नाम और नेल्सन मंडेला पर केंद्रित प्रेरणापुंज। पंचायत घर कार्यक्रम में 6:30 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे परिवार कल्याण की बात के अंतर्गत डॉक्टर आशुतोष से बातचीत, बारिश के मौसम में नाक कान और गले में होने वाली आम समस्याएं और उनका निदान। हिंदी वार्ता का कार्यक्रम होगा 7:31 पर सुनिएगा डॉक्टर बसंत कुमार त्रिपाठी की वार्ता जन कवि नागार्जुन की रचनाओं में सामाजिक चेतना और सबरस कार्यक्रम होगा 8:30 पर। ये थी जानकारी आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम पंचायत घर।

0: पंचो राम राम।
1: कहो सुमिरन भैया, का हाल चाल बाहू?
0: देखो सुमिरन भैया, हाल चाल तो ठीक बाटे।
1: हाँ।
0: और हम सभी भैया देखा, जैसे बारिश होत बाटे।
1: हाँ हाँ।
0: और जैसे जैसे भैया पानी भरात बाटे खेतवा में, वैसे वैसे भाई जोन रोपाई के काम बा ना,
1: हाँ।
0: वो भैया होत बाटे। और साथ ही साथ भैया जोन सब्जियन के खेती हम सभी की है,
1: हाँ।
0: भाई महू में ध्यान दे के पड़ी कि भाई पानी कतौ ना भरे। और जैसे जैसे बारिश होए, अगर बारिश ना ही होत बाटे तो उमन सिंचाई की जरूरत जैसे पड़े उमन वैसे सिंचाई होए।
1: अब ये हो देखा सुमरन भैया,
0: हाँ भैया,
1: खेती किसानी में देखा साग सब्जियन के खेती तो अब किसान भैया बहनी हरिन करते बा। मुला देखा तरह तरह के घास फूस भी जाम आवत ही
0: एकदम भैया एकदम,
1: तो घास फूस के निकासी भी करत रहे। और साथ ही साथ भैया देखा जौन धान के रोपाई में ई टेम जौन है हमार किसान भैया बहनी हरिन अपन लाग लपटियान हमें, और ई लागत बा कि कितना जल्दी से अपन धान के रोपाई हो जाए। और साथ ही साथ अब दैव राजा ई टेम तो जौने घटा घेरिन बा, बूंदा बांदी करते बा, तो किसान भैया बहनी हरिन जोहत है कि दैव राजा कितना घन घनाए के बारिश हो, अब अपन जौन है धान के रोपाई अब जोरदारी के साथ
0: एकदम जोरदारी के साथ हो। और एक चीज और बा ना सूर्यमन भैया,
1: हाँ हाँ।
0: कि मान लें कि भाई बारिश ऐसा चीज बाटे कि ए पर केहू को बस नहीं बा,
1: हाँ हाँ।
0: मान लें 10 दिन लेट हो गया या 5 दिन और बाद में हो, पहले
1: हाँ।
0: हो जाए, तो भाई आपन व्यवस्था किए रहें।
1: हाँ।
0: भाई अगर बेहन तैयार बा तो ओकर रोपाई भले पानी भर के करे के पड़े आपके,
1: हाँ।
0: मगर ओकर कह दें, कहे कि अम्मन अगर देर करही तो फिर भाई आपका जोन धान का फसल हो आपके देर में मिले, जब आपके देर में मिले तो भाई अच्छा मूल्य न मिले। बारिश जरूरी बाटे भाई, सिंचाई जरूरी बाटे, पर ओकरे अलावा आपका सही समय पर रोपाई भी जरूरी बाटे। और रोपाई सही समय पे करही तो भाई सही समय पे फसल तैयार होए,
1: हाँ।
0: और सही ओकर दाम मिले।
1: और सुमरन भैया हो, हम तो यह देखा जेने के जौने किसान भैया बहनिन के आपन सुविधा बा, समर सेवल बा, और जगह जगह भैया जहाँ नदी नहर पोखर जौन बा चलत बा व्यवस्था बा, तो वहाँ तो किसान भैया बहनी हरे ना अपन देखा बहुत से किसान ऐसे कि पहले जौन है अपन धान की रोपाई कई दिले। और जहाँ पर सुविधा बा वहाँ पर किसान भैया बहनी ना अपन जो नर्सरी का जिस जस अपन बढ़वार बा वैसे कर रहे हैं। और साथ ही साथ जौन किसान भैया बहनी हैं बहुत से जहाँ की सिंचाई पताई की व्यवस्था दूर बा, तो ऐसे जगह पर भगवान का जोहत है कि कितना जल्दी दैव राजा बारिश करें तो अपन धान के रोपाई।
0: एकदम एकदम सुरमन भैया। और साथ ही साथ जोन अन्य फसल बाटिन,
1: हाँ।
0: भाई मक्का बा, आपके ज्वार बा, बाजरा बा, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, जोनो तरह का भाई धान के अलावा भी भाई फसल खेती किसानी होता,
1: हाँ।
0: भाई उन्हों का अगर भाई लगावे के भाई अगर हो गवा समय हो गवा बाटे उहू के लगाए लें सही समय पे, कहे कि एकर एकरो जो समय होता ना,
1: हाँ।
0: एकरो वही धान के साथ ही साथ यू चला था फसल, और एकर भी कटाई भैया अक्टूबर में होता।

0: तो भाई अगर एहू समय पे लगाई नहीं तो भाई एहू से फायदा ले सकत हैं। अब जो बात बत कही होत रही कि भाई सब्जियन का खेती किए हैं किसान भाई, अब
1: हाँ
0: सब्जियन में सबसे जरूरी चीज ये बात बाटे कि भाई सिंचाई कब कैसे किया जाए और
1: हाँ
0: साथे साथे आपका खाद पानी खाद कब दिया जाए।
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: पानी के जोन बात बताई देव राजा बरसत हैं तो ठीक बाटे ही, अब
1: हाँ
0: मान ले बीच में ना ही बरसत हैं तो भाई वो समय सिंचाई कई दें,
1: कही
0: नमी जरूरत नमी की जरूरत होता। और एक चीज और बाटे, सब्जियन
1: हाँ
0: के खेती में जल निकासी के उचित व्यवस्था होने के चाहिए।
1: हाँ
0: अगर जल उनमन पानी उमन अगर भर जाए तो भाई तना में उनके पौधन में सड़न आई जाता और पौधन का अच्छा विकास नहीं होता।
1: कही जा
0: दूसर चीज ये बात बाटे कि जोन बात भाई कि भाई खाद कब दीन जाए, अब भाई
1: हाँ
0: अगर बारिश बरसत बात ही तो भाई सीधी बात बाटे कि अगर पानी बरसत बाटे तो उस समय खाद ना देबा, अगर
1: हाँ
0: देत है तो हल्का छिड़काव करा इकट्ठा ही दई देबा तो भाई पानी के साथ उब बही जाए।
1: कही जा
0: अगर खाद और दे के बाटे सही समय तो वो बात बाटे कि हल्की निराई गुड़ाई कर ले जोन खरपतवार बाटेन
1: हाँ
0: ओका हटाई के तब खाद देबा तब पानी देबा तो ज्यादा सूखे ज्यादा उमन अच्छे से विकास होए। तो
1: हाँ
0: ई जो दो तीन चीज बाटे किसान भाई अगर ध्यान में रखी, और हम तो समझी था कि भाई जोन विकासशील भैया आ रहे हैं नहीं तो अपने खेती किसानी में करत हुई हैं।
1: अब ये हो सुमन भैया, देखा खेती किसानी में कोनो किसान भैया बहनी ऐसे नहीं बा कि जो सोचत न हो कि अपन खेती किसानी में कोनो तरह नुकसान होए। साथे साथ अपन खूब मनोवेग से लाग बा, और साथे साथ यही कि जो निराई गुड़ाई वाली बात बताया, ये टेम घास पतवार बहुत उगावत है,
0: उगावत हैं।
1: तो ऐसे किसान भैया बहनी यानी सजग रहें, और साथे साथ साग सब्जियन में तरह तरह के कीट पतंगा रोगों लाग जाते हैं। यह होते कि पत्ती खाए गए, पत्ती का जो है सिकुड़न हो गए, तो ऐसे दशा में अपन जो है विशेषज्ञ कृषि के विशेषज्ञ भैया बहनी हरिन हैं, जो अपन ब्लॉक स्तर पर हैं, तो ऐसे जगह जौन है जाए के अपन जानकारी लें, और लय के साथ साथ अपन दवा दर्पण का छिड़काव करी
0: एकदम
1: हैं,
0: भैया
1: तो हम
0: एकदम
1: समझे थे कि अपन साग सब्जी खेती बढ़िया रही।
0: एकदम सुरेमन भैया। और जोनी बात कहा ना
1: हाँ
0: जानकारी लेके कौनो
1: हाँ हाँ
0: भी काम किया जाए अगर
1: हाँ
0: सही जानकारी आपके पास बाटे
1: कहेगा
0: तो भाई ओकर आप सही तरीके से फायदा उठा सकते हैं।
1: हाँ
0: एक तो बात भाई खेती किसानी में ही ले नहीं
1: हाँ हाँ
0: कि भाई सरकार भी तरह तरह के आपके लिए भाई योजना लेके आवत है कि
1: हाँ
0: भाई किसान भाइयन के ज्यादा से ज्यादा उमन फायदा मिल सके। तो किस भाई सरकार द्वारा जोन योजना आवत हैं भाई
1: हाँ
0: ओकर सही जानकारी आपके मिले के चाहे। और
1: कहेगा
0: वहीं में एक चीज बा भाई कृषक पंजीकरण।
1: हाँ
0: अब
1: हो
0: जो इन
1: सुमिरन
0: कृषक
1: भैया
0: पंजीकरण का मतलब ये भाई कि भाई जोन एकीकृत योजना होता कि
1: हाँ
0: भाई एकीकृत जोन पोर्टल बाटे,
1: हाँ हाँ
0: पोर्टल में हर किसान भाई का एक तरह से पंजीकरण हो जाता। अब
1: हाँ
0: उमन जरूरी ये चीज बाटे कि आपके पास आधार होए के चाहे,
1: हाँ
0: आपके पास बैंक अकाउंट होए के चाहे, जोन खसरा खतौनी आपके पास बाटे
1: हाँ
0: वो आपका कागज होए के चाहे, ज्यादा एमन समय नहीं लगता है
1: हाँ
0: सुरेमन भैया। अगर ये सब चीज बाटे ये आपके पास तो आप घरे बैठे
1: हाँ
0: घरे बैठ के मन पंजीकरण कर सकते हैं। अब
1: हाँ
0: फायदा का हो एकर फायदा ई हो कि जौनों भी योजना आई रही हैं
1: हाँ हाँ
0: चाहे वो किसान भाई सम्मान निधि योजना होए, चाहे
1: हाँ
0: वो न्यूनतम समर्थन मूल्य होए, या जोन उर्वरक पर कृषि यंत्र पर हमारी पचन के जोन सब्सिडी मिलत
1: जो
0: है
1: सुविधा
0: जोन
1: मिलत बा
0: सुविधा मिलत है वो जितनी भी योजना बाटिन भैया ओकर आपका सीधा लाभ मिले।
1: हाँ
0: और जोन लाभ आप तक पहुँचे के बाटे
1: हाँ
0: वो
1: हाँ
0: आप ही तक पहुँचे और सही ढंग से आपके मिले। कई बार होता ना कि भैया हम सब जब जाए थे तो कहे थे नहीं आप इसका पात्र नहीं हैं,
1: हाँ हाँ
0: आपका ई जो है का नाम बा कागज नहीं बा,
1: हाँ
0: आपका
1: हाँ
0: खतौनी नहीं लगी बाटे,
1: हाँ
0: आपका
1: हाँ
0: आधार नहीं बाटे। ई
1: हाँ
0: जो समस्या होता ना भाई एक बार आप पंजीकरण अगर कर दी
1: हाँ हाँ
0: उमन सब आप सबका आप कुछ लग जाए,
1: कहेगा
0: आपके एक किसान पंजीकरण के साथ आपके एक नंबर मिल जाए, वो
1: हाँ
0: नंबर के साथ आप जब जाइए तो कोनो भी सरकारी योजना का लाभ आप
1: हाँ
0: आसानी से उठाई सकते हैं।
1: ये तो बहुत नीक बात बताया हो सुमिरन भैया। हम कहे देखा कि जो उन किसान भैया वहीं हरें, जो उन कृषक पंजीकरण न करवाए हों अपन खेती किसानी के, हाँ तो किसान भैया बहनी अरे सजग होई के अपन कृषक पंजीकरण जरूर करावें, ताकि जौन सरकारी योजना बा सरकारी तहत के जैसे का जैसे कि खाद है, बीज है, दवा है, दर्पण है, सब तरह की जौन सुविधा मिलत बा, किसान भैया बहनी अरे भरपूर लाभ लें और कृषक पंजीकरण करावें।
0: बिल्कुल सुरेमन भैया। दूसर चीज ये बात बाटे कि जैसे तकनीक का जमाना बाटे
1: हाँ
0: भाई, मोबाइल बाटे इंटरनेट बाटे हर चीज को सुविधा बाटे,
1: कहेगा
0: और सरकारों चाहत है कि भाई आपके वो व्यवस्था से जोड़ा जाए किसी तरीके से।
1: हाँ
0: अगर आप व्यवस्था से जुड़ ही मोबाइल जोन बाटे अगर वो सर लिंक हो जाए आपका आधार और साथ ही साथ जोन पोर्टल बाटे कृषि पंजीकरण जोन बात होत बाटे
1: हाँ
0: उसे आपका खसरा खतौनी का हो जाए, जैसे फार्मर एक रजिस्ट्री आवत बाटे कि फार्मर
1: हाँ
0: रजिस्ट्री के

0: मतलब कि जो आपका खसरा खतौनी में जो ना आपके जमीन चढ़ी बा
1: हाँ
0: वो
1: हाँ
0: आपका एक तरह से लिंक हो जाए मोबाइल से और आधार से।
1: हाँ
0: तो ओमन भैया जोन फर्जीवाड़ा होता रहा ना कि केहू का नाम केहू पर चढ़ जाए, केहू केहू के नाम रजिस्ट्री कराई ले,
1: हाँ हाँ
0: वो सब चीज ना होए।
1: हाँ
0: ज्यादा से ज्यादा जब डिजिटलीकरण होए, ज्यादा से ज्यादा जब दस्तावेज डिजिटल पे जाए, तब
1: कहीं
0: भाई ओकर फायदा कतौ न कतौ हमें किसान भैया हरन के मिले।
1: अब मिले का चाहिए भैया सुमिरन, काहे के देखा जैसे जैसे हम किसान भैया बहनी हरियन सजग हो, तरह तरह के लड़ाई है, दंगा है, फसाद है, आपस में देखा खेत के बंटवारा लेके तरह तरह के समस्या आवत है। तो ऐसे दशा में अगर भरपूर किसान भैया बहनी हैं अपन लाभ ले हैं तो समझे थे कि बहुत अच्छी बात बा और बहुत सजग हो जरूरी बा। और यह बात पर एक बात और हमका याद आवत है वो
0: एकदम
1: सुमिरन
0: एकदम
1: भैया,
0: बताऊं।
1: वो ये बा कि देखा आज देश दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनावा जा रहा है।
0: अच्छा
1: और देखा जैसे खेती किसानियों में भैया देखा तरह तरह के दंगा फसाद हुई जाता है, किसान भैया बहनी हर इनका न्याय नहीं मिलता है, कौनो भी तरह के देखा समस्या अपना देश में समाज में संसार में आवत है। तो भैया देखा आज वह याद माँ अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनावा जा रहा है।
0: बिल्कुल भैया, हर साल 17 जुलाई के भैया ना
1: हाँ
0: ई जोन दिन मनावा जाता, एकर मतलब यही बा कि लोगन के बीच में जागरूकता फैले भाई,
1: हाँ
0: एकरे बारे में भी भाई आम जनता के पता चले कि भाई अलग अलग जोन देश हैं ओमन,
1: हाँ
0: अगर अलग अलग देश में कौनो ऐसा मानवाधिकार का अगर हनन होता,
1: हाँ
0: यानी कौनो ऐसा हिंसा होता, युद्ध अपराध होता या अलग चीज होता जेमन भैया भैया लोगन के साथ अन्याय होत बाटे,
1: कहिए
0: तो ओकरे लिए भी एक व्यवस्था बनाई गई बा कि भाई वहाँ जाए के
1: हाँ
0: जे भी भैया अगर ऐसा कर रहा है, जे भी देश ऐसा कर रहा बाटे,
1: हाँ हाँ
0: ओका दंडित किया जा सके।
1: हाँ
0: मतलब कुल मिलाई के जोने का अपन समाज बाटे, अगर बड़ा समाज के रूप में देखा जाए तो विश्व एक समाज बाटे।
1: कहिए
0: अब उमन भी भैया न्याय व्यवस्था बहुत जरूरी बाटे,
1: हाँ
0: केहू का केहू के प्रति अगर अन्याय होत बाटे तो
1: हाँ
0: भाई कम से कम उनके मन में ये डर रहे कि हम
1: हाँ
0: सब अगर ऐसा करब, एक
1: हाँ
0: देश दूसरे देश के ऊपर अगर अन्याय करे,
1: हाँ
0: भाई
1: हाँ
0: छोटवार देश हैं, बड़वार देश हैं, केहू के पास ज्यादा ताकत बाटे, केहू के पास कम ताकत
1: कम बा
0: बाटे, तो भाई अगर केहू के साथ कोनो जाति कई रहा बाटे तो
1: हाँ
0: भाई ओकरो के लिए व्यवस्था बनी बा कि भाई ओकरे लिए भी न्याय होए। तो जो ई अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनावा जाता कि यही बात का एक तरह से समाज में ई संदेश जाता कि भाई कोनो अगर केहू के साथ गलत करे, ऐसे अपने खेती किसानी में भी भैया
1: हाँ हाँ
0: तमाम तरह के, जैसे आप बताएं कि कोई अगर दो लोगों के बीच में विवाद हो जाता
1: हाँ हाँ
0: खेती किसानी खेत के लेके,
1: हाँ
0: अपने मेड़ी के लेके या कोनो तरीके से,
1: कह गया
0: भाई वो विवाद सुलझावे के लिए तरह तरह के स्थान बना है,
1: हाँ
0: वहां जाए के विवाद सुलझावें, आपस में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें भाई, आपस में भाईचारा कही के रह रही,
1: हाँ
0: तब भाई भाई अपने गांव देश समाज का विकास होए, अपन गांव देश समाज भैया आगे जाए।
1: और ये हो सुमरन भैया देखा बात बत कही तो बढ़िया भाई अच्छी भाई बा।
0: अच्छी
1: और
0: भाई
1: किसान
0: बा,
1: भैया बहनी ने देखा खूब मन लगाए के सुनिन गुनिन।
0: हाँ
1: और हम
0: वह
1: तो एक कहा बात और हो
0: हम तो हर
1: कि
0: इशारा समझते ही भैया
1: हाँ
0: कि भैया
1: हाँ
0: किसान भाई के स्वागत में जो गीत गवनाई होता, बहुत देर से किसान भाई अरे ताक लगाए के
1: हाँ
0: बैठा है कि
1: हाँ
0: सुमिरन और सुमिरन
1: हाँ हाँ
0: दोनों भैया अरे आवा हैं और खाली बात बत कही बतावत हैं, कतौ कृषक पंजीकरण तो कतौ
1: हाँ
0: अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, और
1: हाँ
0: जोन हमार सबन के जोन चीज बाटे
1: हाँ
0: यानी हमार पचन को जोन गवनई सुनाई जाता,
1: कहेगा।
0: उम्मन आज देर होत बाटे।
1: और ये हो सुमिरन भैया
0: हाँ
1: अब देखा जो है गीत गौनई तो हुई और
0: हाँ
1: एक बातचीत तो सुनवा जाए
0: अच्छा
1: वही
0: अच्छा
1: बा की फलदार वृक्षों की रोपाई की जो वैज्ञानिक विधि बा डॉक्टर सुधाकर सिंह से देखा मनोज सिंह भैया की बातचीत बा
0: हाँ हाँ
1: एक का
0: हाँ
1: तो सुनवा जाए। मुल्ला भैया देखा पहले ढोल मजीरा ठनक जाए तो
0: एकदम
1: भैया मोतीलाल यादव और संघातिन के गई एक विकास गीत बा। और हम समझे थे किसान भैया बहनी इनके पहले सुनवा दिया जाए
0: सुनवाई
1: हो।
0: दे भैया सुनवाई दे।
1: हाँ हाँ तो सुने

0: यादव संघातीन के। भैया कितना नीक अपन गीत गौनई किहीन और किसान भैया बहनी हनी देखा सुने।
1: बिल्कुल भैया सुनेन। अब देखा सूर्यमन भैया जौन मौसम चलत बाटे
0: हाँ।
1: एकदम घेराई घेराई बाटेन भाई, देखा बारिश झमाझम बरसत बाटे
0: हाँ।
1: कतौ कतौ जगह भैया काफी बारिश होत बाटे
0: हाँ।
1: और कतौ हम समझी था कि 4-5 दिन में खूब बारिश होए
0: और
1: अभी।
0: सुमिरन भैया
1: हाँ
0: आप देखा ही जौन तरह की बारिश बूंदा बांदी होत बा तो किसान भैया बहनी ने देखा जौन अपन जगह जमीन में जौन खाली बा जहाँ पेड़ पौधा लगावे के अपन मन में ठाने बा
1: हाँ।
0: तो जहाँ अपन देखा गड़बड़ बा किए बा खुदाई केहन है तो ऐसे जगह में फलदार जौन पेड़ है वृक्षन के जौन रुपाई बदे
1: एकदम भैया।
0: और जौन भैया देखा तो तरीका से कौन विधि का देखा अपन इस्तेमाल करें हाँ अपन वैज्ञानिक भैया बहरी हरिन के जौन सुझाव बा उस तरीका से किसान भैया बहनी हरिन लाभ उठाऊ।
1: और भैया हम समझी था कि भाई पेड़ कर रोपाई कौनो ऐसा चीज नहीं बा कि भाई ना किया जा सके।
0: हाँ
1: भाई हम तो समझी था कि हर आदमी के भाई कुछ पेड़ लगाए ले, चाहे भाई जगह तमाम खाली पड़ी बाटे,
0: हाँ
1: मेड़ डांड बाटे, आपका दुआर बाटे, कहूँ
0: हाँ
1: अगर जगह पावाई तो भाई अगर पेड़ ऐसा लगावाई तो अच्छी बात बाटे, अगर अगर फलदार लगाई सकत हैं भाई तमाम तरह का ऐसा पेड़ बाटे जो भाई 3-4 साल में फल दे लागत हैं।
0: हाँ
1: और मन आम बा, जामुन बा आपका, और तरह के पेड़ बा, आंवला बा, इस तरह के जो पेड़ बाटे भाई छाया का छाया दे ही, पर्यावरण वाले भी अच्छा रही और साथ ही साथ भाई जोन फल मिला था।
0: हाँ हाँ
1: अब जोन हमार बाप दादा पुरानिया लगाए के गए हैं
0: कह गया
1: सुरमन भैया, वही तो हम सब खाई था।
0: और एहो सुमरन भैया
1: हाँ
0: देखा ऐसी जगह बा कि जहाँ पर देखा भरपूर जगह हो, देखा घर के जैसे अपन अगल बगल हो भैया, देखा जैसे नीम का पेड़ बर्बाद होता है तो नीम का जो है अपन पेड़ पौधा लगावे,
1: बिल्कुल
0: साथ ही साथ जो बाग बगीचा वाली जगह हो ऐसी जगह जैसे कि आम है जामुन है और भी पेड़ पौधा लगावे। मोला भैया देखा जैसे अपन खेत बा, खेत के बहुत से किसान भैया बहनी हरे देखा 4 पैसा के आमदनी बदे अपन ऐसा पेड़ लगावत है जौन पेड़ जौन है सीधा जात है, ज़्यादा उम्र देखा जौन टहनी है वो नहीं उगता है सीधे, तो ऐसे पेड़ के साथ साथ अपन जौन माटी की उर्वरा शक्ति है वह पेड़ जौन है बाहर से रुकावट करत बा तो लाभ मिलत है। तो किसान भैया बहनी अरे अपन सजग हुई के अपन जैसे अपन आवश्यकता समझाएं ऐसन पेड़ पौधन का लगावाएं
1: और
0: ताकि भैया देखा ये जौन टेम बा बरसात के
1: हाँ।
0: एके भरपूर लाभ उठाओ।
1: सुरमन भैया हम समझी था कि न केवल भैया फलदार वृक्ष से हमें पचन के लाभ मिला था,
0: हाँ
1: पर जोन जीव जंतु बाटन,
0: हाँ
1: जोन पशु प्राणी बाटन,
0: कहिए
1: जोन पक्षी बाटन भाई, बहुत ऐसा जानवर बाटन कि भाई आजकल देखते हैं हर जगह हम सब पेड़ काट ही काट, कतों कंक्रीट के सड़क बनावत है, कतों भैया खेती किसानी कई रहा है, तो जोन जंगल पहले रहा
0: हाँ हाँ
1: जहाँ उनके भैया आसानी से खाना मिल जात रहा
0: कहिए
1: वो खत्म होत बाटे,
0: हाँ
1: और वही हिसाब से भैया जानवर और पक्षी सब खत्म होत बाटन।
0: हाँ
1: तो अगर हम सब फलदार वृक्ष लगाओ तो ई तक कम से कम ई रहे कि भाई उन्हें पचन के खाना कुछ मिले,
0: हाँ
1: भाई जो जानवर जो पक्षी जो बोल नहीं सकत
0: हाँ
1: हैं
0: हाँ
1: भाई उन्हों के भाई खाना दाना पानी का आवश्यकता होता।
0: कहिएगा ये तो बहुत मन की बात बताया हो सुमरन भाई। अब देखा जैसे कि चिड़ई चिरंगुल बा भैया देखा उनका जो देखा अपन खाना पीना बनावे के कौन व्यवस्था
1: कोनो
0: बा,
1: व्यवस्था नहीं
0: हाँ
1: बाटे।
0: ऐसे दशा में जौन अपन पेड़ पौधन से फल लाग बा वह के देखा अपन खाए के गुजारा करते हैं
1: एकदम भैया।
0: तो किसान भैया बहनी हरिन हम सबसे भैया देखा यही कहब कि ये टेम अपन पेड़ पौधन लगावे के बढ़िया समय बा हाँ, तो पेड़ पौधन अपन रोपाई करे के लिए अपन तैयारी बनावे और
1: बिल्कुल
0: साथ
1: भैया।
0: ही साथ भैया देखा जौन बात बत कही वाली बात रही कि फलदार वृक्षों की रोपाई की वैज्ञानिक विधि डॉक्टर सुधाकर सिंह से मनोज सिंह भैया देखा खूब फरिया के बात बत कही कहीं नहीं हो तो हम समझित किसान भैया बहनी हरिन का सुनवाई दिहल जाए फिर आगे बात बत कही
1: सुनवाई दे
0: हो।
1: भैया
0: हाँ
1: सुनवाई दे
0: हाँ तो सुन
2: भैया। देखें आज का जो समय है, आज के समय में पारंपरिक खेती किसानी के अलावा कुछ ऐसन खेती करे, कुछ ऐसन काम करे जोने से कि 4 पैसा का नगद आमदनी होके, तबे भैया आज के समय में सही ढंग से जीवन निर्वाह हो पाई। और यह कारण है कि किसान भाई लोग खेती किसानी के अलावा कुछ बाग बागवानी भी करते हैं। बागवानी का जहाँ तक सवाल है, अगर फलदार पौधन का रोपाई किया जाए तो इसे निश्चित रूप से भैया अपन स्वास्थ्य भी सही रही और आर्थिक रूप से भी समृद्धि रही और अपने जीवन में खुशहाली आई। लेकिन ये खुशहाली तबे आ पाई जब फलदार पौधन का रोपाई कर

0: वैज्ञानिक तरीका लोग अपनावें, तो का एकर वैज्ञानिक विधि है, कौने ढंग से एकर खेती करे, कौने ढंग से एकर बाग लगावे जौने से कि अच्छी पैदावार होके अच्छा लाभ होके, यह विषय में जानकारी देवे बदे आज अपने बीच आमंत्रित हैं डॉक्टर सुधाकर सिंह भैया, विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं उद्यान का। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब हम देखें ये जानना चाहब आपसे कि जैसे आज के समय में बहुत से किसान लोग पारंपरिक खेती से हटके कुछ बाग बागवानी भी करते हैं
1: जी,
0: तो विशेष करके फलदार वृक्षन के रोपाई से ज्यादा लाभ होता है उनके, तो हम आपसे जानना चाहब कि वैज्ञानिक विधि से करे का आखिर आवश्यकता का है। पहले भी देखे कर खेती होता रहा लेकिन आज के समय लोग वैज्ञानिक विधि अपनावते हैं तो आवश्यकता का है।
1: देखिए आम या अमरूद जो भी बागवानी की फलदार वृक्ष हैं
0: जी,
1: उनका उत्पादन क्षमता प्रति इकाई क्षेत्रफल में काफी कम है तथा जितनी हमको मिलनी चाहिए पोषण के लिए उपलब्धता होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है
0: जी।
1: मात्र 85 ग्राम है जबकि मिलना चाहिए आदमी को 100 से 150 ग्राम प्रति व्यक्ति पोषण के लिए। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए क्योंकि क्षेत्रफल में हम वृद्धि नहीं कर सकते तो वैज्ञानिक विधियों का समावेश करके हम उत्पादन में वृद्धि करने के लिए वैज्ञानिक विधि का उपयोग करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया, देखा कहा जाता है ना कि धरती अपन कोनो रबड़ ना आके खींच के

0: हटके कुछ बाग बागवानी भी करत हैं
1: जी,
0: तो विशेष कह के फलदार वृक्षन के रोपाई से ज्यादा लाभ होता उनके। तो हम आपसे जानना चाहब कि वैज्ञानिक विधि से करे का आखिर आवश्यकता का है? पहले भी देखे कर खेती होता रहा लेकिन आज के समय लोग वैज्ञानिक विधि अपनावत हैं, तो आवश्यकता का है?
1: देखिए, आम या अमरूद जो भी बागवानी की फलदार वृक्ष हैं
0: जी,
1: उनका उत्पादन क्षमता प्रति इकाई क्षेत्रफल में काफी कम है तथा जितनी हमको मिलनी चाहिए पोषण के लिए उपलब्धता होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है
0: जी।
1: मात्र 85 ग्राम है जबकि मिलना चाहिए आदमी को 100 से 150 ग्राम प्रति व्यक्ति पोषण के लिए। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए क्योंकि क्षेत्रफल में हम वृद्धि नहीं कर सकते तो वैज्ञानिक विधियों का समावेश करके हम उत्पादन में वृद्धि करने के लिए वैज्ञानिक विधि का उपयोग करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया, देखा कहा जाता ना कि धरती अपन कोनो रबड़ ना आके खींच के बढ़ा दी, धरती तो जो अपने पास बा वही के जो प्रयोग करे के, तो अगर वैज्ञानिक विधि लोग अपने हैं तो उत्पादन बढ़ी और आवश्यकता का पूर्ति हो पाई। डॉक्टर साहब, सबसे जरूरी ये होता है कि बाग लगावे बदे स्थान का चयन कई कि भैया कैसन माटी होके चाहिए, कैसन जमीन, कैसन स्थान।
1: विभिन्न फल वृक्षों की अलग अलग मृदा की आवश्यकता होती है
0: जी।
1: कुछ फलदार वृक्ष हैं जिन्हें दोमट या बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, कुछ ऐसे भी फल वृक्ष हैं जिनको ऊसर या बंजर भूमि में भी लगाया जाता है। तो सबसे पहले बलुई दोमट या दोमट मिट्टी होनी चाहिए जहां जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो तथा यातायात सुगम हो, जिससे फलदार वृक्ष को बाजार में आसानी से ले जाकर के विक्रय कर सकते हैं। सुनिश्चित सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, साथ में सुरक्षा की भी दृष्टि से ऐसी जगह होनी चाहिए जिससे हम सुरक्षित रहें। तो इन सब बातों को देखते हुए मिट्टी सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका पीएच मान 7-7.5 होना चाहिए जिससे हम कोई भी फलदार वृक्ष लगाएं तो अच्छा चले।
0: अच्छा, मतलब कोनो भी फलदार वृक्ष खाती ये एक तरीके से नजरिया होके के चाहिए
1: जी जी
0: स्थान के। भैया, रेखांकन योजना के बारे में कहा जाता है तो हम आप जाना चाहब कि आपसे कि का हवे
1: रेखांकन योजना? किसी भी बाग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि जब हम किसी बाग को लगाते हैं तो सबसे पहले आवश्यकता होती है कि हर फल वृक्ष को उचित स्थान मिले, जिससे प्रकाश भी मिले, हम जो कर्षण क्रिया करें उसके लिए हमको आवश्यकता अनुसार जो है मशीनों को चला सकें
0: जी, जी।
1: तो रेखांकन पहले ही हम कर लेते हैं जहां पर हमको बाग लगाना होता है स्थान का चयन करने के बाद। जिस विधि से बाग, इसकी कई विधियां हैं, वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, पंचभुजाकार, षटभुजाकार, कंटूर विधि, लेकिन अपने यहाँ इस क्षेत्र में ज्यादातर किसान भाई आयताकार विधि का प्रयोग करें या वर्गाकार विधि का। आयताकार विधि में पौध से पौध की दूरी और कतार से कतार की दूरी भिन्न होती है, कतार की कतार से दूरी ज्यादा होती है और पौध से पौध की दूरी भिन्न, चार पौधे मिलकर के एक आयत का रूप लेते हैं। इसी तरह से वर्गाकार विधि में चारों भुजाएं समान होती है, मतलब कतार की दूरी और पौध की दूरी समान होती है, तो चार वृक्ष मिलकर के एक वर्ग का आकार लेते हैं। इस विधियों से पौध लगाने से हमको कृषि कार्य करने में आसानी होती है, साथ में सभी पौधों को पर्याप्त स्थान मिलता है, उनकी बढ़वार अच्छी होती है, उनका आकार भी अच्छा होता है।
0: अच्छा अच्छा, कहे का मतलब ये भैया कि पहले ही बाग लगाओ कि पहले जैसे स्थान का चयन कर ले तो मन एक तरीके से रेखांकित कर ले, एक तरीके से भैया देख ले, जगह निर्धारित कर दे कि कहां कितनी कितनी दूरी पर हमके पौधा लगावे के।
1: जी,
0: गड्ढा का खुदाई और भराई कब करें और कौन विधि से?
1: बहुत जरूरी है गड्ढे की खुदाई। जब फसल कट जाती है ग्रीष्म काल में अप्रैल मई के महीने में तो किसान को, या जून के महीने में, तो पहले ही गड्ढे की खुदाई करना चाहिए उचित दूरी पर। जैसे आम लगाते हैं तो 15 मीटर की दूरी पर लगाते हैं, अमरूद लगाते हैं तो 8-8 मीटर की दूरी पर लगाते हैं, तो उस अनुसार जो है रेखांकन करके गड्ढे को निश्चित कर लेते हैं और सामान्य भूमि में 2 घन फीट का गड्ढा खोदते हैं।
0: अच्छा,
1: और अप्रैल के महीने में या मई के महीने में, जून के महीने में किसान को हर हाल में गड्ढा खोद लेना चाहिए। और गड्ढे की ऊसर भूमि में अगर वृक्ष लगाना है तो वहां पर 1 घन मीटर का गड्ढा खोद करके 10 से 15 दिन गड्ढे को खुला छोड़ देते हैं।
0: अच्छा,
1: उसके बाद उसकी भराई करते हैं, अच्छी मिट्टी, सड़ी हुई गोबर की खाद बराबर मात्रा में, साथ में नीम की खली लेकर के गड्ढे को ऊंची सतह तक भर देते हैं।
0: अच्छा,
1: इस तरह से जब गड्ढे की भराई कर देते हैं तो एक वहां पौधे की जो जड़ें होती हैं उनका विकास अच्छा होता है।
0: भैया, जैसे कि गड्ढा खोद के जो माटी निकाला जाता है तो का मतलब कोनो अलग माटी उमन भरे के चाहिए कि वह
1: अलग माटी भी भर सकते हैं? अगर अच्छी खेत की मिट्टी में आप बाग लगा रहे हैं तो उसी मिट्टी को भी भर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: अगर थोड़ा ऊसर बंजर में बाग लगा रहे हैं तो उसके लिए बाहर से जो अच्छी खेत की मिट्टी उसको ले आए, उसमें पर्याप्त मात्रा में सड़ी गोबर की खाद जीवांश मिला दें, थोड़ा सा जिप्सम आता है जिसमें कैल्शियम और सल्फर की मात्रा होती है, 5-6 किलो प्रति गड्ढे में घर कर तब भराई करें
0: उसी लिए मिट्टी अगर हो
1: जी,
0: तब। भैया देखें, प्रजात का बहुत महत्व होता है तो फल का भैया उन्नत प्रजात कौन कौन से हैं और उकर लगावे का आपस में काज होने की तरीका है, दूरी कितना?
1: जैसे हमारे इस क्षेत्र में जो हमारा उपोष्ण जलवायु क्षेत्र है इसमें आम, अमरूद, आंवला, नींबू, बेर, बेल, कटहल की खेती या पपीता या केला की बाग लगाई जाती है। तो ऐसे में आम में जो बड़ी प्रजातियां हैं लंगड़ा, चौसा, उनके लिए 15x12 मीटर दूरी

0: कतार से पौध की दूरी,
1: अच्छा
0: दशहरी के लिए 12 × 10 मीटर, आपका इसी तरह से अमरूद में 8-8 मीटर की दूरी पर लगाते हैं, आंवले भी 8-8 मीटर की दूरी पर लगाते हैं
1: जी,
0: और आपका सघन बागवानी करते हैं तो 2-2 मीटर पर लगाते हैं, केला 2-2 मीटर पर, पपीता 2-2 मीटर पर लगाते हैं। साथ में जो उन्नत प्रजातियां आम की आपने कहा, तो आम की बहुत सारी उन्नत प्रजातियां हैं, लंगड़ा, चौसा, दशहरी, आम्रपाली, मल्लिका, मंजीरा, शुक्ल, जो अच्छी प्रजातियां जो अधिक उत्पादन देती हैं, जिनकी व्यावसायिक काश्त की जाती है। इतने तरह से आंवले में है नरेंद्र आंवला 6, 7, 10 और चकैया, बनारसी, ये सब आंवले की प्रजातियां हैं। अमरूद की है लखनऊ सफेदा, इलाहाबाद सफेदा, लखनऊ 49, ललित, श्वेता, पंत प्रभात, ये उन्नत प्रजातियां हैं
1: जी जी।
0: इसी तरह से आपका बेर में है उमरान, गोला, इलायची, नरमा, पिवंदी बेर
1: जी जी।
0: अनार में है गणेश, भगवा, तो जो उन्नत प्रजातियां अगर किसान भाई इनका सिलेक्शन करते हैं, चयन करते हैं, तो अपने आप उत्पादन में वृद्धि होती है
1: जी जी। मतलब प्रजात का चयन करें और साथ ही साथ प्रजात के अनुसार ही अगर दूरी रखें,
0: दूरी निश्चित करें,
1: तो इससे ज्यादा उनके लाभ हुई
0: जी जी।
1: देखिए समय का बड़ा महत्व होता है कि कोने समय में पौध लगाए चाहिए, कोने समय बागवानी करे के चाहिए, तो एक उचित समय का है?
0: बाग लगाने का सबसे उपयुक्त समय जो है अगस्त से सितंबर का महीना होता है।
1: अच्छा,
0: जो हमारे यहाँ ये पौधे लगाए जाते हैं वर्षा काल में वो जल्दी पकड़ लेते हैं। दूसरा समय होता है फरवरी मार्च का महीना, अगर पानी की सुविधा है तो फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं। विशेषकर पर्णपाती वृक्ष जिनकी पत्तियां झड़ जाती हैं, ऐसे पौधों को फरवरी मार्च में लगाना चाहिए। जो सदाबहार पौधे हैं जैसे आम, अमरूद, आंवला, इनकी जो है अगस्त से सितंबर के महीने में इनका रोपण करना चाहिए।
1: अच्छा भैया, देखिए देखभाल बहुत जरूरी होता है, खेती किसानी होके चाहे बागवानी होके, समय समय से होकर देख रेख करे के चाहिए, तो देखभाल कोने ढंग से करें? विशेष तौर पे भैया पोषण और खाद उर्वरक का व्यवस्था कितना और कब कब करें?
0: बाग लगाने के उपरांत किन्हीं मुख्य बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे है कि सिंचाई सुनिश्चित करनी चाहिए 10 से 15 दिन के अंतराल पर जाड़े में सिंचाई तथा ग्रीष्मकाल में 5 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। आज वैज्ञानिक विधियों में सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को अपनाकर जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम
1: जी
0: अगर बाग में लगाते हैं तो आपका उत्पादन और होता है, साथ में पानी की भी बचत होती है। दूसरा बिंदु है खाद एवं उर्वरक का। एक साल के वृक्ष को जब एक साल का वृक्ष लगाने के बाद हो जाता है तो उसको 100 ग्राम नेत्रजन, 50 ग्राम फास्फोरस और 75 ग्राम पोटाश की आवश्यकता पड़ती है।
1: अच्छा,
0: साथ में एक 10 किलो सड़ी गोबर की खाद। इस खाद की मात्रा को प्रतिवर्ष डबल करते जाते हैं, दूसरे साल 200 ग्राम, तीसरे साल 300 ग्राम, 10 साल के वृक्ष को पूर्ण रूप से 1 किलोग्राम नेत्रजन, 500 ग्राम फास्फोरस तथा 750 ग्राम पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। खाद को अगस्त सितंबर के महीने में या जनवरी फरवरी के महीने में गड्ढे से थोड़ा सा थाले से दूर 1 मीटर की दूरी पर नाली बना करके देना चाहिए।
1: अच्छा भैया, हम आपसे थोड़ा सा काट छाट के बारे में जानना चाहें कि कब कब करें और साथ ही साथ कीट नियंत्रण कोने ढंग से करें?
0: पौधे का आकार प्रबंधन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पौधे को ऐसे ही छोड़ दिया था तो जंगली अवस्था में हो जाते हैं। तो आकार प्रबंधन होता है कि लगाने के बाद 1 मीटर की ऊंचाई से पौधे को काट देना चाहिए और नीचे की जो शाखाएं, जो ग्राफ्टिंग किया हुआ वही शाखा चले, नीचे की शाखाएं न चलें
1: जी।
0: ऊपर जो शाखाएं 2-3 निकलती हैं उनको पुनः चयन करके पुनः कटाई करना चाहिए, जिससे द्वितीयक शाखाएं निकलें, तो एक पौधे का आकार बहुत अच्छा बन जाता है, मजबूत ढांचा बनता है तथा उसमें जो शाखाएं नहीं निकलती उस पर फलत भी ज्यादा आती है। शुरुआत के दिनों में फल वृक्षों में जड़ की सूढ़ी या दीमक या जो लीफ खाने वाले, पत्ती खाने वाले कीड़े होते हैं उनका प्रकोप ज्यादा होता है, तो किनाल फास नामक दवा आती है 2.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहना चाहिए।
1: अच्छा अच्छा, डॉक्टर सुधाकर सिंह जी, देखें आप फलदार पौधन का खेती कोने ढंग से करें, रोपाई कोने विधि से करें कि उत्पादन बढ़िया हो, के विषय में बहुत अच्छी जानकारी दें। निश्चित रूप से किसान भाई सुनी है, गुनी है और लाभ उठे हैं, आपकी जानकारी दे बदे बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देखा, बातचीत तो बहुत नीक रही हो कि फलदार वृक्षों की रोपाई की वैज्ञानिक विधि। डॉक्टर सुधाकर सिंह से मनोज सिंह की भैया देखा बातचीत, किसान भैया बहनी हरिन सुनिन, और साथ ही साथ आपन जो है फलदार वृक्षों की रोपाई का जौन भी तरीका से वैज्ञानिक विधि से बताएं, वो तरीका से अपनावें, लाभ उठावें।
3: बिल्कुल बिल्कुल, हम कई भैया बात बत कई हो, उससे पहले कुछ संदेश बा, आओ के सुन लिया जाए।
2: हाँ, सुनवा दे।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जे विक्रम सिंह, पीडियाट्रिशियन, जे विक्रम हॉस्पिटल बांदा से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव साझा करेंगे। डॉक्टर, यदि बच्चे की साधारण सर्दी का समय पर ध्यान न रखा जाए, क्या जटिलताएं हो सकती हैं?
4: संक्रमण कान तक फैल सकता है, जिससे कान में दर्द या कान का संक्रमण हो सकता है। यह साइनस तक भी पहुँच सकता है, जिससे चेहरे में दर्द या नाक में गाढ़ा स्राव आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खांसी बढ़कर छाती को प्रभावित कर सकती है और ब्रोंकाइटिस या सांस लेने में तकलीफ का कारण बन सकती है। जिन बच्चों को एलर्जी या अस्थमा की समस्या होती है, उनमें घरघराहट या अस्थमा के लक्षण बढ़ सकते हैं। इसके अलावा लगातार बुखार, कम खाना पीना या शरीर में पानी की कमी बच्चे को अधिक कमजोर बना सकती है और उसके ठीक होने में देरी हो सकती है। इसलिए भले ही सर्दी सामान्य लगे, लेकिन समय पर देखभाल, बच्चे की स्थिति पर नजर और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेना बहुत महत्वपूर्ण है।
3: यह संदेश एलेंबिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी किया गया है।
5: हाँ भैया, देखा संदेश, सुना गवा। अब देखा, जैसे भाई हमारे किसान भैया बहनी ना,
6: हाँ।
5: भाई देखा रोपाई के काम में लगा है,
6: हाँ।
5: और दिन रात भैया देखा मेहनत से जोन बाटे रोपाई, हाँ। का काम कर रहा है,
6: हाँ।
5: अब देखा हमार जोन मन रहा कि जो नी रोपाई चलत बाटी, मन एक बढ़िया सा रोपाई गीत अगर हो जात ना,
6: हाँ।
5: तो भाई जो नी काम धंधा बा, मन और मन लगत हमार पचन का।
6: जहाँ पर गीत गौनई होता,
5: हाँ।
6: मन मा गुनगुनाहट हो,
5: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ।
6: तो ऐसे भैया देखा टेम बा की रिमझिम बूंदा बांदी होत रहा,
5: हाँ।
6: भैया किसान भैया बहनी है ना, अपन धान के रोपाई में बढ़िया कतार में कतार देखा लाग भाई।
5: क्या बात कर,
6: हम कही हो सुमिरन भैया, तो प्रेमचंद और संघातिन के गाई एक रुपाई गीत बा, तो किसानों भैया बहनी है सुने, तू हम सुन।
5: बिल्कुल भैया सुनवा,
6: तो सुना।

0: भैया
1: सुमिरन भैया, देखा जौन है कि रुपाई गीत प्रेमचंद और संघातीन के भैया किसान भैया बहनी हरिन सुनिन, और साथे साथ भैया धान के रुपाई में देखा मन खुशहाली से धान के रुपाई करें।
0: बिल्कुल,
1: और साथे साथ भैया देखा इटेम जौन मौसम बा, मौसम के रुख देखा बदलत बा, दयु राजा जौन है बरसा करिहें भैया सब किसानन के देखा, सबके जौन मन में देखा ई बा कि दयु राजा जल्दी बारिश करें, खेती किसानी अपन बढ़िया हो, साथे साथ जौन गर्मी बा ई गर्मी भी धीरे धीरे और कम हो।
0: बिल्कुल कम हो।

0: भैया देखा एक थे और जरूरी चीज बाटे जो ना अपन पंचायत घर कार्यक्रम बाटे
1: हाँ
0: भाई, ऐसे जुड़ा कोनो सवाल बाटे, कोनो प्रतिक्रिया बाटे, कोनो सुझाव बाटे,
1: हाँ हाँ
0: तो भाई 800-4926-2500 नंबर बाटे, ये पर आप भैया संपर्क कई के
1: हाँ
0: अपन सुझाव प्रतिक्रिया दे सकते हैं। देखे घड़ी इशारा करत बा, चली चला के बेला भाई बा,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: पंचो
1: तो
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा से देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को किया रवाना। जालंधर से प्रदेश के 7 रेलवे स्टेशनों सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में 1000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। शामली को दी 581 करोड़ रुपए की 89 परियोजनाओं की सौगात। भारत और यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत लखनऊ से यूके के लिए आज भेजी गई 64 आमों की पहली खेप। और प्रदेश में उमस से लोगों को कल से मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ भारतीय रेल के इतिहास में बड़ा कदम है।
1: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अब ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
0: इसके बाद प्रधानमंत्री ने पंजाब के जालंधर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1570 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के 7 रेलवे स्टेशनों समेत 20 राज्यों में पुनर्विकसित 75 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इनमें लखनऊ के ऐशबाग जंक्शन सहित पनकीधाम, विंध्याचल, फतेहपुर, शामली, मोदीनगर और धामपुर रेलवे स्टेशन शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अमृतसर वाराणसी रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। इस सेवा से भारत के 2 सबसे प्रतिष्ठित आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री का आभार जताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री के ग्रीन ग्रोथ के संकल्प को नई गति देने के साथ ही विकसित भारत की यात्रा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बिजनौर में 1003 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बिजनौर की बेटियों को नर्सिंग की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें 100% रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही मिलेंगे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है।
2: आपने डबल इंजन सरकार के कार्य को पिछले 10 वर्ष के अंदर देखा है। आपने देखा होगा पहली बार हो रहा है विकास और समृद्धि का लाभ कैसे मिलता है। ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने आने के तत्काल बाद सबसे पहले काम किया था अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का कार्यक्रम, कृषक दुर्घटना बीमा योजना, भेदभाव कोई नहीं, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शामली के कैराना में 581 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 89 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने शामली और कैराना के बदलाव को रेखांकित करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार के सुरक्षा मॉडल, एक्सप्रेसवे की रफ्तार और गन्ने की मिठास से यह क्षेत्र देश दुनिया में चमक रहा है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश

0: देश का पहला एकीकृत निजी टेक्सटाइल्स पार्क शामली में बनने जा रहा है, जिससे 8,000 युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा।
1: यहाँ पे प्रदेश का पहला एकीकृत निजी टेक्सटाइल पार्क यहीं पे बनने जा रहा है और बहनों भाइयों 8,000 नौजवानों को उसमें सीधे सीधे नौकरी और रोजगार प्राप्त होगा। कि ये कार्य इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि आपका समर्थन हमारी सबसे बड़ी आज की ताकत है।
0: मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद में 868 करोड़ रुपए की लागत की 90 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में पुलिस को आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और मनीष यादव की 39 घंटे की कस्टडी रिमांड मिली है। कल पुलिस लाइन में दोनों का मेडिकल चेकअप होगा। इसके बाद एसओजी कार्यालय में पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। भारत और यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत उत्तर प्रदेश से यूनाइटेड किंगडम के लिए ताज़ा चौसा आमों की पहली निर्यात खेप को आज लखनऊ से रवाना किया गया। प्रदेश के उद्यान और कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने एक फ्लैग ऑफ समारोह में इस खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस खेप में 1200 किलोग्राम चौसा आमों को यूनाइटेड किंगडम भेजा गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों की पहुंच अब विदेशी बाजार तक हो गई है।
2: योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तरोत्तर राज्य की उपज को दुनिया की बाजारों तक पहुंचा करके किसानों का मूल्य संवर्धन किया जा रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि राज्य के किसानों की आमदनी दोगुनी की जाए। इस दृष्टि से भी उत्तरोत्तर हमारे उद्यान विभाग के द्वारा आम के साथ साथ अनेक फसलों को दुनिया की बाजारों तक पहुँचाया जा रहा है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन का आयोजन किया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के लगभग 1500 से अधिक माई भारत युवा स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। सभा को संबोधित करते हुए डॉ. मनसुख मांडविया ने युवाओं से कर्तव्य भाव, सेवा और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से प्रेरित होकर 2047 तक विकसित भारत के निर्माता बनने का आह्वान किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज का 21वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को 26 पदक प्रदान किए गए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि बेटियां नए भारत में नारी शक्ति का प्रतीक बन रही हैं।
3: यह सुखद है कि हमारी बेटियां निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। यह नए भारत की नई तस्वीर जहां नारी शक्ति भागीदार नहीं बल्कि नेतृत्व का प्रतीक बन रही। मैं सभी पदक विजेताओं, उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों और उनके टीचर्स को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।
0: आगामी श्रावण मास में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रदेश के कई जिलों में प्रशासन व्यापक तैयारियां कर रहा है। इसी क्रम में सुल्तानपुर की पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने बताया कि कांवड़ मार्गों पर शुद्ध पेयजल, सुचारू यातायात और ढाबों पर स्वच्छता के साथ प्रमुख शिवालयों और घाटों पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं।
4: जो तैयारियां उनको हमने 3 से 4 भागों में बांट रखा है, जैसे रूट्स की तैयारियां, घाट पे क्या तैयारियां रहेंगी और जो हमारे मुख्य शिवालय शिव मंदिर है उन सब में किस तरीके की व्यवस्था रहेगी और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग इत्यादि में हम क्या व्यवस्थाएं करनी है, जो सर्वे है उसको करके वर्तमान में अभी सभी थाना क्षेत्रों को सभी CEOs को अपने अपने SDM के साथ इसमें मीटिंग करने के लिए निर्देशित किया गया है।
0: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में इंडियन पैरा जूडो अकादमी द्वारा आयोजित जूडो महाकुंभ स्टेट चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने व्यायाम और खेल के महत्व पर प्रकाश डाला। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 1100 जूडो खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रदेश में कल से मॉनसून के और सक्रिय होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले चार दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। इससे अधिकतम तापमान में गिरावट के साथ लोगों को

0: उमस से राहत मिलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा से देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को किया रवाना। जालंधर से प्रदेश के 7 रेलवे स्टेशनों सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में 1000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। शामली को दी 581 करोड़ रुपए की 89 परियोजनाओं की सौगात। भारत और यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत लखनऊ से यूके के लिए आज भेजी गई 64 आमों की पहली खेप। और प्रदेश में उमस से लोगों को कल से मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है संस्कृत कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं भास्कर मिश्र की वार्ता श्री जगन्नाथ लोक यात्रा।

एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

श्रोताओं, आप हमें सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी, जिसे आप अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड करके टाइप करिए आकाशवाणी प्रयागराज और आप जुड़ सकते हैं हमारे कार्यक्रमों के साथ।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं दीपयंती। आइए इनके स्वर में सबसे पहले सुनते हैं ये भजन।

एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

0: रिपोर्ट वाचन एवं संपादन है विनय श्रीवास्तव का।
1: प्रस्तुत है माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल की 2 दिवसीय प्रयागराज यात्रा पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल 2 दिवसीय प्रयागराज यात्रा पर पधारी। बृहस्पतिवार 16 जुलाई को प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के 9वें और आज उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में वो बतौर कुलाधिपति उपस्थित रहीं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का शुभारंभ बटुकों द्वारा स्वस्ति वाचन से हुआ।

ये है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। अब प्रस्तुत है माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल की दो दिवसीय प्रयागराज यात्रा पर आधारित रेडियो।

0: अतिथियों के सम्मान के पश्चात कुलपति डॉ. अखिलेश कुमार सिंह ने अपने स्वागत भाषण में कहा,
1: आज का यह दिवस प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित होने वाला एक गौरवशाली और प्रेरणादायी और अविस्मरणीय अवसर है। दीक्षांत समारोह केवल उपाधियों के वितरण का उत्सव नहीं होता, यह ज्ञान से कर्म की ओर, साधना से सिद्धि की ओर, विद्यार्थी जीवन से उत्तरदायी नागरिक जीवन की ओर अग्रसर होने का पावन संस्कार है। यह वह मंगल क्षण है जब विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों को केवल डिग्रियां नहीं बल्कि जीवन मूल्यों, कर्तव्य बोध और राष्ट्र सेवा के संकल्प से अलंकृत कर समाज को समर्पित करता है। आज हम उन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का अभिनंदन कर रहे हैं जिन्होंने अथक परिश्रम, अनुशासन, धैर्य और उत्कृष्ट प्रतिभा के बल पर शिक्षा की एक महत्वपूर्ण यात्रा पूर्ण की है और इस जीवन के नए क्षितिज की ओर आत्मविश्वास से अग्रसर हो रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप इस विश्वविद्यालय से केवल डिग्री ही नहीं बल्कि एक महान दायित्व लेकर विदा हो रहे हैं। यह उपाधि आपके ज्ञान का प्रतीक है परंतु उसमें कहीं अधिक आपके चरित्र और उत्तरदायित्व और राष्ट्र सेवा का प्रतीक है। आपकी उपलब्धियां ही इस विश्वविद्यालय की भविष्य में पहचान बनेगी और आपका उज्ज्वल भविष्य ही हमारे प्रयासों की सबसे बड़ी सफलता होगी। आप सभी को उज्ज्वल, सफल एवं यशस्वी भविष्य के लिए मेरे और विश्वविद्यालय परिवार की ओर से अनंत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।
0: विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगेंद्र उपाध्याय ने अपने उद्बोधन में कहा,
2: देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस भावना को हमको अपने अंदर पैदा करना होगा। राष्ट्र ने हमारा निर्माण किया, हम राष्ट्र के लिए क्या करें जो राष्ट्र निर्माण हो, इसके लिए दो उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। हमारी महामहिम जिनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहता है, 84 साल की उम्र में भी कैसा राष्ट्र निर्माण किया है, राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है उनकी। यह राष्ट्र के प्रति समर्पण, राष्ट्र का निर्माण अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से राष्ट्र का निर्माण, A++। आज हमारे उत्तर प्रदेश में 8 विश्वविद्यालय हो चुके हैं।
0: समारोह के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हमें हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए।
3: मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज इस अत्यंत महान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला है। मैं मेरे सभी युवा साथियों को बधाई देता हूँ जिन्होंने आज उपाधि अर्जित की है, जिन्होंने आज पदक प्राप्त किया है। निश्चित तौर पर वे सब भारत के कर्णधार हैं। जब हम कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री इस बात का संकल्प लेते हैं कि सन 2047 तक भारत पूर्ण विकसित देश होगा और पूरे विश्व का बौद्धिक नेतृत्व करेगा, तो सन 2047 में जो लोग भारत का बौद्धिक नेतृत्व करेंगे वो पीढ़ी आज यहाँ सामने बैठी है जिन्हें हम सब ने उपाधियों से और पदकों से विभूषित किया है। इसलिए आपके ऊपर आने वाले समय में भारत के नेतृत्व का बहुत बड़ा दायित्व है, क्योंकि आप में से ही कुछ लोग निश्चित तौर पर अधिकारी बनेंगे, प्रशासनिक अधिकारी।

0: अधिकारी बनेंगे, वकील बनेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, मैनेजर बनेंगे, कुछ लोग राजनीतिक क्षेत्र में जाकर देश का नेतृत्व करेंगे और निश्चित तौर पर इसलिए देश को आपसे बहुत ज़्यादा आशाएं हैं। हम सब देख रहे हैं कि जिस तरह का वातावरण हमारे चारों ओर है, उस वातावरण में निश्चित तौर पर घर, परिवार और संस्कारों का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये मुझे अलग से इस जगह पर बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं वो क्षेत्र भारत ही नहीं समूचे विश्व को आध्यात्मिक और बौद्धिक प्रेरणा देने वाला तीर्थराज प्रयागराज का क्षेत्र है।
1: राज्य मंत्री उच्च शिक्षा श्रीमती रजनी तिवारी ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में देश के युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
2: सबसे पहले मैं उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ। अपार सामर्थ्य आप में है, जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय पूरा करके एक नए अध्याय की तरफ आप जा रहे हैं, और जब आप आगे बढ़ेंगे, जितना भी आगे बढ़ते जाएंगे, जीवन में चुनौतियां आपके सामने आती रहेंगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आप इन चुनौतियों के बीच से निकलते हुए और एक रास्ता आपको मिलेगा जो आपको एक लक्ष्य की तरफ ले जाने का काम करेगा। मैं शुभकामनाएं देती हूँ, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। आज जब आप इस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर जीवन के नए पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, तब रज्जू भैया के आदर्श आपके जीवन प्रेरणा का स्थायी स्रोत बने रहें, यही मेरी कामना है।
1: इस दौरान प्रसिद्ध बंधेज शिल्पकार खत्री अब्दुल सतार बापू को भारतीय वस्त्र परंपरा और प्राचीन हस्तशिल्प विरासत के संरक्षण व संवर्धन में योगदान के लिए मानद डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा,
3: ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, ये सम्मान कच्छ की उस सदियों पुरानी बांधनी कला का है जिसे हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपा। ये सम्मान उन हजारों बारीक दागों, कपड़ों पर उतरने वाले पारंपरिक रंगों और हमारे हुनरमंद कारीगरों की कड़ी मेहनत का है। जैसे प्रयागराज में नदियों का संगम होता है, वैसे ही आज मुझे महसूस हो रहा है कि कच्छ की ये पारंपरिक कला ज्ञान के इस पवित्र केंद्र से आकर मिल गई है। हमारा हमेशा यही प्रयास रहा है कि हम अपनी इस अनमोल विरासत को पूरी शुद्धता और पर्यावरण के अनुकूल तरीकों से साथ जिंदा रखें और नई पीढ़ी को सिखाए।
1: माननीय राज्यपाल व विश्वविद्यालय की कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने अपने संबोधन में परीक्षा मूल्यांकन व्यवस्था के सुधार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मूल्यांकन के काम में गंभीरता और जिम्मेदारी अपनानी चाहिए।
4: तीर्थराज प्रयागराज की पुष्पधारा, जहाँ ज्ञान, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का दिव्य संगम अनादि काल से मानवता का मार्ग आलोकित करता आया है, उस पावन भूमि पर स्थित प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह की आप सभी को बधाई। यह विश्वविद्यालय महान शिक्षाविद, प्रख्यात वैज्ञानिक एवं राष्ट्रनिष्ठ व्यक्तित्व प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया के नाम से सुशोभित है। उनका सरल जीवन, वैज्ञानिक चिंतन, राष्ट्र सेवा और मानवीय मूल्यों के प्रति अटूट समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके आदर्श हमें सादगी, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी का नामकरण हुआ है और ऐसे व्यक्तियों के नाम से हुआ है जो जानने की आवश्यकता होती है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम उनके नाम से क्यों है? ऐसा क्या समाज के लिए, के देश के लिए उन्होंने किया कि जिसकी वजह से जब तक यूनिवर्सिटी चलेगी तब तक उनको और उसको कार्य को याद करते रहेंगे। विद्यार्थियों को कुल 242 पदक प्रदान किए गए, इनमें 158 छात्राएं और 78 छात्र हैं। पदक प्राप्त करने वालों में लगभग 67% छात्राएं हैं, 33% छात्र हैं। यह उपलब्धि भारतीय समाज में महिलाओं की बढ़ती शिक्षा, आत्मविश्वास, परिश्रम और उत्कृष्ट का सशक्त प्रमाण है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि प्रोफेसर राजेंद्र रज्जू भैया विश्वविद्यालय ने नेक ए ग्रेड प्राप्त किया है। विश्वविद्यालय ने परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रणाली में आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग करते हुए डिजिटल प्रक्रियाओं को अपनाया है तथा उत्तर पुस्तिकाओं के ऑनलाइन अवलोकन जैसी पारदर्शी व्यवस्था प्रारंभ कर विद्यार्थियों के हितों और सुशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया है। भारत का भविष्य उसकी युवा शक्ति और शिक्षा व्यवस्था पर आधारित है। यह प्रसन्नता का विषय है कि इस वर्ष के केंद्रीय बजट में शिक्षा क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता प्रदान करते हुए उच्च शिक्षा

0: के बजट में लगभग 11% की वृद्धि की गई है। आज शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को कौशल, नवाचार, उद्यमिता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप तैयार करना है। इसी दृष्टि से बजट में 15,000 माध्यमिक विद्यालयों तथा 500 महाविद्यालयों में भारत के एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने का प्रस्ताव अत्यंत दूरदर्शी कदम है। इसे युवाओं को उभरती हुई रचनात्मक और डिजिटल अर्थव्यवस्था में नए अवसर प्राप्त होंगे तथा वैश्विक क्रिएटिविटी इंडस्ट्रीज में अपनी सशक्त पहचान स्थापित कर पाएंगे।
1: अलंकरण समारोह में 242 विद्यार्थियों को पदक प्रदान किए गए, जिनमें 72 स्वर्ण, 79 रजत और 87 कांस्य पदक शामिल हैं। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुल 81,822 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई। प्रयागराज यात्रा के दूसरे दिन आज माननीय राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में बतौर कुलाधिपति उपस्थित रहीं। समारोह के आरंभ में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा विश्वविद्यालय का कुलगीत प्रस्तुत किया गया।

0: विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने अपने स्वागत उद्बोधन में विद्यार्थियों को शुभकामना देते हुए कहा,
1: भारत रत्न राजर्षि टंडन की कर्म भूमि तीर्थराज प्रयाग में स्थापित उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रही माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश एवं कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्य अतिथि पद्मश्री श्रीमती मालिनी अवस्थी जी, विशिष्ट अतिथि माननीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय राज्य मंत्री उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश श्रीमती रजनी तिवारी जी, विश्वविद्यालय के सर्वोच्च निकायों कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सम्मानित सदस्य, हम सब आपका स्वागत करते हैं इस 21वें संक्षिप्त

0: समारोह के ऐतिहासिक अवसर पर हमें यह व्यक्त करते हुए अनुभूति हो रही है, प्रसन्नता हो रही है कि आपकी सत्प्रेरणा और दूरदर्शी दिशा निर्देशों के फलस्वरूप हमारा विश्वविद्यालय अपने संकल्पों को सिद्ध करता हुआ प्रगति के 28वें वर्ष में गतिमान है। आज के इस पावन उत्सव में सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2025 और 2026 में अपनी मेधा सिद्ध करने वाले कुल 30,886 सफल शिक्षार्थियों को उपाधियां और प्रमाण पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस सफल स्नातक और परा स्नातक शिक्षार्थियों में से प्रथम प्रयास में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले 18 मेधावियों को आपके कर कमलों से 26 स्वर्ण पदकों से अलंकृत किया जाएगा, जिसमें छात्रों की संख्या 6 और छात्राओं की संख्या 12 है। यह नारी सशक्तिकरण और बदलते भारत की एक सुंदर तस्वीर पेश करती है।
1: विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी ने कहा कि चुनौतियों को जो पार कर आगे बढ़ता है वही इतिहास रचता है।
2: मुझे पूरा विश्वास है कि आप स्वयं को तो बहुत अच्छे से गढ़ने का काम करेंगे, प्रकाशित करने का काम करेंगे। आपने जो शिक्षा दीक्षा, आपने जो कौशल प्राप्त किया है, उसके दम पे आप देश को विकसित करने में भी अपना योगदान जरूर देंगे। और ये भी आपको ध्यान रखना होगा, जब आप आगे बढ़ते हैं और यहाँ तक भी पहुँचे, अनेकों चुनौतियाँ आपके सामने आई होंगी। चुनौतियों, सफलताओं, असफलताओं को जो पार करता हुआ जो आगे बढ़ता है वही इतिहास रचता है। कोई व्यक्ति ऐसे ही असाधारण नहीं बनता। अनेकों चुनौतियों को पार करते हुए, सफलताओं असफलताओं को पार करते हुए व्यक्ति आगे बढ़ता है, वाकई में वही अनुकरणीय होता है। मैं एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं विश्वविद्यालय को देना चाहूंगी। यहाँ पे आज कई बच्चों ने उपाधि ही नहीं ली, बहुत सारे बच्चों ने मेडल प्राप्त किए, गोल्ड मेडल प्राप्त किए। विश्वविद्यालय को शुभकामनाएं देते हुए मैं यहाँ पे उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं देती हूँ। आप स्वयं प्रकाशित होते रहिए, अपने आसपास के वातावरण को प्रकाशित करिए। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 विकसित भारत, उसमें अपना योगदान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि शिक्षा वो है जो हमें संस्कारी नागरिक बनाती है।
3: आज दीक्षांत समारोह शिक्षा का आपका एक नया जीवन में प्रवेश करेंगे, लेकिन ये विश्वविद्यालय वो विश्वविद्यालय जो संदेश देता है कि शिक्षा ग्रहण करने की कोई उम्र नहीं हो। हम कभी भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई आप में से इंजीनियर बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा, कोई व्यापारी उद्योगपति बनेगा, कोई आईएएस आईपीएस बनेगा। क्या मात्र शिक्षा का उद्देश्य यही है कि हम अपने रोजगार को कैसे बनाएं या अपने परिवार को कैसे चलाएं? नहीं, शिक्षा वो है मित्रों जो संस्कारी नागरिक बनाती हो। शिक्षा वो है जो समाज के प्रति संवेदनशीलता सिखाती हो। शिक्षा वो है जो सामाजिक सरोकारों से जोड़ती हो, राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव सिखाती हो, अर्थात नैतिक सामाजिक चारित्रिक मूल्यों को आत्मसात करना सिखाती हो, वह शिक्षा है। तो शिक्षा को कैसे सामाजिक सरोकारों से, संस्कारों से, आने वाली नस्लों को, जैसे मैंने कहा राष्ट्र नेता कौन जो आने वाली नस्लों तक की सोचता हो। हमें अपने लोक संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, वो शिक्षा जो सामाजिक संस्कारों से जुड़ती हो, विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकती हो, वह शिक्षा है। मात्र रोजगार शिक्षा नहीं है।
1: मुख्य अतिथि भारतीय शास्त्रीय और लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने अपनी जड़ों से जुड़े रहने की बात कही।
4: आज से आप आगे जहां भी जाएंगे आपके परिचय के साथ आपके इस विश्वविद्यालय का नाम जुड़ा रहेगा, किंतु आप कहां जाएंगे उसका परिचय यहाँ की डिग्री से नहीं, आपके आगे के परिश्रम, आपके विवेक और आपके आचरण से होगा। आचरण से विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा जुड़ी है। सदैव अपने गुरुओं का, अपने शिक्षण संस्थान का मान रखें। आप उच्च शिक्षा लें, आजकल तो AI का जमाना आ गया है, तकनीक से जुड़ करके नए नए कीर्तिमान गढ़ें, ईश्वर करे आधुनिकता में आप तकनीक को अपनाएं, हर वो मार्ग अपनाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, कंप्यूटर हो, दुनिया की हर विद्या को पढ़ें, क्योंकि यही समय की मांग भी है। आप आसमान में खूब ऊंची उड़ान भरें, लेकिन याद रखेंगे कि पेड़ की डालियां आसमान में चाहे जितनी ही फैल जाए, अगर वो जड़ों से कट गई तो आंधी का एक झोंका आएगा और उन्हें गिरा देगा। यानी जुड़े रहोगे तो जड़ बनी रहेगी। जड़ से जुड़े रहें, आप जिस मिट्टी से हैं, जिस वातावरण से हैं।

0: हैं, जिस परिवार से हैं, जिस अंचल से हैं,
1: जिस बोली से हैं, जिस परिवार के माता पिता की संतान है, आप उसके होने में गर्व करें।
2: समारोह की अध्यक्ष माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि प्रयागराज सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। उन्होंने विद्यार्थियों को समाज के प्रति उनके दायित्व बोध की याद दिलाई।
3: प्रयागराज भारत की आध्यात्मिक चेतना, ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक इस नगर ने देश को अनेक महान विभूतियां दी है। यह विश्वविद्यालय भी ज्ञान, संस्कार और कौशल का सशक्त केंद्र बनकर उत्तर प्रदेश में शिक्षा और विकास को नई दिशा प्रदान कर रहा है। दीक्षांत उस यात्रा का प्रारंभ है जहाँ पुस्तक का प्रत्येक पृष्ठ जीवन के अनुभवों में परिवर्तित होता है और कक्षा का प्रत्येक पाठ समाज की सेवा में अभिव्यक्त होता है। आज आपके हाथों में जो उपाधि है वह केवल आपकी योग्यता का प्रमाण नहीं है, बल्कि समाज के प्रति आपके दायित्व का उद्घोष है। ये सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन दायित्व समझो। जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जो अवसरों की प्रतीक्षा करते हैं, दूसरे वे जो अवसर का सृजन करते हैं। भारत का आज दूसरे प्रकार के युवाओं की आवश्यकता है, ऐसे युवा जो समस्याओं की चर्चा कम करें और उनके समाधान अधिक खोजें, जो शिकायतों से अधिक संकल्प पर विश्वास करें, जो अपने लिए नहीं समाज के लिए जिए। मित्र, तो दीक्षांत समारोह इसी वजह से है। ये सिर्फ सर्टिफिकेट बांटने के लिए नहीं है, डिग्री एनायत करने के लिए नहीं है, ये घर में टिंगाने के लिए नहीं है, समाज में परिवर्तन लाने के लिए है। और सोचिए आप लोग, देश के बड़ा प्रधान प्राइम मिनिस्टर 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, और इसमें कहते हैं कि आने वाली युवा पीढ़ी की जिम्मेवारी है। अब सोचिए पिछले 10-15 सालों से एजुकेशन में कितना चेंजेज हो रहा है, जरा गहराई से तो सोचिए। एक एक बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, संस्कार मिलने चाहिए, उसका कौशल का विकास होना चाहिए।
2: अभी आप सुन रहे थे माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल की 2 दिवसीय प्रयागराज यात्रा पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। वाचन व संपादन विनय श्रीवास्तव, तकनीकी सहयोग श्री मनोज कुमार गुप्ता और विवेक कुमार, स्थल रिकॉर्डिंग व प्रस्तुति अभिनव प्रज्ञ पांडे और दीपक कुमार राय की थी।

ये है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, प्रस्तुत है अक्षय वट कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं आशुतोष सुंदरम की कहानी रिटायरमेंट।

0: शांता प्रसाद आज बड़े उत्साह पूर्वक दफ्तर के टाइम पर तैयार हुए, हाथ में बैग उठाकर पत्नी से बोले,
1: सुनो जी, मैं दफ्तर जा रहा हूँ, 2-4 घंटे बाद वापस लौटूंगा, चिंता मत करना।
0: रसोई से बाहर निकलती हुई पत्नी ने साड़ी के आंचल में हाथ पोंछते हुए प्रश्न दाग दिया,
2: अरे तुम रिटायर हो गए हो, भूल गए क्या जो दफ्तर के टाइम पर ही निकले चले जा रहे हो?
1: पता है, कई दिन से दफ्तर नहीं गया, सोचा दफ्तर के मित्रों से हालचाल ले लूं।
2: ठीक है, अच्छी बात है, तो ऐसा करो चाय तो पीते जाओ, फिर लौट कर खाना खा लेना।
1: अरे नहीं, अब मैं तैयार हूँ, जाने दो, नहीं तो देर हो जाएगी, चाय दफ्तर में ही पी लूंगा, वहाँ कैंटीन है ना, अच्छी चाय मिलती है।
0: शांता जी ने जवाब दिया और छाता लेकर जल्दी से निकल गए। शांता प्रसाद अभी 2 माह पहले ही केंद्र सरकार के कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए थे। अपनी 35 वर्षों की सेवा में अधिकांश समय लखनऊ में ही बिताया था और यहीं से रिटायर भी हुए। अपनी सेवा के दौरान उन्होंने ऑफिस की विभिन्न सीटों पर काम करते हुए अच्छा खासा अनुभव प्राप्त किया था। इसी नौकरी की बदौलत उन्होंने बेटी के हाथ पीले किए और बेटे को बीटेक कराया। सेवानिवृत्ति के पहले कोशिश करके उन्होंने अपना एक छोटा सा मकान भी बनवा लिया था और अब पत्नी के साथ इसी मकान में उनका निवास था। शांता प्रसाद यूं तो रिटायर हो चुके थे, लेकिन मन अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था। शुरू के कुछ दिन तो वो नियमित रूप से ऑफिस जाते रहे और कुछ अपने व्यक्तिगत काम तो कुछ सरकारी काम में मदद करते रहे। पत्नी के बार बार टोकने पर उनका ऑफिस जाने का नियमित क्रम तो टूट गया, लेकिन अभी भी वो ऑफिस के समय पर तैयार होकर बैठ जाते और चहलकदमी करने लगते। फिर पत्नी का तेज स्वर उभरता,
2: अब इधर उधर क्या टहल रहे हो, ये लो नाश्ता और आराम से खाओ, अब तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है, अब तुम रिटायर हो गए हो।
0: शांता प्रसाद जी के बढ़ते हुए कदम रुक जाते, कुछ सोचकर डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ नाश्ता उठाते और कुछ सोचते हुए खाना शुरू कर देते। अब यही उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। आज भी अवकाश ग्रहण करने के बाद शांता प्रसाद मन से ऑफिस को दूर नहीं कर पाए थे। अनेक प्रश्न उनके दिमाग में उठते थे, पता नहीं लड़कियों को समय से घर जाने को मिलता होगा कि नहीं, आम जनता का काम लोग समय से करते होंगे कि नहीं। मन में ये सब प्रश्न घुमड़ते ही शांता प्रसाद का मन व्याकुल हो जाता, इच्छा होती कि अभी ऑफिस चलकर देखूं। फिर उन्हें ख्याल आता, रिटायरमेंट के बाद वो किस हक से ये सब पूछ सकते हैं। ये ख्याल आते ही शांता प्रसाद चुप हो जाते और निर्विकार भाव से कमरे की छत की ओर देखने लगते। कल स्टेशन रोड के मॉल में खरीदारी करते हुए मैनेजर ने उन्हें पहचान लिया। बिल बनवाते हुए आत्मीयता से बोला,
3: सर आप GST ऑफिस में है ना, मैं आपको पहचानता हूँ, पिछली बार आपने मेरी काफी मदद की थी, कल मैं फिर गया था लेकिन आपकी जगह कोई और साहब बैठे हुए थे।
1: हाँ भाई, रिटायर हो गया हूँ।
3: अरे कब?
1: करीब 2 माह से ऊपर हो गए, कोई खास बात?
3: सर GST के संबंध में गया था, लेकिन नए साहब तो ढंग से बात ही नहीं कर रहे थे, अकड़ ऐसे रहते जैसे हम सब पढ़े लिखे गंवार गधे हों।
1: ये तो गलत है
3: सर, हम व्यापार करते हैं, टैक्स देते हैं, तभी तो सरकार की आय होती है, अगर फाइलों में हमें उलझाया जाएगा तो टैक्स कैसे जमा होगा, लोग चोरी का रास्ता अख्तियार कर लेंगे। बताइए, सरकार टैक्सेशन सरल कर रही है और चेयर पे बैठे अधिकारी अपनी मर्जी चला रहे हैं, सर आप थे तो कितनी सहूलियत से काम हो जाता था।
1: भाई लोगों का अपना काम करने का तरीका है।
0: ये कहकर शांता प्रसाद थके कदमों से घर आकर सोफे पर बैठ गए। उन्हें मैनेजर की बात कचोट रही थी, इच्छा हुई कल ही ऑफिस जाकर बड़े साहब को बताया जाए कि ऑफिस किस धरने पर काम कर रहा है। लेकिन फिर ये विचार उठा, यार अब तुम रिटायर हो गए हो, और इस विचार के साथ ही वो निढाल होकर सोफे पर पसर गए। अगले दिन सुबह शांता प्रसाद से न रहा गया। नाश्ता करने के बाद उन्होंने हेड क्लर्क को फोन मिलाया।
1: हेलो हेलो, मैं शांता प्रसाद बोल रहा हूँ।
4: जी बताइए।
1: जी मैं रिटायर्ड SO शांता प्रसाद बोल रहा हूँ।
4: हाँ जी साहब नमस्कार, मैं हेड क्लर्क रमेश चंद्र हूँ, जयपुर से ट्रांसफर पर आया हूँ, मैंने आपका काफी नाम सुना है यहाँ पे।
1: भाई रमेश जी, बाहर डिपार्टमेंट की वर्किंग को लेकर काफी कुछ सुनने को मिल रहा है।
4: सर जी, समय के साथ चीजें बदलती हैं, मैं बदल गया, आप बदल गए, नए SO साहब ने आपकी जगह ले ली, व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं, आप समझ ही रहे होंगे, अब उनके हिसाब से पब्लिक डीलिंग होती है, रिटायरमेंट के बाद आप क्यों किसी पचड़े में पड़ते हैं।
0: शांता प्रसाद ने फोन काट दिया और दिल में उलझन लिए।

0: लेट गए। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आंखें बंद थी लेकिन विचारों की फिल्म चल रही थी। क्या रिटायरमेंट के बाद आदमी का उस ऑफिस से नाता टूट जाता है जहां उसने 30-35 वर्षों तक नौकरी की। अब वो अपने आप को काफी हताश महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो टूट से गए हैं। ऑफिस में उनका बना बनाया सिस्टम क्या टूटा। उन्हें लगने लगा कि उनका बना बनाया मकान ठह रहा है और वो बेबस सब कुछ होते देख रहे हैं। वो बीमार पड़ गए। उन्हें कुछ अंदर ही अंदर खा रहा था और शांता प्रसाद अवसाद के शिकार हो गए। घर के बाहर निकलना बंद हो गया। खाने पीने में लापरवाही होने लगी। लोगों से कटने लगे। पत्नी से भी कम बातचीत होने लगी। एक दिन पत्नी ने परेशान होकर आखिर कह ही दिया,
1: अब देखो ऐसा है कि अगर ऑफिस जाए बिना तुम्हारा मन नहीं लगता तो चले जाओ।
0: शांता प्रसाद ने चुपचाप सुन लिया। बोले कुछ नहीं। पत्नी को कैसे बताते कि अब ऑफिस उनका नहीं रहा। शांता प्रसाद की मनोदशा को देखकर उनकी पत्नी परेशान हो गई। फिर उन्होंने कुछ निश्चय पूर्वक कहा,
1: सुनिए ना, देखिए आजकल आप काफी अकेले अकेले रहने लग गए हैं, ऑफिस भी नहीं जाते, इसीलिए कल से आप मेरे साथ सुबह सैर के लिए चलेंगे।
2: नहीं नहीं नहीं भाई, ये मुझसे नहीं होगा। मेरा मन नहीं करता सुबह टहलने का।
1: अरे मैं कुछ सुनने उनने वाली नहीं, मैं अकेली थक जाती हूँ। मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मैं तो आपके लिए दिन भर खटती रहती हूँ।
0: थोड़ा नानुकुर करने के बाद शांता प्रसाद पत्नी के साथ पार्क में प्रातःकालीन भ्रमण पर जाने लगे। शुरू में अनमने रहने वाले शांता प्रसाद को पार्क का सुरम्य वातावरण अच्छा लगने लगा और अब वो कुछ देर पार्क में टहलने के बाद काफी देर तक पार्क में बैठे रहकर प्राकृतिक सुंदरता को निहारते हरे भरे पेड़ों पर पक्षियों का चहचहाना उन्हें अच्छा लगने लगा था। पत्नी के साथ बैठकर वो अपलग पेड़ पौधों को निहारा करते। पत्नी को भी अच्छा लगता कि शांता प्रसाद जीवन में रुचि ले रहे थे। अक्सर उन्हीं को कहना पड़ता,
1: क्या शाम तक यहीं बैठने का इरादा है?
2: अरे चलते हैं, जल्दी क्या है।
1: कहिए तो मैं जाकर आपके लिए चाय नाश्ता यहीं ले आऊं।
2: अब तुम भी मजाक करने लगी हो।
0: पार्क में टहलते टहलते शांता प्रसाद की जीवन दृष्टि बदल गई। पेड़ पौधे, उन पर लगे फूल, पेड़ों पर उछल कूद करती गिलहरियां उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती। पार्क में घास पर पड़ी गंदगी उन्हें अखरने लगी थी। अब उन्हें जहां भी पार्क में गंदगी दिखती उसे साफ करने की चेष्टा करते। पार्क में पड़े खाली पैकेट उन्हें अखरते थे। उन्होंने कई बार पार्क के चौकीदारों का ध्यान इस ओर दिलाया। चौकीदार ने जवाब दिया,
3: अरे साहब इतने लोग आते हैं यहाँ घूमने, सब पढ़े लिखे लेकिन इतनी तमीज नहीं किसी को कि कूड़ा कूड़े दान में डालें। अब बताइए मैं किस किस को टोकूं और किसकी किसकी पॉकेट चेक करूं।
0: शांता प्रसाद निरुत्तर हो गए। अच्छा भाई कहकर वो खुद रास्ते में पड़े खाली पैकेट बीन कर कूड़ेदान में डालने लगे। भ्रमण के बाद वो आधे घंटे प्रतिदिन यही काम करते थे। फिर एक दिन उन्होंने पत्नी से कहा,
2: घर में कोई खाली बोरा हो तो मुझे दे दो।
1: क्या करेंगे?
2: कुछ नहीं, सुबह साथ लेकर चलेंगे।
0: पत्नी कुछ नहीं बोली। वो समझ गई इनकी मंशा क्या है। सुबह भ्रमण के लिए जाते वक्त उन्होंने बोरा साथ में लिया। आधे घंटे टहलने के बाद शांता प्रसाद बोरा लेकर पार्क में फैली पत्तियों, कागजों और कूड़े को बीन बीन कर बोरे में भरने लगे। एक घंटे में उन्होंने पार्क को साफ कर दिया और बोरे को पार्क के बाहर रखे कूड़ेदान में खाली कर दिया। अब ये कार्य पति पत्नी की दिनचर्या में शामिल हो गया था। पार्क में टहलने वाले अन्य लोग वृद्ध दंपति की इस क्रिया को आश्चर्य से देखने लगे। पहले उन्हें हैरानी हुई लेकिन फिर एक एक कर लोग आगे आते गए और शांता प्रसाद के मददगार हाथ बढ़ते चले गए। कुछ दिनों की मेहनत से पार्क साफ सुथरा और प्रदूषण से मुक्त हो गया। लोग कूड़ा डस्टबिन में डालने लगे। शांता प्रसाद की लगाई स्वच्छता की पौध अब पार्क में वृक्ष बनकर झूम रही थी। शांता प्रसाद पार्क की बेंच पर बैठकर इत्मीनान से चारों ओर नजर डालते तो मन आह्लादित हो उठता। हर ओर हरियाली और स्वच्छता से अभिभूत होकर आसमान की ओर देखते और कृतज्ञता से उनके हाथ बंध जाते, सिर झुक जाता और गला रूंध जाता। लोग जब उनकी आंखों में आंसू देखते तो उनको घेर लेते और पूछना शुरू कर देते कि क्या हुआ। शांता प्रसाद निशब्द हाथ उठाकर सबको शांत करते। समझ नहीं आता क्या कहें। उन्हें लगता उनके अंदर कुछ पिघल रहा है लेकिन क्या, ये उनकी समझ से बाहर होता। शांता प्रसाद अब पहले वाले शांता प्रसाद नहीं रहे। उन्हें अब अपने तन, वस्त्र, भूख प्यास की चिंता नहीं रहती थी। सिर और गालों पर सफेद बाल काफी बड़े हो चले थे। पत्नी अक्सर टोकने लगी थी,
1: सुनिए ये आपने क्या अपना हाल बना लिया है।
2: क्यों, क्या हुआ?

0: भूख न प्यास की चिंता न कपड़े लत्ते की। दिन भर अधिकांश समय आप पार्क में ही रहते हैं, ऐसा क्या काम रहता है वहाँ? पार्क तो हम लोग सुबह ही साफ कर देते हैं।
1: तुम नहीं समझोगी मधुमालती, अब पार्क मुझे घर जैसा लगता है। जब सैर के बाद मैं वहां बैठता हूं तो मुझे असीम सुकून मिलता है, मैं जिसका वर्णन नहीं कर सकता। मुझे लगता है अनेक लोगों के बीच भी मैं अकेला हूं, नितांत अकेला, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट। ना भूख, ना प्यास, ना कोई और इच्छा, यूं ही बैठे बैठे समय बीत जाता है। और फिर ढेर सारे बच्चे हरियाली बाबा कहते हुए मुझे घेर लेते हैं और प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं। उनसे बात करना, उनकी समस्याएं सुनना मुझे भाता है। मैं उन्हें प्रकृति संरक्षण के बारे में बताता हूँ, पशु पक्षियों के प्रति दया भाव के बारे में उनसे बात करता हूँ। अब तो बच्चों की पूरी टोली तैयार हो गई है मेरे साथ। पिछली छुट्टियों में एक दिन मैंने बच्चों से यूं ही पूछा।
2: हरियाली बाबा आ गए।
1: अरे बच्चों, तुम लोग आ गए। अच्छा बच्चों, ये बताओ तुम लोगों ने मेरा नाम ये हरियाली बाबा कैसे रख दिया?
3: आपने सेवा करके हमारे पार्क को साफ सुथरा और हरा भरा बनाया है, इसलिए।
1: शैतान सोना, ये तुमने कहाँ से सीखा? और नलिन, तू क्या कर रहा है?
2: पहले तो हम लोग आपको हरियाली अंकल बोलते थे, लेकिन मम्मी पापा ने कहा कि आप उनके अंकल हो, इसलिए आप हमारे बाबा हो गए।
3: हमने और हमारे मम्मी पापा ने भी संकल्प लिया है कि कभी पार्क को गंदा नहीं करेंगे और आपके हरियाली मिशन से जुड़े रहेंगे।
4: हरियाली बाबा जिंदाबाद, हरियाली बाबा जिंदाबाद। हमारा मिशन
3: कीप पार्क क्लीन, कीप सिटी क्लीन।
1: बहुत अच्छा बच्चों, बिल्कुल ये ध्यान रखना कि हमें अपना पार्क साफ सुथरा और स्वच्छ रखना है। मधुमालती, इस तरह मुझे पता लगा कि अपने शहर में पूरी एक फौज तैयार हो गई है हमारा साथ देने के लिए, और मैं इस मिशन पर अटल हूँ। तुम भी तो मेरे साथ हो।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी तो ख्याल रखिए आप, वरना कमजोर हो जाएंगे।
1: कैसे कमजोर हो जाएंगे भाई, इतने लोगों की शक्ति मेरी शक्ति है, हमारी संकल्प शक्ति हमारी ताकत है, और फिर तुम्हारा साथ। नाहक चिंता मत पालो।
0: मैं देख रही हूँ आप कितना बदल गए हैं, आपके चेहरे की खुशी और संतुष्टि मेरी जीवन शक्ति है। आज रिटायरमेंट के बाद आप पहले से ज्यादा व्यस्त हैं, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा खुश, आपको नजर न लगे।
1: मधुमालती, सच ये है कि नौकरी करते हुए मैं सिर्फ अपने घर परिवार तक सीमित था, ईमानदारी से काम करते हुए भी मुझे खुशी मिली, लेकिन सीमित, क्योंकि मेरा परिवार सीमित था। आज मेरा परिवार कितना बड़ा हो गया है।
0: सो तो है,
1: सैकड़ों अनजाने लोग मेरे परिवार का हिस्सा बन गए हैं, उनका आदर, उनका स्नेह भाव, मैं उसमें आकंठ डूबा हुआ हूँ। इसीलिए मेरा प्रेम, मेरी खुशी असीम है, मेरी दुआएं अनंत हैं, यही मेरी ताकत है और यही मेरी चेतना का विस्तार है। अब मेरा मिशन ही मेरी जिंदगी है, और इस मिशन में अनेकानेक लोग शामिल हैं, परिचित अपरिचित सभी। सभी का संकल्प है आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर थाती सौंपना। क्या इस मिशन में मुझे तुम्हारा साथ अंत तक मिलेगा?
0: मैं आपकी जीवन संगनी यूं ही नहीं हूँ, आपका मिशन आपका नहीं हमारा है, जीवन के अंतिम सांस तक।
5: अभी आप सुन रहे थे आशुतोष सुंदरम की कहानी रिटायरमेंट। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगी। नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। गुजरात शीर्ष पर, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारम्भ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है।
1: साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब की जनता को केंद्र की हर स्कीम का लाभ मिले, लेकिन कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहाँ लूट का खुला खेल चल रहा है। बीते 12 वर्षों में केंद्र से पंजाब को लाखों करोड़ रुपए भेजे गए। इस पैसे से गांव के रास्ते बनते, नहरें बनती, मंडियां बनती, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया।
0: श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार पंजाब में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है।
2: आज पंजाब में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1800 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है रेलवे के नेटवर्क को।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया।

0: प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
1: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही।
0: हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज मंत्रियों के समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राममोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
2: ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। तीन देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसाराव पेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सफर संगठित स्वैच्छिक कार्यों की शक्ति और निस्वार्थ सेवा के चिरस्थायी मूल्यों का प्रमाण है। नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की पुस्तक आरएसएस 800 सेवा, एकता और बलिदान की एक शताब्दी का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से एकता और राष्ट्रीय चेतना के आदर्शों को मजबूत किया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरएसएस ने हर प्रतिकूल परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों, सेवा और लोकतंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री रेलगाड़ी की टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे ने इस मामले में उच्च स्तरीय जाँच समिति गठित करने का आदेश

दिया है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in

0: सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्यों का उल्लेख है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 1% से अधिक की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक के उछाल के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे ऊपर आकर 96.28 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार प्रदान करता है। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट ऑलराउंडर गैरी सोबार्स का आज निधन हो गया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का भी कारनामा अपने नाम किया। सर गारफील्ड सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला विश्व की चौथे नंबर की चीन की खिलाड़ी चेन युफई से होगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में रविवार तक तेज बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर होंगी। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट गैरी सोबर्स का निधन। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh. Flags off India's first hydrogen-powered train from Jind. Prime Minister says Centre is committed to ease of living and new opportunities for every citizen with the spirit of Nagrik Deva Bhava.

0: और नए मौके फराहम करने के तई अहदबंद है। हुकूमत ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल इतवार के रोज कुल पार्टी मीटिंग तलब की है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू इतवार से मोल्दोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के 3 रोजा दौरे पर रहेंगी। नीति आयोग ने सरमायाकारी फ्रेंडलीनेस का इशारिया 2026 जारी किया है। गुजरात आला तरीन कारकर्दगी करने वाली रियासत के तौर पर उभरी है। इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु आते हैं। मायानाज वेस्ट इंडीज क्रिकेट खिलाड़ी गैरी सोबर्स का इंतकाल हो गया है। और भारत ने अगले महीने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में मुनक्किद होने वाले FIH खवातीन की हॉकी आलमी कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से तकरीबन 25,000 करोड़ रुपये के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज़ किया। इन प्रोजेक्टों का मकसद कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करना, मुसाफिर सहूलतों में इजाफा करना और खित्ते में माशी तरक्की को फ़रोग देना है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज शाम जालंधर में 5,470 करोड़ रुपये से ज़्यादा लागत के मुख्तलिफ रेल और सड़क बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। जनाब मोदी ने तजीन नौ किए गए 75 रेलवे स्टेशनों का इफ्तिताह किया, जिनमें अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत जालंधर कैंट स्टेशन भी शामिल है। जालंधर में अवामी जलसे से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत के हर शहरी की खिदमत करना, उनकी जिंदगियों को आसान बनाना और उन्हें तरक्की के नए मौके फराहम करना मरकज की NDA हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने कहा कि ये NDA हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि हर कुंबा, चाहे वो गरीब हो या मुतवसित तबके से ताल्लुक रखता हो, उसे बेहतर से बेहतर सहूलतें मिलें और हुकूमत के कामकाज में नागरिक देवोभव के जज्बे की अक्कासी हो।
1: हम नागरिक देवोभव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवोभव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: वजीर आजम ने कहा कि ये रेलवे स्टेशन सभी जदीद सहूलतों से लैस हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इन स्टेशनों की कायापलट का प्रोग्राम दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन तजीनो प्रोग्राम अमृत भारत स्टेशन स्कीम का हिस्सा है।
1: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। आज ऐसे ही 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
0: वजीर आजम ने जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रेलवे और इत्तिलात व नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और दीगर सरकर्दा शख्सियात भी मौजूद थीं। वजीर आजम मोदी ने दिल्ली अमृतसर कटरा 4 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे और 6 लेन वाले जुनूबी लुधियाना ग्रीन फील्ड बाईपास की तरक्की का संग बुनियाद रखने जैसे कौमी शाहराहों के प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया। हुकूमत ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल इतवार के रोज़ पार्लियामेंट की सभी सियासी जमातों के ऐवान के रहनुमाओं की मीटिंग तलब की है। मीटिंग के दौरान हुकूमत सभी सियासी जमातों से तआवुन चाहेगी ताकि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का कामकाज खुश असलूबी से चलाया जा सके। पार्लियामेंट का मानसून इजलास 20 जुलाई से शुरू होगा जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। मानसून इजलास के दौरान कई अहम बिलों को बहस और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इस दौरान आज नई दिल्ली में वुजरा के ग्रुप की एक मीटिंग हुई। मीटिंग में मरकजी वुजरा अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजू रंजन सिंह, किंजरापू राममोहन नायडू और किरण रिजिजू मौजूद थे। मीटिंग के दौरान लीडरों ने आइंदा पार्लियामानी इजलास की हिकमत अमली तरतीब दी। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 19 से 25 तारीख तक मोल्दोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के सरकारी दौरे पर रहेंगी। नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने बताया कि ये सरकारी दौरे जमहूरिया मोल्दोवा, जमहूरिया शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के सुदूर की दावत पर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दौरा तारीखी अहमियत का हामिल है क्योंकि किसी भी भारतीय सदर जमहूरिया के जरिए जमहूरिया मोल्दोवा और शुमाली मकदूनिया के अव्वलीन बाहमी दौरे होंगे। उन्होंने कहा कि रोमानिया का दौरा 3 से ज्यादा दहाइयों में किसी भारतीय

सदर जमहूरिया का पहला सरकारी दौरा होगा। जनाब जॉर्ज ने मजीद कहा कि रोमानिया का आखिरी दौरा साल 1994 में हुआ था। जनाब जॉर्ज ने उजागर किया कि ये दौरा वस्ती और मशरकी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती हुई मसरूफियात की अक्कासी करता है। नीज खित्ते के ममालिक के साथ शराकतदारी को मुस्तहकम करने के भारत के अहद का अदा करता है। जनाब जॉर्ज ने कहा कि यह दौरा यूरोप के साथ भारत के वसीत तर ताल्लुकात और यूरोपीय यूनियन के साथ इसकी जामे शराकतदारी को भी उजागर करता है। सरमायाकारी फ्रेंडलीनेस के इशारे 2026 में भारत की रियासतों और मरकज के जिला इंतजाम इलाकों के दरमियान गुजरात सबसे बेहतर कारकर्दगी करने वाली रियासत के तौर पर उभरी है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और उड़ीसा भी आला कारकर्दगी करने वाले के तौर पर उभरे हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में सरमायाकारी फ्रेंडलीनेस का इशारिया 2026 जारी किया, जिसमें उन रियासतों को उजागर किया गया है जो सरमायाकारी को रागिब करने में बेहतरीन मकाम पर आए हैं। ये साल 2047 तक विकसित भारत के मकसद की जानिब भारत के सफर को उजागर करता है। इशारे में तमाम 28 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 8 इलाकों का 8 सुतूनों का इस्तेमाल करते हुए तज्जिया किया गया, जिनमें बुनियादी ढांचा, कारोबारी माहौल, वसाइल, सरकारी पॉलिसी, जाब्ता जाति सहलकारी, इदारा जाति माहौल, मालियाती बेहतरी और माहौलियाती लचक शामिल हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आंध्र प्रदेश के वजीर आला एम चंद्रबाबू नायडू के साथ 1,03,246 मुस्तफदीन को 3,216 करोड़ रुपये मालियत के कर्जे तकसीम किए। ये कर्जे आंध्र प्रदेश के पलनाडु ज़िले में मुनक़िद क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में मरकजी हुकूमत के मुख्तलिफ स्कीमों के तहत तकसीम किए गए। जिन शोबों के लिए ये इमदाद फराहम की गई है उनमें ज़राअत, MSMEs और हाउसिंग, तालीम, गाड़ियाँ और शमसी तवानाई के शोबे शामिल हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजारत खारजा ने आज कहा कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के बारे में भारत जापान के दरमियान बातचीत इत्मीनान बख्श तरीके से आगे बढ़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक सवाल का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये पोस्ट एक फर्द के राय की अक्कासी करती है और ये हकीकत से मुख्तलिफ है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जापान E20 ट्रेन सीरीज मुहैया कराएगा, लेकिन ये साल 2030 के अवाइल में ही होगा क्योंकि ट्रेन अभी तैयारी के मरहले में है। हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के बारे में हुई पेशरफ्त को उजागर करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि तामीराती काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और साल 2027 में पहला सेक्शन ऑपरेशनल हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि फरीकैन ने एक भारतीय हाई स्पीड ट्रेन से ऑपरेशन शुरू करने से इत्तेफाक किया है। नायब सदर CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का सफर मुनज्जम रजाकाराना खिदमत की ताकत और अपनी जात से पहले खिदमत के पायदार जज्बे की एक वाजह मिसाल है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की तसनीफ करदा किताब RSS एट 100 ए सेंचुरी ऑफ सर्विस यूनिटी एंड सेक्रीफाइस के इजरा के मौके पर कही। तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर ने कहा कि RSS ने खिदमत, इत्तेहाद और कौमी शऊर के नज़रियात को मजबूत किया है और बेलौस खिदमत और कौम की तामीर के जरिए नस्लों को मुतासिर किया है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि तंजीम का 100 साल सफ़र इस बात को जाहिर करता है कि कौम की देरपा तरक्की सिर्फ हुकूमती इदारों के जरिए ही नहीं बल्कि फ़ाल शहरी किरदार और रजाकाराना खिदमत के जरिए भी हासिल की जाती है। ईरान के पासदारान इनकलाब इस्लामी IRGC ने दावा किया है कि उसने आज शाम कुवैत और ओमान में अमरीकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाते हुए जवाबी हमले किए हैं। ईरान की सरकारी एजेंसी के मुताबिक IRGC ने एक बयान में कहा कि ये हमले ऑपरेशन नसर 2 के 11वें, 12वें और 13वें दौर के दौरान किए गए। उसने दावा किया कि ईरानी फोर्सेज ने शाम के अलतनफ खित्ते में अमरीका की खसूसी कार्रवाइयों के कमान के एक मरकज पर अचानक हमला कर दिया। यूक्रेन में रात में किए गए रूसी हमलों में कम से कम 4 अफराद हलाक और दीगर 20 जख्मी हो गए। ओडेसा इलाकाई फौजी इंतजामिया के सरबरा ओले कीपर ने बताया कि ओडेसा के जुनूबी साहिली शहर पर रूस के एक मिसाइल हमले में 2 अफराद हलाक और दीगर 10 जख्मी हो गए। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि ज़ेपोरोजिया खित्ते में एक और हमले में मजीद 2 अफराद हलाक हो गए और 5 दीगर जख्मी हुए हैं। हुकाम ने रूसी हमलों में मुल्क के दीगर 5 खित्तों में लोगों के जख्मी होने की भी खबर दी है।
चीफ इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा है।

0: कि भारत का इंतखाबी कमीशन ईसीआई दुनिया के सबसे शफाफ और मोतबर इंतखाबी इदारों में से एक है, जहां दुनिया की कई जमहूरियतें भारत के इंतखाबी अमल को एक मॉडल के तौर पर देखती हैं। इंतखाबी कमीशन की जानिब से मुनक़िद ऑल इंडिया मीडिया कॉन्फ्रेंस 2026 से खिताब करते हुए आज ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत में इंतखाबात आईन के तहत आज़ादाना तौर पर मुनक़िद कराए जाते हैं, जहाँ शहरियों को अपने नुमाइंदे चुनने की आज़ादी हासिल होती है। भारत के महकमे मौसमियात ने ज़ैली हिमालय, मगरबी बंगाल और सिक्किम में आइंदा दो दिनों के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश और कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में इतवार तक किसी किसी मुकाम पर शदीद से बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। बिहार, मध्य प्रदेश, मशरक़ी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, उड़ीसा और शुमाल मशरक़ी रियासतों में कल शदीद बारिश की तवक्को है। वेस्टइंडीज के मायानास क्रिकेट खिलाड़ी सर गैरफील्ड सोबर्स का आज इंतकाल हो गया। वो 79 बरस के थे। मायानास क्रिकेटर की मौत की तस्दीक उनके फर्जंद डैनियल ने की है। मार्च 1954 से अप्रैल 1974 के दरमियान क्रिकेट के खेल में बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक सोबर्स ने 93 टेस्ट मैच खेले और 57.78 की औसत से 8032 रन स्कोर किए। इनमें 26 सेंचुरीज और 30 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के फास्ट मीडियम बॉलर सोबर्स ने टेस्ट क्रिकेट में 235 विकेट हासिल किए हैं। उन्होंने एक वाहिद ओडीआई भी खेला है, जिसमें उन्होंने एक विकेट लिया था। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक ओवर के दौरान 6 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी थे। ये संगमील उन्होंने साल 1968 में ग्लैमॉर्गन के खिलाफ नॉटिंगम शायर के लिए खेलते हुए कायम किया था। भारत ने आज एफआईएच खवातीन के हॉकी आलमी कप 2026 के लिए अपने 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। मिडफील्डर सलीमा टेटे इस पुरवकार टूर्नामेंट में भारतीय टीम की क्यादत करेंगी, जो 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नेदरलैंड्स में मुनक़िद होगा। गोलकीपर सविता और बिचू देवी खरीबाम ने टीम में अपना मुकाम बरकरार रखा है। इशिका चौधरी, सुशीला चानू, पुरखरमरम ज्योति और शिल्पी दाबास दिफाई पोजीशन संभालेंगी। मिडफील्ड की क्यादत सलीमा टेटे करेंगी और उनके साथ निकी प्रधान, साक्षी राणा, नेहा और दीपिका सोरेंग इस पोजीशन पर खेलेंगी। भारत की फॉरवर्ड लाइन ऋतुजा, ददोसा पिसाल, नवनीत कौर, दीपिका, इशिका, बलजीत कौर और ब्यूटी डंगरडंग संभालेंगी। भारत को पूल डी में रखा गया है, जिसमें चीन, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। टीम 18 अगस्त को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ और 20 अगस्त को इंग्लैंड के मुकाबले मैच से कबल हॉकी स्टेडियम में 16 अगस्त को चीन के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जींद से भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मरकज नागरिक देवोभव के जज्बे के साथ हर शहरी के लिए जिंदगी गुजारने में आसानी और नए मौके फराहम करने के तई अहदबंद है। हुकूमत ने पार्लियामेंट के इजलास से कबल इतवार के रोज कुल पार्टी मीटिंग तलब की है। सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू इतवार से मोलदोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के 3 रोजा दौरे पर रहेंगी। नीति आयोग ने सरमायाकारी फ्रेंडलीनेस का इशारिया 2026 जारी किया है। गुजरात आला तरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली रियासत के तौर पर उभरी है। इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु आते हैं। और मायानाज वेस्टइंडीज क्रिकेट खिलाड़ी गैरी सोबर्स का इंतकाल हो गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 295.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है गजलों का प्रोग्राम कहकशा। महफिल का आगाज कर रहे हैं हरिहरन की आवाज में इस कलाम से। इसे शब्द दिए इसरार अंसारी ने। मतला कुछ इस तरह है कि लफ्ज़ों की तरह तू हर पन्ने पे बिखर जाती है, लफ्ज़ों की तरह तू हर पन्ने पे बिखर जाती है, हर किताब खोलूं तो तेरी खुशबू आती है।

सकती है। दुनिया से छुपाने के लिए तुझे खाबों में रख लिया, वरना लोग पढ़ लेते तुझे, ये डर भी सताता है। तुझे दुनिया की नज़र से बचाने के लिए मैंने अपने ख्वाबों का पर्दा डाल दिया। तुझे दुनिया की नज़र से बचाने के लिए मैंने अपने ख्वाबों का पर्दा डाल दिया। लफ्ज़ बन के तो किताबों में सो जा और रात को मेरी सांसों में सिमट जा। आइए समाअत फरमाते हैं इसरार अंसारी की इस गज़ल का। गुलूकार हैं हरिहरन।

गज़लों की इस महफिल का दूसरा नजराना आपकी नज़र पेश कर रहे हैं रूप कुमार राठौर और मिताली राठौर की आवाज़ों में इसरार अंसारी का एक और कलाम, वो पल वो बातें वो चुप सी मोहब्बत, सब कुछ गुजर गया जैसे ख्वाब का ज़माना। वो पल वो बातें वो चुप सी मोहब्बत, सब कुछ गुजर गया जैसे ख्वाब का ज़माना। अब जब भी रात को उसका जिक्र आता है, अब जब भी रात को उसका जिक्र आता है, दिल के कोने में फिर से बारिश का मौसम आता है।

गजलों का कार्यक्रम कहकशा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। और अब जो गजल आपकी पेश खिदमत है उसमें है खामोशी, यादें और टूटे वादों का दर्द। लफ्ज न सही, खामोशी ही बहुत कुछ कह जाती है। लफ्ज ना सही, खामोशी ही बहुत कुछ कह जाती है। तेरी याद दिल को लहूलुहान कर जाती है। तूने वादा किया था साथ निभाने का, तूने वादा किया था साथ निभाने का, आज वो वादा ही मेरी रातों को जगाता है। तेरे वादे आज भी मेरे दिल की दहलीज पर दस्तक देते हैं। तेरे वादे आज भी मेरे दिल की दहलीज पर दस्तक देते हैं और मैं

खामोश बैठकर उन्हें घायल होते देखता हूँ। मोहब्बत ऐसी थी कि छोड़ कर भी साथ थी, मोहब्बत ऐसी थी कि छोड़ कर भी साथ थी और दूर होकर भी सबसे करीब है।

0: आज जाने की जिद न करो, आज जाने की जिद न करो, मेरी रातों का उजाला अभी बाकी है। तुम्हारे बिना ये दिल सुनसान हो जाएगा, मेरी सांसों में तुम्हारी खुशबू अभी बाकी है। वक्त को कहते हैं थम जा, वक्त को कहते हैं थम जा, क्योंकि तू जाएगा तो लम्हा भी चला जाएगा। तेरी एक नज़र के लिए मैंने उम्र भर का इंतज़ार किया है, तेरी एक नज़र के लिए मैंने उम्र भर का इंतज़ार किया है। फरीदा खानम की आवाज़ में अब आपको सुनवा रही हैं ये गज़ल, जो कह रही है, तुम चले जाओगी तो रात कैसे कटेगी, मेरे लफ्ज़ों की किताब अधूरी रह जाएगी। तुम चले जाओगी तो रात कैसे कटेगी, मेरे लफ्ज़ों की किताब अधूरी रह जाएगी। आज जाने की ज़िद ना करो सनम, मेरी मोहब्बत अभी तुमसे कुछ कहना चाहती है।
1: आज जाने

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है नाटक सदा नीरा, लेखक है अंशु मालवीय।

0: की शाख पर। दोस्तों, ये ठंडी सड़क है। ठंडी माने कोई बर्फ की नहीं बनी। इस सड़क पर दोनों ओर इतने पेड़ हैं कि यहाँ का ताप कुछ कम रहता है, मई जून की खूंखार दोपहरी में भी। और वो जो छोटा सा घर देख रहे हैं ना, अब घर नहीं रहा। वहां के दो शख्स, एक औरत और एक आदमी, एक हादसे के बेरहम साए में जीते हैं। प्रशांत जी एक पत्रकार हैं और उनकी पत्नी देविका टीचर। उनकी एक बेटी थी, उम्र यही कोई 17-18 के करीब। उसकी मौत कॉलेज से लौटते वक्त सड़क दुर्घटना में हो गई थी। अस्पताल में अंतिम सांसें गिन रही सदा नीरा, यही नाम था उसका, सदा नीरा। सदा नीरा के कुछ अंग अभी ठीक से काम कर रहे थे। डॉक्टरों ने उसके माँ बाप को सलाह दी उन्हें डोनेट करने की, ताकि खत्म हो रही उनकी बच्ची जिंदा रहे, टुकड़ों में ही सही। उसकी तीन चीजें दान की गईं, आंखें, जीभ और दिल। सदा नीरा नेपथ्य में चली गई, माँ बाप अकेले रह गए और घर में सूनापन पसर गया। सदा नीरा के जाने के बाद उसका पहला जन्मदिन करीब आ रहा था। नीरा का एक दोस्त है सौमित्र, वो रोज आकर शाम को नीरा के कमरे में बैठा, उसकी डायरियां और स्केचेस में डूबा रहता। नीरा के माँ बाप और सौमित्र ने सोचा, क्यों न पहला जन्मदिन उन तीनों के साथ मनाया जाए जिनमें नीरा थोड़ा थोड़ा जी रही है। आज उसका जन्मदिन है। शाम को अतिथियों के शरीर में बुनी हुई नीरा आ रही है। ठंडी सड़क का यह छोटा सा घर आज फिर घर हो रहा है। जैसा कि नाम था उसका, सदा नीरा, यानी हमेशा पानी से छलछलाती नदी, फिर छलछलाएगी एक नदी खुशी की, माँ बाप और सौमित्र।
1: नीरा, ओ नीरा, जरा सुन।
2: किसे बुला रही हैं आंटी?
3: देविका, किसे आवाज दे रही हो? अब ये फूल तो तुम्हारा संदेशा पहुंचाने से रहे।
1: ओह, तो तुम्हें याद है रजनीगंधा और ग्लेडलाई की ये स्टिक्स? रजनीगंधा की सफेदी के साथ ग्लेडलाई का गुलाबी रंग, लगता है अभी इन फूलों से निकलकर उसकी उंगलियां छू लेंगी ना।
3: याद है देविका, सब कुछ याद है। और सच पूछो तो यादों के अलावा आप सहेजने को बचा ही क्या है? लेकिन देखो, हम लोग बातें करने लगे और सौमित्र काम में लगा है। सोमू बेटा, तुम्हें याद है इन फूलों को ताजा रखने के लिए क्या क्या नुस्खे ढूंढा करती थी नीरा? अरे हाँ, वो चैपलिन का गोल्ड रश वाला पोस्टर मिला या नहीं?
4: हाँ, मिल गया। और उधर निगाह डालिए, वहां लग भी गया है। अंकल, आप फूलों की बात कर रहे थे ना?
3: हाँ बेटा।
4: उसका बस चलता ना तो अपनी सांसें फूलों को दे देती, ताकि वो हमेशा ताजा रहे। आंटी, हाँ? याद है आपको सरदर्द की गोली, नमक, चाय की पत्ती, क्या क्या तो नहीं डालती थी इन गुलदानों में पानी के साथ? उसका बस चलता ना तो वो उन्हें चम्मच से दूध भी पिलाती।
1: जरा सा इधर हाथ लगाना प्रशांत। ऐसा करते हैं, बाकी चीजें कमरे से हटा देते हैं, बस ये बेत की कुर्सियां यहीं रहने देते हैं। नीरा इन कुर्सियों पर बैठती थी ना। सोमू
4: जी,
1: तुम बेटा जरा इधर सुनो।
4: हाँ आंटी, बोलिए।

कुछ नहीं रह जाएगा, न देह न धर्म, न हम न हमारे कर्म, और नहीं व्यापेगी हमें कोई चिरंतन ठंडी अमरता। गुलाब के पौधे की तरह कलम लगेगी हमारी किसी और पौधे की शाख पर। कुछ नहीं रह जाएगा, न देह न धर्म न अमरता का भरम, और जिएंगे हम भूलेंगे भी किसी और जिंदगी।

0: ऐसा करो कि नीरा की कविताओं वाली 3 डायरियों वो सब अलग अलग अच्छे से पैक कर दो।
1: वो क्यों?
0: वो इसलिए कि हमने सोचा है अपने तीनों मेहमानों को हम वो डायरियां भेंट करेंगे। इस तरह से हम हमेशा जुड़े रहेंगे अपनी नीरा से। क्यों बेटा, ये आइडिया तुम्हें पसंद आया कि नहीं?
1: हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। नीरा को पढ़ते पढ़ते सोने की आदत थी ना, तो उसकी कुछ किताबें इस दीवान पर कोने में रख देते हैं।
0: और सोमू, निर्मला जरूर रख देना। पता नहीं क्या होता था जब वो निर्मला पढ़ती थी, रोती थी, फिर पढ़ती थी, फिर रोती थी। हाँ, वो शरद बाबू की और प्रथम प्रतिश्रुति भी रख देना।
2: लगता था पूरी की पूरी बस आंसू और मुस्कुराहट से बनी थी।
1: एक और चीज से बनी हुई थी वो, गुस्से से। कभी कभी अपने आसपास के बारे में, दुनिया समाज के बारे में बात करो तो लगता था एक एक बहुत धीमा धीमा सा गुस्सा पल रहा है उसके भीतर। तब उसे बहुत डर लगता था अंकल। तब लगता था सड़क से टूटी चूड़ियां, तितली के पंख या पुराने पत्तों की झिल्लियां उठाकर सहेजने वाली इस लड़की को मैं पहचानता भी हूं कि नहीं। अच्छा, मैं चलता हूं। हलवाई से कह दिया था ताजी बालूशाही के लिए, नीरा की फेवरेट थी ना।
0: सोमू, अरे जरा रुको तो बेटा। प्रशांत, आपको कुछ और तो नहीं मंगवाना?
2: हाँ, वो सोमू, अपने पास से कुछ कैसेट लेते आना, नीरा के पसंदीदा कैसेट। यहाँ तो कैसेट महीनों से बजा ही नहीं, पता नहीं लगाने पर बजेगा भी या नहीं।
1: अच्छा, चलता हूं, शाम को आऊंगा।
0: सोमू सोमू सुनो, माधव के यहां से केक भी लेते आना और थोड़ी सी रंगीन मोमबत्तियां भी।
1: जी बहुत अच्छा।
2: सोमू ना होता तो जिंदगी और मुश्किल हो जाती ना। कैसा लग रहा है देवी?
0: पता नहीं प्रशांत, समझ में नहीं आ रहा कि खुश हूं या फूट फूट कर रो पड़ूं। क्या क्या सचमुच हमें नीरा मिल रही है या हम अपने को छल रहे हैं?
2: हाँ, शायद ये छलना ही तो है। पहले किसी शख्स को विदा कर दो और फिर जगह जगह से उसके टुकड़े बिनकर उसे गढ़ने की कोशिश करो। हम असफल रचनाकार हैं देवी, हम वास्तव नहीं गढ़ सकते, केवल आभास बना सकते हैं।
0: पर कितने आभास प्रशांत, यूं तो हर रचना एक झूठ ही होती है, पर ये कैसा झूठ जो अपने से बोला जा रहा है। हम एक शाम के लिए एक प्रति संसार भले ही सिरज लें, पर लौट कर हमें वापस इसी संसार में आना है। कैसी वंचना है। आज शाम के बाद न जाने क्या होगा।
2: किसी ऐसी ही शाम का इंतजार, फिर किसी ऐसे ही प्रति संसार की रचना।
0: आखिर आखिर कब तक प्रशांत, कब तक?
2: जब तक हमारी शामें न ढल जाएं।

0: प्रशांत, शाम होने को आई। वो लोग अब आते ही होंगे, मगर सोमू नहीं आया अभी तक।
1: आता ही होगा, कहीं फंस गया होगा।
0: रुको रुको, मैं देखती हूँ कि कौन आया है। आइए आइए अंजन जी। प्रशांत, अंजन जी आए हैं।
2: मैंने देर तो नहीं किया आने में?
0: अरे नहीं तो, आप तो सबसे पहले आए हैं।
1: नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? मैं देखता हूँ, एक मिनट।
0: ठीक ठीक।
1: अरे सौमित्र, ओफ ओफ अंकल, जानते हैं कितना जाम लगा था सड़क पर? और वो माधव का बच्चा कहने लगा, बैठ जाइए अभी मंगाता हूँ केक। जैसे लग रहा है आदमी को कोई

0: काम नहीं, जैसे लोग आपकी दुकान पर बैठकर तपस्या करें। सॉरी। नमस्ते अंकल। आंटी, मैं ये सब सामान रखकर आता हूं।
1: अच्छा ठीक है।
0: अंकल, वो टेप चेक कर लिया था ना आपने, ठीक है ना?
2: ये कौन है?
3: ये सदा नीरा का दोस्त है, सौमित्र।
2: तो आप अपनी बेटी को इतनी आजादी देते थे?
3: इसमें आजादी की क्या बात है भाई साहब, ये तो नेचुरल है।
2: खैर छोड़िए, ये फिलॉसफी ऑफ लाइफ का अंतर है। हाँ, आपको एक हिदायत देना चाहूंगा। बाहर के लोगों की घर में इतनी पैठ ठीक नहीं है। खैर, अब तो आपकी बच्ची भी नहीं रही।
4: ये हैं डॉक्टर रंजन, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, न सदा नीरा का, न सौमित्र का, न प्रशांत का, न ही देविका का। इस उदासी शाम को खुशनुमा बनाने की कोशिश में लगे लोगों का आपस में इस तरह से बात करना मुझे अच्छा नहीं लगा। खैर, मैं तो आपको कहानी सुनाने आया हूं, आंख मिल जाए तो नजर नहीं मिलती। कहते हैं किसी आदमी को ठीक से जानना हो तो उसे उसके घर में जाकर देखो। तो फिर आइए चलते हैं डॉक्टर रंजन के घर।

0: क्या बज रहा है?
1: यही कोई 7:30 बज रहा है। क्यों?
0: क्यों का क्या मतलब? ये वक्त है घर आने का?
1: इतनी कौन सी देर हो गई? आज कुछ ज्यादा ही काम था ऑफिस में, कुछ हिसाब किताब निपटाने थे।
0: मुझे पता है कौन से हिसाब किताब निपटाने थे।
1: आखिर कहना क्या चाहते हो तुम?
0: मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ तुम अच्छी तरह जानती हो। कहाँ थी अभी तक?
1: प्लीज अंजन, आवाज नीचे करके बात करो, बच्चे सुन रहे हैं।
0: सुनने दो, कल जो जानेंगे बेहतर है आज जाने।
1: अंजन, दृष्टिहीनता भी एक तरह की विकलांगता है, प्लीज इससे उबरने की कोशिश करो।
0: डिसेबल तो मैं पहले था, अब मेरी आंखों की रोशनी आ गई है, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा।
1: तुम मुझे सबक सिखलाओगे? क्या सबक सिखलाओगे?
0: Shut up!
1: तुम मुझ पर इसलिए चिल्ला रहे हो ताकि तुम्हारे अपने पाप छुपे रहें।
2: देखा आपने, ये हैं डॉक्टर अंजन। जब तक इनके पास आंखें नहीं थी झूठ सच लगता था, अब जब आंखें हैं तब सच भी झूठ नजर आता है। कहानी आगे बढ़ाने के लिए आइए, फिर पुरानी जगह चलते हैं, प्रशांत जी के घर।
3: आइए विवेक जी, हम लोग बस आप ही का इंतजार कर रहे थे। आज आप लोगों को देखकर कितना अच्छा लग रहा है। आइए इधर से आइए, देविका, विवेक जी आए हैं।
4: आई, नमस्ते विवेक जी।
5: नमस्ते।
3: आइए, इन सबसे आपका परिचय करा दूं। ये हैं डॉक्टर अंजन, बस समझ लीजिए अब नीरा इन्हीं के माध्यम से हमें देख रही है। डॉक्टर साहब, ये हैं डॉक्टर विवेक, मगर ये दूसरे डॉक्टर हैं, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। और समझिए नीरा इनके माध्यम से हमसे बातें कर रही है। आइए घर के एक और सदस्य से आपको मिलवाता हूँ। सोमो, ओ सोमो।
6: आया अंकल
7: जी।
3: ये सौमित्र, नीरा का सबसे अच्छा दोस्त, कुछ कुछ वैसा ही है।
7: अंकल, अभी एक मेहमान की कमी है, तो क्यों ना हम तब तक नींबू की चाय पिए, नीरा को बहुत पसंद थी।
4: मैं बना कर लाती हूँ।
7: नहीं नहीं आंटी, आप बैठिए, मैं बना कर लाता हूँ।
4: आज नीरा होती तो आपसे मिलकर बहुत खुश होती विवेक जी। खुद भी तो वो टीचर बनना चाहती थी, कहती थी मम्मी की तरह मैं भी अच्छी टीचर बनूंगी। अब पता नहीं कौन सी अच्छाई देखती थी मुझमें।
5: नई उम्र के बच्चों में इस तरह का आदर्शवाद बहुत जोर मारता है, फिर आगे मिलती है जीवन की सच्चाई और हम उसी को सारे आदर्श मानकर खाने कमाने लगते हैं।
3: अपवाद भी तो मिलते हैं विवेक जी।
5: हाँ मिलते होंगे प्रशांत जी, लेकिन या तो मुझे मिले नहीं या कह लीजिए कि मैं ही इनसे कटता रहता हूँ। ये लोग हमें कमजोर बनाते हैं।
4: कमजोर बनाते हैं?

0: वो तो खुद ताकतवर होते हैं। धार के विरुद्ध तैरने वाले भला किसी को कमजोर कैसे बना सकते हैं?
1: बनाते हैं देविका जी, बनाते हैं। अच्छा मान लीजिए कि विद्यार्थी आपसे बार बार मिलकर कुछ समझना चाह रहे हैं,
0: हाँ?
1: और आप कमजोर हैं तो आप परेशान होंगी, अपना चैन भी खोएंगी, जबकि इसका जवाब सिर्फ एक झूठ है। अरे कह दीजिए कि ये जरूरी चैप्टर नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा, और फिर आप मुक्त।
2: टन टना टन टन, ये लीजिए चाय। अंकल, अभी जो आप कह रहे थे वो तो प्रोफेशनल एथिक्स के भी खिलाफ है।
1: अरे बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, एथिक्स बनाता कौन है? और फिर प्रोफेशन और एथिक्स दोनों ही दो अलग अलग चीज़ें हैं। एथिक्स को ताक पर रखकर रोज सुबह उस पर दो फूल चढ़ा दो, इससे ज़्यादा तो भाई मैं कुछ कह नहीं सकता। क्यों सौमित्र?
2: लेकिन अंकल, क्या ये सब
1: क्या क्यों कैसे बचो सौमित्र? अरे अपने प्रशांत अंकल से पूछो, पत्रकार हैं, सब बतलाएंगे। क्या क्यों कैसे से कब कैसे बचा जा सकता है? ये खबर लीक करते हैं, हम पर्चा लीक कर देते हैं, फर्क क्या पड़ता है?
3: माफ कीजिएगा, मैं ऐसा नहीं सोचता। कैसे हैं ये लोग, नीरा से बिल्कुल उल्टे। कैसी बातें करते हैं, जैसे लगता है ये लोग किसी नीलामी में खड़े खरीद फरोख्त कर रहे हों। देविका, क्या सोचने लगी?
0: कुछ नहीं, बस यूं ही विवेक जी की बातें सुन रही थी। हमने तो नीरा को फिर से पाना चाहा था, पर ये लोग तो उसे मुझसे दूर।

0: मैं एक बार फिर आपको इस शाम से थोड़ा पीछे ले चलता हूं। अब ये जो अतिथि आए हैं, ये शहर के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, हृदय शंकर। इनके पास नीरा का दिल है, या कहिए ये उसकी धड़कनों पर जी रहे हैं। जो खुद दूसरों से धड़कने लेकर जी रहा हो, क्या वक्त पड़ने पर किसी को धड़कने दे सकेगा? आइए जानने के लिए चलते हैं इनकी फैक्ट्री।
1: नमस्ते सेठ जी। मैंने मैनेजर साहब से अर्ज की थी, उन्होंने नहीं मानी तो मैंने कहा कम से कम आप ही से मुलाकात करवा दें। आज कई दिनों की कोशिश के बाद मिल पाया हूँ।
2: काम की बात पर आओ, मेरे पास वक्त बहुत कम है।
1: सेठ जी, मेरी बिटिया की शादी है।
2: तो मैं क्या कर सकता हूँ?
1: कुछ एडवांस मिल जाता है सेठ जी।
2: एडवांस चुकाओगे कैसे?
1: तनख्वाह से कटवा कर चुकता कर दूंगा सेठ जी।
2: तनख्वाह मिलेगी तब ना। देखो, कुछ चीजें समझ लो, मुझे इस कंपनी से घाटा हो रहा है। और क्या तुमने छटनी वाली लिस्ट नहीं पढ़ी? नोटिस बोर्ड पर लगा दी गई है, उसमें शायद तुम्हारा नाम भी है।
1: मुझे क्यों, मैंने तो...
2: सुनो भाई, तुम्हारी बात नहीं, अभी तो मुझे शायद ये कंपनी भी बंद करनी पड़े। देखो, मुझे बिजनेस करना है, कोई रिश्तेदारी नहीं निभानी। जब जरूरत पड़े काम पर रखो, जरूरत खत्म तो निकाल दो। सिस्टम बदल रहा है, यानी हायर एंड फायर। जाओ, जाकर लिस्ट देखो।
3: क्यों सेठ, ये चिरकुटवा कहां से चला आया? आप भी अपने चैम्बर में ना जाने किस किस को बुला लेते हैं।
2: आओ राम भरोसे। अरे भाई, ये आखिरी बार मेरे चैम्बर में आया था, जाने दो बेचारे को।
3: आखिरी बार? यानी
2: आखिरी बार मतलब अंतिम बार। इसीलिए तो बुलाया था तुम्हें। ध्यान से सुनो, छटनी हो गई है, मजदूर आजकल में कुछ बवाल करेंगे। अब जैसे भी हो, तुम ही को सब संभालना होगा, आगे तुम खुद समझदार हो।
3: जानता हूं, जानता हूं। अरे इसी काम का तो मैं रोकड़ा लेता हूं। लेकिन सेठ, मुझे समझ नहीं आता आप अपने पैसे इधर उधर क्यों उड़ाते हैं, अस्पताल, स्कूल।
2: राम भरोसे,

0: भाई चींटी की जान बख्श दो और उसका प्रचार करो। प्रचार का शोर इतना होगा कि जब आदमी का कत्ल करोगे तो कोई चीख पुकार सुनेगा भी नहीं। यही बिजनेस है। ये लोगों के इमोशंस और दान धर्म सब बिजनेस है।
1: मैं दरवाजा खोलता हूँ।
2: आइए आइए इधर शंकर जी, बस आपकी ही कमी थी। आइए आपका परिचय करा दूं।
1: सुमित्र बेटा, तुम इंतजाम शुरू करो।
3: अच्छा अंकल, अब क्या इंतजाम करो, मन नहीं कर रहा। अच्छा होता हम तीनों ही नीरा को आज महसूस करते।
4: आप लोग अगर हमारी बेटी से मिले होते तो आप सबको लगता कि वो किसी दूसरी ही दुनिया की है। जानते हुए क्या हुआ एक बार स्कूल के दिनों में, बहुत पुरानी बात है। नीरा स्कूल से लौटी, हम देखते क्या है कि उसके हाथ में एक कौवा था। मेरे चौंकते ही वो बोली, मम्मी डांटना मत, रास्ते में घायल पड़ा था, ठीक होते ही उड़ जाएगा। फिर तो हफ्ते भर हमारे पूरे परिवार ने उसकी सेवा की, रूई से दूध पिलाया, घाव पर मरहम लगाया।
0: होता है, होता है। मिडिल क्लास में नए पढ़े लिखे बच्चों में पशु पक्षियों के प्रति कुछ ज्यादा ही लगाव और प्रेम होता है।
3: नहीं अंकल, ऐसा नहीं था। आपको पता है नीरा कितने ही लोगों को सहायता और सेवा के लिए घर लेकर चली आती थी।
1: हाँ हाँ हृदय जी, और यही नहीं, हमारे घर बर्तन माजने वाली की लड़की के स्कूल के एडमिशन के लिए कितना रोई गई थी।
0: भाई बच्चों की परवरिश का ये तरीका मुझे पसंद नहीं। क्यों विवेक जी, आप तो टीचर हैं, बताइए, ऐसे बच्चे एबनॉर्मल हो जाते हैं ना।
5: अरे सबसे बड़ी एबनॉर्मलिटी तो आदर्शवाद है, क्यों डॉक्टर रंजन?
6: भाई ये फिलॉसफी तो अपनी समझ के बाहर है। हाँ इतना जानता हूं, अपने बच्चों को मैं प्रैक्टिकल बनाना चाहता हूं, उन्हें घर से इतनी लिबर्टी नहीं है, मेरे कदम रखते ही घर में सन्नाटा हो जाता है।
0: बिजनेस और मैनेजमेंट का युग है, भावुक बच्चे कैसे मैनेज कर पाएंगे, उनकी जगह कहां बनेगी। नीरा तो रही नहीं, लेकिन इस बच्चे को हम यही सलाह देंगे, बी प्रैक्टिकल। क्यों सौमित्र?
3: लोगों से रिश्ता ना रखना प्रैक्टिकल होना है अंकल। नीरा इन लोगों के साथ बैठकर कैसा कैसा महसूस करती है, और हम लोग हैं कि लगातार इन्हें एंटरटेन कर रहे हैं। आंटी को कहता हूं जल्दी खत्म करें ये नाटक।
7: आंटी सारी तैयारियां हो गई हैं, चलिए खाना पीना शुरू करते हैं।
4: सौमित्र एक मिनट मेरे साथ किचन तक आना। सुनो सोमू
3: जी,
4: बेटा केक मत लाना, सामने के ये सारे हाथ इसके अधिकारी नहीं है। अब तो मुझे लग रहा है कि किसी तरह से खा पी कर ये लोग विदा ले तो बहुत अच्छा है।
1: देविका जल्दी करो, कैसी तो रही ना आज की ये शाम, हम अपनी नीरा को याद भी नहीं कर पाए ठीक से। और देखो वो केक डारियां वगैरह मत लाना, चलो खाना पीना शुरू करवाते हैं।
4: ठीक है
3: ठीक है।

0: चलो गए तो अच्छा हुआ, वो प्रतिसंसार भी ठीक से नहीं रचा जा सका। बेटा सुमो, तू सुन रहा है ना?
1: हाँ आंटी।
0: अंदर सब ठीक कर दे।
1: बहुत अच्छा आंटी।
2: देविका, एकदम निढाल हो गई तुम तो। बैठ जाओ। मुझे पता है हम सब के दिल की कैफियत एक जैसी है। कभी तो लग रहा था कि वो सारी चीजें वापस मांग लूं जो नीरा की हैं। कितनी घुटन हो रही होगी उसे ऐसे शरीरों में रहते हुए।

0: ठीक कह रहा प्रशांत, मगर हमारे प्रयास भी असफल हो गया। आप नीरा को फिर से नहीं पा सके।
1: देविका, आजकल भी हो तो उसे रचना करने में संतोष रहता है, यहां तो वो भी नहीं। लगता है आज नीरा हमारे सामने दोबारा

0: ये तो नीरा वाला लगता है, लगता है सौमित्र ने बजाया है। देवकी, उसके भीतर नीरा है, नीरा है उसके भीतर।
1: हम हार रहे हैं प्रशांत, हार रहे हैं, लेकिन सोम वो लड़ रहा है ईरा को जिंदा रखने के लिए। हमारी गलती है जो हम प्रति संसार रचाना चाहते थे, और वो जो संसार हमारे सामने है, इसमें ही क्यों न रचे हम। सुनो सुनो प्रशांत, प्रशांत सोनू को आवाज दो।
0: सोमो बेटा।
2: आया अंकल, बस दो मिनट। अंकल।
1: आ बेटा, सोमो जा वहां सामने, उस सामने वाली कुर्सी पर बैठ जा।
2: क्या, क्यों आंटी?
0: पूछो मत बेटा, बस बैठ जाओ। ये लो मोमबत्ती, केक पर जलाओ बेटा।
2: अंकल।
1: सोमो सोमो, केक काटो।
2: नहीं आंटी, नहीं अंकल, मैं आप लोगों के दिल का हाल समझ रहा हूं। वैसे ही मुझे भी लग रहा है, जैसे लग रहा है नीरा दरवाजे से आकर लौट गई है। हमें उसे तलाशने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन मैं नहीं अंकल, मैं भी वैसा नहीं हूं जैसे वो थी।
1: नहीं सौमित्र, नहीं, हमने रास्ता ढूंढ लिया है। नीरा वैसे हमें नहीं मिल सकती, और उसकी कार्बन कॉपी भी ढूंढना बेकार है। अब हम उसे नहीं पा सकते, अब उसे एक नए रूप में रचना होगा। कलम से बड़ा पौधा नहीं पौधा होता, पर बेटा उसकी बहक वही की वही होती है।
0: और बेटा, तुम्हें वही बहक है बेटा, वही।
3: आप सुन रहे थे नाटक सदा नीरा, लेखक थे अंशु मालवीय, प्रस्तुति थी गजाला शहनाज की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रही हैं क्लेरिनेट वादन, कलाकार हैं गौरी शंकर। तो आइए सुनते हैं क्लेरिनेट पर राग यमन, कलाकार गौरी शंकर।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे क्लेरिनेट वादन, राग थी यमन, कलाकार थे गौरी शंकर। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप दिल्ली से प्रसारित समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवोभव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
2: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
1: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि

0: जब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में नाकाम रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक इलाके से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।